एफएम की 101.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं। आज रविवार है, सितंबर 1948 के बैसाख माह की तिथि 27। तदनुसार ईस्वी सन 2026 के मई महीने की 17 तारीख प्रातः के 5:58 हुए हैं। आज की सभा आरंभ होती है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। यह यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ वार्ता करेंगे। इसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। दोनों प्रधानमंत्री के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लाइन भी यूरोपीय उद्योग जगत के गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करेंगी। यह यूरोपीय उद्योगपतियों का एक प्रमुख मंच है। इस वर्ष जनवरी में भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के लागू होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की यूरोप की यह पहली यात्रा है। यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करना और तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों का समाधान तलाशना है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी।
1: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
2: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
1: And also infrastructure development that has happened.
0: इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी ने नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
3: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा। उन्होंने कहा कि दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान भी करना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले से खुद को अलग कर लिया था। इसमें एकमात्र दोषी संजय रॉय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कर रही है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 247 रन बनाए। जवाब में गुजरात टाइटंस 4 विकेट पर 218 रन ही बना सकी। सुनील नरेन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। वहीं दिल्ली में शाम 7:30 बजे डेल्ही कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक

श्री रामचरित मानस का एक अत्यंत मार्मिक प्रसंग है अहल्या उद्धार का। जनकपुर से सीता स्वयंवर का निमंत्रण पाकर मुनि विश्वामित्र दोनों कुमारों को राजा जनक का धनुष यज्ञ दिखाने ले चले। मार्ग में एक सूना आश्रम दिखाई पड़ा जहां पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। वहां एक शिलाखंड पड़ा था जिसके विषय में श्री राम की जिज्ञासा सुनकर ऋषिवर ने उन्हें गौतम पत्नी अहल्या के अभिशप्त होने की कथा सुनाई और बोले, ये पत्थर की देह धारण किए युगों से बड़े धीरज के साथ आपके चरणों की धूल की प्रतीक्षा कर रही है। हे रघुवर, इस पर कृपा कीजिए। श्री राम के चरण का स्पर्श पाते ही तपोमूर्ति अहल्या अपने सुंदर नारी रूप में हाथ जोड़े प्रकट हो गई। अत्यंत प्रेमवश उसका शरीर पुलकित था और आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम श्री रामचरित मानस ज्ञान, जिसमें आज के कलाकार थे आशा भोसले और जगजीत सिंह। अब आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम समर्पण। इसमें आज हम लेकर आए हैं कुछ फिल्मों के भक्ति संगीत।

कार्यक्रम समर्पण में आज आप सुन रहे थे चंद फिल्मों से भक्ति रचनाएं।

अब आइए आपको जानकारी देते चले हैं आज के कार्यक्रमों की। 7:45 सुगम संगीत होगा, 7:00 कार्यक्रम जोहार चाईवासा, 8:00 समाचार प्रभात का प्रसारण होता है, 8:15 मॉर्निंग न्यूज़, 8:30 प्रादेशिक समाचार होंगे, उसके बाद लोक संगीत का हमारा कार्यक्रम माटी की महक, 9:00 अविविधा कार्यक्रम होगा।

रस रंजन, ये कार्यक्रम होगा पूर्वान्ह 9:30 बजे, 10 बजे फिल्म संगीत का कार्यक्रम और 10:30 बजे से आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। सांध्यकालीन सभा में 5:05 पर फौजी भाइयों के लिए कार्यक्रम होगा जय भारती। 5:30 बजे खेती गृहस्थी कार्यक्रम और 6 बजे मुख्य समाचार।

6:02 पर आज सुनिए क्षेत्रीय भाषा में हो अखरा। 6:30 बजे विकास योजना पर आधारित कार्यक्रम सन्मार्ग। 7 बजे प्रादेशिक समाचार होंगे, उसके बाद ज़िले में आजकल। 7:15 बजे आपकी पसंद कार्यक्रम होगा। 8 बजे रजनीगंधा। 9:15 बजे समाचार संध्या का प्रसारण होता है। 9 बजे न्यूज़ एट 9। 9:15 बजे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम होंगे और 10 बजे इस केंद्र से होगा गज़लों का कार्यक्रम महफिल।

सुरों के रंग फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम होगा रात 10:30 बजे, 11 बजे हिंदी समाचार, 11:05 पर इंग्लिश न्यूज, और आज की सभा संपन्न होगी रात्रि 11:11 पर। तो ये था कार्यक्रम विवरण।

प्रातः के 7 बज चुके हैं। पेश खिदमत है आज का कार्यक्रम जोहार चाई वासा। आगाज़ कमाल खान और अलका याग्निक की आवाज़ों से। फिल्म का नाम है मैंने प्यार किया।

लगा प्रेम रोग अजब सा, न कोई दवा न इलाज, दिल की गलियों में बसता चुपचाप कोई राज, न दिन को चैन मिले न रात को नींद, हर सांस में वही चेहरा, हर पल वही रही।

दिल की बातें दिल ही जाने, और आइए सुनते हैं दिल से मुतल्लिक ये नगमा संगीतकार आनंद राज आनंद की आवाज़ में। फिल्म का नाम है मस्ती।

महबूबा, यह है इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। चाईबासा की धरती को मेरा जोहार, पहाड़ों की गोद में बसा सुकुमार संसार, सिंदूरी सूरज जब मुस्कुरा सिंदूरी सूरज जब मुस्काए हर शाम, लगता है प्रकृति खुद लिखती है कोई पैगाम। कोयल की कूक में सुबह का उजियारा, नदियों के संग बहता सपनों का सहारा, यहाँ की मिट्टी में मेहनत की खुशबू घुली, हर चेहरे पर उम्मीद की लौ है जली।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: सेना स्वयं ही घट पड़े। भारतीय सेना।
1: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
2: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
3: अले नवागे नहर में ना बले नवा नुकान परिस्थिति रे बले सब उड़ा वापस को रुड़ करना धरा रे ना कहेगी आम बले रुड़ तबन में अले परिवार से मतलब पूरे ये ना
4: वरना मंगलोरा को गांव बरगरा आड़की थाना तो जंगल गया है तो आउ का कहा मना है वो लोग का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम सुन पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखन तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
5: नाम है रंगबला देवी कहाँ बारे भक्तो तो घर आई में हमारे घर बहुत दुख के बात है तो हम बात हो जा है
6: मुकुल बुरन सिंह तमसोय अनिता तमसोय भूरूपा सेना करना ऐसे दुकुरा में ना आया या पाम ना रियल तपाम ना रियल वाह बेटा मिका
7: अन्यान तुम दो बुंबई कोड़ा पटन तुम गुंडे कोड़ा अन्यान हम दो कोदमरी कोड़ा रो पटन पटन तुम कितने कोड़ा मैंने मैं उन्हीं उन्हीं ने बागिया तो कि दोनों से यार की कोलो पुलिस कोलो उन्हें लड़ाई चलाओ तो मैं दूर रन गई यहाँ तो जाए तेरे काका गुंग हो उन्हें बुको को काको मेल नहीं है
8: अलिंग मुनि सुरेन पे ते आप ही लेता ना लिंग से जा हुरा रे मिना हीरो जिता हुरा रे मिना हीरो तो बुगिन हुरा ते ससन का है वो आगे बिता हुरा इनका अले आया न तुम ते ना मिल आप ही लेता ना।
2: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख दो बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।

देशभक्ति से लबरेज नगमों के अंतर्गत ये है कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। फिल्म का नाम है सरफरोश।

इस नगमे के साथ ही समाप्त हुआ चाहता है आज का कार्यक्रम जोहार चाईवासा। FM के 101.7 MHz पर हम आकाशवाणी चाईवासा से बोल रहे हैं। प्रातः के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात।

0: तवलीन निगम।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री
0: के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक
1: साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त।
0: प्रधानमंत्री मोदी दो दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया, इसे मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टरबाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट को 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशियाई जोड़ी से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन के बीच हेग में व्यापक विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
2: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों को नवाचार, निवेश, सतत विकास और रक्षा क्षेत्रों में अपने सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की आवश्यकता है। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी ने नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
2: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। ये यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
3: दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल स्वीडन को भारत की डिजिटल प्रतिभा और तकनीकी क्षमता के साथ स्वाभाविक साझेदारी मिलती है। वर्तमान में भारत में 280 से अधिक स्वीडिश कंपनियां सक्रिय हैं, जबकि लगभग 75 भारतीय कंपनियों ने स्वीडन में अपनी उपस्थिति स्थापित करी है। इस यात्रा का एक विशेष आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री का संबोधन है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष के साथ करेंगे। भारत यूरोपियन संघ फ्री ट्रेड समझौता भारतीय निर्यात के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, जिससे वस्त्र, लेदर, इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों को व्यापक बाजार पहुंच मिलने की संभावना है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी अब दोनों देशों की साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोथेनबर्ग यात्रा ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य की साझेदारी के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य कर रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी।
4: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
5: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
4: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली और भारतीय जनता पार्टी तथा अन्य पार्टी के नेताओं ने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि कई राज्यों की यात्रा के दौरान समिति आपत्तियां और सुझाव एकत्रित कर रही है। इससे जुड़ी चुनौतियों पर उन्होंने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा और दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान करना पड़ेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए निर्बाध प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
8: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आदेश का हवाला देते हुए एक अधिकारी ने कहा कि भोजशाला एक मंदिर होने के साथ साथ संस्कृत भाषा, व्याकरण और साहित्य के अध्ययन और अनुसंधान का केंद्र भी है। हिंदू समाज को प्राचीन परंपरा के अनुसार माँ देवी सरस्वती की पूजा अर्चना और अध्ययन के लिए इस परिसर में बिना किसी रोक टोक के आने का अधिकार होगा। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उस 7 अप्रैल 2003 के आदेश को भी रद्द कर दिया जिसमें मुस्लिम समुदाय को हर शुक्रवार भोजशाला परिसर में नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि मुस्लिम समुदाय जिले में मस्जिद निर्माण के लिए अलग जमीन के आवंटन के लिए राज्य सरकार से संपर्क कर सकता है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में पुणे से एक अन्य अभियुक्त प्रोफेसर मनीषा मंधारे को गिरफ्तार किया है। वे पुणे के एक कॉलेज में वनस्पति शास्त्र के अध्यापक हैं। सीबीआई के अनुसार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने मंधारे को परीक्षा प्रक्रिया में विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया था। इससे पहले सीबीआई ने 14 मई को पुणे से ही मनीषा वाघमारे को गिरफ्तार किया था। पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले से खुद को अलग कर लिया था। इसमें एकमात्र दोषी संजय राय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अध्यादेश 2026 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने की मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन किया गया है। कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिनों बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम से मणि हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को मुक्त से प्रतिबंधित करके संशोधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के अनुरूप लिया गया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: जी लवलीन, खेल खबरों में सबसे पहले बात बैडमिंटन की। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन

0: टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कॉर्नेडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। और अगर बात करें टेनिस की तो भारत के सिद्धांत बंथिया और बुल्गारिया के अलेक्जेंडर डोंस्की की जोड़ी ने पुर्तगाल में ओइरास 4 ATP चैलेंजर 100 टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। और टेनिस में ही इटली ओपन टूर्नामेंट में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में आज सिनर का सामना कैस्पर रूड से होगा। उधर बेंगलुरु में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे ने आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले टीम की तैयारियों पर जोर दिया है। भारतीय टीम 26 से 30 मई के बीच पर्थ हॉकी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैच खेलेगी। और अगर बात करें क्रिकेट की तो IPL में कल रात कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा और शाम 7:30 बजे से दिल्ली में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। जी लवलीन, खेल जगत से बस आज इतना ही।
1: मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान द्वीप समूह के कई हिस्सों और पूरे निकोबार द्वीप समूह में आगे बढ़ चुका है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून के 26 मई को केरलम तक पहुंचने की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हिमालय के तराई क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दशक को आपदाओं का दशक बताते हुए इस स्थिति को बदलने की अपील की है। लोक सत्य की सुर्खी है, मानवता के सामने कई बड़ी चुनौतियां, हालात नहीं बदले तो गरीबी के दलदल में फंसेगी दुनिया। प्रधानमंत्री की चेतावनी शीर्षक से दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है, एक ऐसे समय जब भारत पिछले कुछ वर्षों में करोड़ों लोगों को गरीबी से उबारने में सफल हुआ है, तब इससे अधिक चिंता की बात कोई और नहीं हो सकती कि फिर से न सिर्फ भारतीयों के बल्कि पूरी दुनिया के सामने आर्थिक संकट तेजी से बढ़ रहा है। भोजशाला में अब बिना रोक टोक के 365 दिन हो सकेगी पूजा। दैनिक जागरण ने इसे पहली खबर बनाते हुए लिखा है, प्रवेश और पूजा की नई व्यवस्था, भोजशाला में लौटा आस्था का उल्लास। नीट UG पेपर लीक मामले में दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, रक्षक ही भक्षक। पत्र के अनुसार NTA ने 4 नए अफसरों की नियुक्ति हुई, कथित सरगना कुलकर्णी को 10 दिन की हिरासत में भेजा। नवभारत टाइम्स की खबर है, जुलाई से CBSE के अंतर्गत 9वीं और 10वीं के विद्यार्थी पढ़ेंगे तीसरी भाषा, इनमें 2 भारतीय भाषाएं अनिवार्य होंगी। पत्र के अनुसार नए नियम 1 जुलाई से प्रभावी हो जाएंगे। आज विश्व दूर संचार दिवस पर राजस्थान पत्रिका लिखता है, धरती के संसाधनों को निचोड़ रहा आपके फोन में पड़ा डार्क डेटा। पत्र के अनुसार हर दिन अनावश्यक फाइल और चैट से बढ़ रहा है डार्क डेटा, जिसे संभालने में खर्च हो रही है बिजली और पानी। मॉनसून के अंडमान पहुंचने की खबर हिंदुस्तान में है। पत्र के अनुसार अगले हफ्ते दक्षिण पूर्वी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में पहुंचने के आसार।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेसन के साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया, इसे मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टर्बाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर VAT को 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. India and the Netherlands elevate their ties to strategic partnership following talks between Prime Minister Narendra Modi and his Dutch counterpart Rob Jetten. Prime Minister Modi to reach Gothenburg.

0: विधानसभा और लातेहार को छोड़ राज्य के अन्य जिलों में आज और कल मेघ गर्जन के साथ होगी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला हॉकी के विकास में योगदान के लिए नीदरलैंड के कोच की सराहना। देशवासियों से भारतीय टीम के समर्थन की अपील। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र से अपील करते हुए कहा है कि देश के करोड़ों आदिवासी समाज के लोगों के अस्तित्व, आस्था, संस्कृति और पहचान के सम्मान के लिए अलग सरना धर्म कोड जरूरी है। अपने सोशल मीडिया संदेश में उन्होंने कहा कि जनगणना में आदिवासी समाज को अलग आदिवासी या सरना धर्म कोड मिलना चाहिए ताकि उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को उचित मान्यता मिल सके। जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत झारखंड में घर घर सर्वे का कार्य शुरू हो गया। पहली बार डिजिटल माध्यम से हो रही इस जनगणना में स्वगणना के बाद प्रगणक और पर्यवेक्षक घर घर जाकर मकान सूचीकरण और मकानों की गणना करेंगे। यह अभियान 14 जून तक चलेगा। जनगणना निदेशालय के अनुसार राज्य के 24 जिलों में इस कार्य के लिए लगभग 65,000 प्रगणक और 10,858 पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। पहले चरण में मकानों की गिनती, मकानों को नंबर देने और नक्शा तैयार करने का कार्य किया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि कक्षा 10वीं में तीसरी भाषा R3 के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी और R3 के लिए सारा मूल्यांकन पूरी तरह से विद्यालय आधारित और आंतरिक होगा। जिला प्रशासन ने जेईई एडवांस परीक्षा 2026 के शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त आयोजन को लेकर रांची के परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू की है। यह आदेश आज सुबह 6 बजे से रात 9:30 बजे तक प्रभावी रहेगा। जिला प्रशासन के अनुसार शहर के 2 परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में बीएनएसएस की धारा 163 के तहत प्रतिबंध लागू किया गया है। परीक्षा के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। सिमडेगा पुलिस ने ऑपरेशन रेड हंट के तहत कार्रवाई करते हुए पीएलएफआई के धनेश्वर यादव उर्फ कारगिल को रांची से गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ बैजू राव ने बताया कि वह बानो थाना का वारंटी है।
1: बानो थाना में एक पीएलएफआई के सक्रिय उग्रवादी संगठन के सदस्य करीब 10 वर्षों से फरार चल रहे थे, जिसे गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर उसे हिरासत में भेजा जा रहा है।
0: रांची में बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस ने अलबटेका चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने पेट्रोलियम पदार्थों में मूल्य वृद्धि के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहराया।
2: तक 5 राज्य में चुनाव हुआ तब तक किसी तरह का कोई वृद्धि नहीं हुआ। आज जैसे चुनाव खत्म हुआ 5 राज्य का रिजल्ट आया, जनाधन, पेट्रोल, डीजल, दूध आदि सीएनजी में दाम बढ़ा रही है।
0: इधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लोगों को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम पदार्थों के संकट से पूरा विश्व जूझ रहा है। प्रधानमंत्री ने महंगाई पर काफी नियंत्रण किया हुआ है। पेट्रोलियम पदार्थों पर 115 देशों में मूल्य वृद्धि हुई है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक सैंडल, एटीआईआर न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक सैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य भर में वट सावित्री का पावन पर्व पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ कल मनाया गया। अखंड सौभाग्य और पति की लंबी उम्र की कामना के लिए महिलाओं ने निर्जला व्रत रखकर बरगद के वृक्ष की पूजा अर्चना की। महिलाओं ने आज सुबह पारण कर व्रत पूरा किया। कोडरमा थाना क्षेत्र के मिटको कॉलोनी में महिला की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। कोडरमा के एसपी कुमार शिवाशीष ने बताया कि तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
3: 14 मई 2026 को मिटको कॉलोनी में श्रीमती नेहा राज हत्या कर दिया गया था। टोटल दो अक्यूज हैं इस मर्डर के केस की। इसका कारण ये था कि जो मृतिका हैं उनके हस्बैंड शंभू राणा का इलिसिट अफेयर चल रहा था देवंती देवी के साथ। जब इसके बारे में देवंती देवी के हस्बैंड को पता चला तो उन्हें द्वेष के भावना में आके हत्या कर दिया गया।
0: मौसम विभाग के अनुसार 19 मई तक पलामू, गढ़वा और लातेहार में लू चलने की संभावना है। वहीं आज और कल राज्य के अन्य जिलों में बादल छाए रहने, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने तथा गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी के प्रति समर्थन और प्रोत्साहन व्यक्त किया है। नीदरलैंड्स के हेग दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने भारतीय महिला हॉकी के विकास में योगदान के लिए नीदरलैंड्स के मुख्य कोच सजोर्ड मार्जिने की सराहना की। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से इस वर्ष नीदरलैंड्स और बेल्जियम में होने वाले FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप में भारतीय टीम का समर्थन करने की अपील भी की।
4: जैसे क्रिकेट में भारतीयों का योगदान है, वैसे ही भारत की हॉकी में नीदरलैंड्स का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। डच कोचेज की भी मेहनत रही है। हमारी विमेन हॉकी टीम बीते कुछ समय से शानदार परफॉर्मेंस कर रही है। इसमें कोच मरीन का अहम रोल है कि वर्ल्ड कप जो भी कोई जीते, लेकिन इतना पक्का है कि इस ओलंपिक में भारत और नीदरलैंड की दोस्ती जरूर जीतेगी।
0: झारखंड स्टेट कबड्डी एसोसिएशन की विशेष आम सभा की बैठक आज सुबह 10 बजे से जमशेदपुर में आयोजित की जाएगी। झारखंड स्टेट कबड्डी एसोसिएशन ने बताया कि संगठनात्मक गतिविधियों और आगामी कार्यक्रमों को लेकर बैठक में चर्चा की जाएगी। हजारीबाग जिला चेस एसोसिएशन द्वारा चौथा HDC ऑल इंडिया ओपन फाइट रेटिंग टूर्नामेंट 2026 का आयोजन हजारीबाग में किया जा रहा है। विनोबा भावे विश्वविद्यालय के मल्टीपर्पज हॉल में विधायक प्रदीप प्रसाद ने इसका उद्घाटन किया, जिसमें देश भर से 800 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। टूर्नामेंट दो चरणों में होगा। पहला चरण 20 मई तक ओपन वर्ग के लिए और दूसरा चरण 21 से 24 मई तक 1,800 से कम रेटिंग वाले खिलाड़ियों के लिए होगा, जिसमें कुल 6,11,000 रुपए के पुरस्कार रखे गए हैं। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने बालूघाटों के लीज मंजूरी और नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तारी की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा है, नीट यूजी पेपर लीक मामले में महिला लेक्चरर गिरफ्तार। दैनिक भास्कर ने लिखा है, 6 बड़े बालूघाटों के लीज डीड फाइनल, मॉनसून से पूर्व रिकॉर्ड स्टॉक की तैयारी। हिंदुस्तान ने झारखंड के अदालतों में हाईब्रिड मोड में सुनवाई की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखा है, JTET से खुलेगा शिक्षकों के सहायक आचार्य बनने का रास्ता। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र से जनगणना में अलग सरना धर्म कोड की मांग दोहराते हुए कहा, आदिवासी समाज की पहचान के लिए अलग धर्म कोड जरूरी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन किया अनिवार्य। JEE एडवांस्ड परीक्षा को लेकर रांची में निषेधाज्ञा लागू। परीक्षा के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति। पलामू, गढ़वा और लातेहार को छोड़ राज्य के अन्य जिलों में आज और कल मेघ गर्जन के साथ होगी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला हॉकी के विकास में योगदान के लिए नीदरलैंड की कोच की सराहना की। देशवासियों से भारतीय टीम के समर्थन की अपील। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मुझे सतना मध्य प्रदेश के कोई श्रीमान भरत गुप्ता करके हैं, माय गॉड पर एक मेल भेजा, रेलवे में जा रहे थे, उसका अपना अनुभव कहा। उन्होंने कहा साहब मैं पहले भी रेलवे में जाता था, इस बार भी रेलवे में गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि रेलवे में हर पैसेंजर, रेलवे में लोग खाते पीते रहते हैं, कागज वागज फेंकते रहते हैं, बोले कोई फेंकता नहीं था। इतना ही नहीं, ढूंढते थे भाई कहीं डिब्बे में डस्टबिन है कि हम कूड़ा कचरा उसमें डालें, और जब देखा कि भाई रेलवे में ये व्यवस्था तो नहीं है, तो उन्होंने खुद ने एक कोने में ही सब लोगों ने अपना कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दिया। बोले ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था, मैं भरत जी का आभारी हूँ कि उन्होंने ये जानकारी मुझे पहुँचाई। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा प्रभाव छोटे छोटे बच्चों में हुआ है। सैकड़ों परिवार ये बात की चर्चा करते हैं कि हमारा बच्चा अभी कहीं चॉकलेट खाता है तो कागज तुरंत उठा लेता है। मैंने अभी एक सोशल मीडिया में किसी का देखा था, किसी ने लिखा था आज का मेरा हीरो, और आज का मेरा हीरो में उन्होंने किसी बच्चे की तस्वीर दी थी और कहा था कि वो बच्चा खुद इन दिनों कहीं पर भी कूड़ा कचरा है तो उठा लेता है, स्कूल जाता है तो उठा लेता है, अपने आप कर रहा है। आप देखिए सबको लगने लगा है कि हमारा देश, हम गंदा नहीं करेंगे, हम गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे, और जो भी करते हैं वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तुरंत कोई न कोई उनको टोकने वाला मिल जाता है। मैं इसे शुभ संकेत मानता हूँ।

ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। प्रस्तुत है लोक संगीत का हमारा कार्यक्रम माटी की महक। इसमें आज के कलाकार हैं विश्वनाथ महतो और साथी।

माटी की महक। लोक संगीत के हमारे इस दैनिक कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे विश्वनाथ महतो और साथियों से कुरमाली लोकगीत।

पूर्वान्न के 9 बज रहे हैं और पेश है आज का विविधा कार्यक्रम, जिसमें आज मैं हूं आपके साथ। आज का संगीत साथी SB सिंह।

श्रोताओं, आज 17 मई का दिन वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर कई महत्वपूर्ण विषयों को समर्पित है। इसका मुख्य महत्व स्वास्थ्य जागरूकता और सामाजिक अधिकारों को बढ़ावा देने से जुड़ा है। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, जी हाँ, आज 17 मई को उच्च रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, इसके खतरों और इसके प्रबंधन के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिन मनाया जाता है।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विविधा। विविधा है या जीवन की अनमोल कहानी, हर पन्ने पर लिखी एक नई रवानी। कभी धूप की चुभन, कभी छांव का सुकून, इसी में छिपा है सुख दुख का जुनून। रंग बिरंगे अनुभवों का मेल यहाँ, हर मोड़ पर बदलता है खेल यहाँ। कभी सपनों की उड़ान, कभी हकीकत का भार, इसी से बनता है जीवन का आकार। विचारों की नदियाँ यहाँ बहती अनगिनत, हर मन में पलते हैं अलग अलग रंगीन। कोई आशा बनता, कोई बनता निराशा, फिर भी चलती रहती जीवन की अभिलाषा। विविधा में ही छिपा है सृष्टि का सार, यही सिखाती है जीना बार बार। जो इसे समझ ले वही ज्ञानी कहलाए, हर परिस्थिति में मुस्कान बिखराए।
1: बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
2: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
3: परिवार जन बेटा क्रांति बेसरा नेहर में बोले नौकान परिस्थिति बोले सब वापस को रुआ धरा रे नाकागी आम बोले रुआड़ तबन में अले परिवार से मतलब पूरे ये ना
4: वरना मंगलोरा को गांव बरगरा आड़की थाना तो जंगल गया है तो आउ का कहाँ बना है वो लोग आउ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम रसने पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखन तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
5: नाम है रंगबला देवी कहाँ बारे भक्तो तो कहाँ तो घर आई नहीं हमारे घर है बहुत दुख के बात है तो अखन बात हो जा है
6: मुकुल बुरम सिंह तमसाय अनिता तमसाय भूरूपा सिन्हा करना ऐसे दुखुर में ना ये वापा में रियल तपा में रियल वाह बेटा निकला
7: अन्यान पिंडो बुंदाई कोड़ा पटन को मुंडे कोड़ा अन्या हम दो कोदमरी कोड़ा और पटन पटन को कितने कोड़ा मैंने बुरुड़ी ने बागिया तो कि मैंने आसे आसे को लो पुलिस को लो इन्हीं लड़ाई चलाओ तो मैं बुरुड़ी में गया तब जाए तेरे काका भी वो उन्हें बुको को काको मेल नहीं है
8: अलग मुनी सुरन पे थे आप ही लेते ना लेंगे जा हुरा रे मिना हीरो जिसा हुरा रे मिना हीरो तो बुगिन हुरा थे सेशन का है वो आ गया बेटा हुरा इनका अले आया न तुम कहीं ना मिल आप ही लेते ना।
2: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि, 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।

दोस्तों, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कार्यक्रम की शुरुआत में कि आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है, तो इस पर चंद पंक्तियाँ सुबह की चाय से पहले ही फोन की घंटी बज जाती है। खबरों की भीड़ में हर पल धड़कन तेज हो जाती है। भाग दौड़ में जीवन ऐसा, सांसें भी अब थक जाती हैं। सोचों का बोझ बढ़ता जाए, नींदें भी उड़ जाती हैं। न चैन सुबह न शाम सुकून, हर पल चिंता घिर जाती है। छोटी छोटी बातों में भी तन मन की नसें तक तन जाती हैं। दवा नहीं बस आराम चाहिए, थोड़ा सा विश्राम चाहिए। योग ध्यान और सादगी में जीवन को विराम चाहिए। हंस लेना, चलना धीमे से, दिल को थोड़ा थाम लेना। हाइपरटेंशन के तूफान में भी खुद को फिर से जान लेना, खुद को फिर से जान लेना।

हाइपरटेंशन। इस कविता के बाद, चूंकि आज विश्व दूर संचार दिवस भी है, विश्व दूर संचार दिवस 1969 से प्रति वर्ष 17 मई को मनाया जाता है। यह तिथि अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार प्रौद्योगिकी की स्थापना की वर्षगांठ का प्रतीक है। इसकी स्थापना 17 मई 1865 को पेरिस में हुई थी, जब पहले अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो क्यों नहीं एक कविता हो जाए विश्व दूर संचार दिवस पर। आज शब्दों ने फिर पंख फैलाए हैं, आज शब्दों ने फिर पंख फैलाए हैं, दूर देशों से भी संदेश आए हैं। धरती सिमट गई है एक धागे में, तकनीक ने रिश्ते नए बनाए हैं। कभी चिट्ठी थी, अब ईमेल है साथी, पल भर में दुनिया लगती है अपनी सी। आवाजें उड़ती हैं तारों के पार, हर दिल से जुड़ता है दिल का व्यापार। मोबाइल की चमक में सपने पलते हैं, नेटवर्क के पुल पर विचार चलते हैं। सूचना की आग बहती निरंतर, ज्ञान के दीप हर मन में जलते हैं। पर याद रहे, इस गति के संसार में मानवता भी हो संवाद के आधार में। शब्दों का उपयोग सदा हो सुंदर, जुड़े दिल न बढ़े दूरी के अंदर। विश्व दूर संचार दिवस का संदेश यही, जुड़े रहें सब, टूटे न कोई कहीं। जुड़े रहें सब, टूटे न कोई कहीं। प्रगति के पथ पर बढ़े हर कदम, प्रेम और ज्ञान से रोशन हो हर जन्म।

0: और श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं बाबू जगजीवन राम पर एक वार्ता। वार्ताकार हैं बॉलीवुड के कलाकार तरुण मोहम्मद।
1: बाबू जगजीवन राम एक ऐसी शख्सियत का नाम है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। बिहार के भोजपुर के चंदवा नामक गांव में 5 अप्रैल 1908 को उनका जन्म हुआ था। बचपन से ही वे अत्यंत साहसी तथा विद्रोही प्रवृत्ति के थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा बिहार के आरा में हुई। आरा के स्कूल में दलित बच्चों के लिए पानी का अलग अलग घड़ा रखा जाता था। जैसे दलितों के लिए अलग घड़ा, सवर्णों के लिए अलग घड़ा था। मतलब छुआछूत की भावना थी। तो बालक जगजीवन ने उस घड़े को तोड़कर अपना पहला जाति विरोधी आंदोलन स्कूल से ही शुरू कर दिया था। मतलब बाध्य होकर स्कूल के प्राधान्याध्यापक को उस घड़े को हटाना पड़ा। जो ये परिपाटी चल रही थी उस परिपाटी को ही खत्म कर देना पड़ा। 10वीं कक्षा की पढ़ाई करने के बाद उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। लखनऊ के एक क्रिश्चियन स्कूल में उन्हें मुफ्त पढ़ाई और अमेरिका जाने का ऑफर तक मिला था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भी जातिगत भेदभाव के खिलाफ आंदोलन किया था। बाद में उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई पूरी की। कलकत्ता से ही बाबू जगजीवन राम के राजनीतिक जीवन का आगाज हुआ। यहां आने के 6 महीने के भीतर ही उन्होंने विशाल मजदूर रैली का आयोजन किया। इस रैली में भारी मात्रा में लोग इकट्ठा हुए। अरे इसी रैली से तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बाबूजी का नेतृत्व क्षमता का पता चला। बाबू जगजीवन राम को इसी काल में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद और महान लेखक मन्मथ नाथ गुप्त के साथ काम करने का मौका मिला। वर्ष 1934 में कलकत्ता के विभिन्न जिलों में संत रविदास जयंती मनाने के लिए बाबूजी ने भारतीय रविदास महासभा का गठन किया। इसके अलावा उन्होंने 2 अन्य संगठनों का भी गठन किया और वे थे खेतीहर मजदूर सभा और भारतीय दलित वर्ग संघ। वर्ष 1934 में ही जब पूरा बिहार भूकंप की तबाही से पीड़ित था, बाबूजी ने भूकंप पीड़ितों की राहत के लिए अपने कदम बढ़ा दिए। वे गांधी जी के विचारों से बहुत प्रभावित थे। गांधी जी से इसी साल उनकी मुलाकात बिहार में हुई। जब अंग्रेज दलितों को सामूहिक धर्म परिवर्तन, बिल्कुल मास जो है ना परिवर्तन करा रहे थे, धर्म परिवर्तन मजबूर कर दिया था, जब तब बाबूजी ने इस अन्यायपूर्ण कार्य को रोका। इसी घटनाक्रम ने बाबूजी के दलितों के एक सर्वजान्य जो सर्वमान्य राष्ट्रीय नेता बना दिया। वह अब गांधी जी के प्रिय पात्र बन गए। आपको बता दें कि अगस्त 1933 में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। जून 1935 में उनकी दूसरी शादी हुई। कानपुर के लोकप्रिय सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर बीरबल की बेटी इंद्राणी देवी के साथ, जिनसे इनकी 2 बच्चे हुए, सुरेश कुमार और मीरा कुमार। मीरा कुमार ने 2004 और 2009 में सासाराम से जीत हासिल की और 2009 में लोकप्रिय लोकसभा की जो पहली महिला अध्यक्ष बनी। 1936 में अंग्रेज बिहार में कांग्रेस को हराकर कठपुतली सरकार बनाना चाह रहे थे। कठपुतली सरकार माने एक ऐसी सरकार जो उनके इशारे पर चले, लेकिन बाबूजी ने अंग्रेजों की इस चाल को विफल कर दिया, ध्वस्त कर दिया। अंग्रेजों ने उन्हें एक बड़ी रकम देने का लोभ भी दिया था, लालच भी दिया था। उस लालच को, उस प्रलोभन को इन्होंने ठुकरा दिया। गांधी जी बाबूजी के इस कृत्य से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, जगजीवन राम तपे कंचन की भांति खरे व सच्चे हैं, मेरा हृदय इनके प्रति आदरपूर्ण प्रशंसा से आपूरित है। अब ये अंग्रेजों द्वारा जो बनाई जा रही थी कठपुतली सरकार, ये तो नहीं बन पाई। कांग्रेस ने सरकार का गठन कर दिया और इस नवगठित सरकार में बाबूजी को कृषि मंत्रालय, सहकारी उद्योग और ग्रामीण विकास मंत्रालय में संसदीय सचिव नियुक्त किया गया। वर्ष 1938 में अंडमान निकोबार के कैदियों के मामले में गांधी जी अत्यंत क्रोधित हो गए। उनके एक आह्वान पर लोकसभा के सांसदों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज किया और बाबूजी को आंदोलन के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी सौंप दी। बाबूजी ने इस कार्य को बखूबी निभाया, लेकिन 10 दिन के बाद ही बाबूजी को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। 1943 में बाबूजी को जेल से रिहा कर दिया गया और बाबूजी गांधी जी के साथ मिलकर आजादी की लड़ाई में पूरे दमखम के साथ कूद पड़े। अंग्रेज पूरी तरह से पस्त हो गए थे। लॉर्ड बावेल ने 1946 में अंतरिम सरकार के गठन के लिए देश के 12 प्रभावशाली नेताओं को आमंत्रित किया था, जिसमें आपको बता दें कि जिसमें बाबूजी का नाम भी शामिल था। इसी साल जेनेवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन इसमें भाग लेकर अपने देश वापस लौटते समय बाबूजी का विमान इराक के बसरा के रेगिस्तान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि बाबूजी को ज्यादा चोटें नहीं आई, ज्यादा आहत तो नहीं हुए और सामान्य इलाज से ठीक हो गए। 1947 में देश आजाद होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में गठित लोकसभा में बाबू जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय का दायित्व सौंपा गया। इस दायित्व का निर्वाह उन्होंने बड़ी कुशलता से किया और उसकी वजह भी है क्योंकि श्रम से जुड़े कार्यों का उन्हें अच्छा खासा नॉलेज था, अनुभव था, एक्सपीरियंस था उनका। उनका जन्म ही चंदवा के खेतीहर मजदूर परिवार में हुआ था और दूसरा कलकत्ता में मिल मजदूरों की समस्याओं से अवगत थे, वे वाकिफ थे। इसीलिए बाबूजी ने श्रम मंत्री के रूप में कुछ महत्वपूर्ण अधिनियमों को लागू किया। अब वे अधिनियम थे, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, मिनिमम

राम जी कहते थे कि संसद भवन मेरा दूसरा घर है, ये उनके समर्पण को दिखाता है। 1952 में जब बाबूजी सासाराम लोकसभा सीट से विजयी होकर संसद बने, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें संचार मंत्री का पद सौंपा। साथ ही उन्हें विमानन विभाग की भी जिम्मेदारी दी गई। बाबूजी के प्रयास से ही निजी विमान कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया गया। लिहाजा ये आज जो एयर इंडिया है, ये सब उन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया है, ये सब गठित किया गया। एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, वायुसेना निगम, इनकी स्थापना उन्होंने की थी, बाबू जी ने की थी। उनके ही प्रयास से देश के गांव गांव में डाक व तार विभाग का जाल बिछा दिया गया। उनके इस चुनौतीपूर्ण कार्य से प्रभावित होकर देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, बाबू जगजीवन राम दृढ़ संकल्प कार्यकर्ता तो हैं ही, साथ ही त्याग में भी वह किसी से पीछे नहीं रहे हैं। इनमें धर्म उपासकों का सा उत्साह और लगन है। 1956 में बाबूजी फिर से सासाराम से निर्वाचित हुए और 1956 से 62 तक रेल मंत्री के रूप में देश को अपनी सेवा दी। उन्होंने इंडियन रेलवेज का तो बिल्कुल आप कहिए काया ही पलट कर दी और अपने 5 सालों के कार्यकाल में रेल भाड़े में 1 रुपया तक नहीं बढ़ाया। ये निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक फैसला है और उनके द्वारा उठाया गया एक सराहनीय कदम है। इस काल में रेल मार्ग का विस्तार भी बहुत हुआ है, काफी हुआ है विस्तार। 1962 के आम चुनाव में एक बार फिर सासाराम लोकसभा सीट से बाबूजी विजय होकर के सांसद बने। इस बार उन्हें परिवहन एवं संचार मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन कामरा योजना के तहत उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस को मजबूत करने में लग गए। 1966 के आम चुनाव में सासाराम की जनता ने एक बार फिर से बाबूजी को जीत का सेहरा पहना दिया। बाबूजी सांसद के रूप में केंद्र में आए और इस बार उन्हें फिर से खाद्य मंत्रालय सौंपा गया, परंतु 1 साल के बाद ही उन्हें कृषि तथा खाद्य मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। चीन और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान जब भारत में भुखमरी जैसी हालत पैदा हो गई थी ना, तो बाबूजी ने इससे निपटने के लिए हरित क्रांति की नींव रखी और 2 साल में ही भारत आत्मनिर्भर देश बन गया। बाबूजी ने देश को भीषण बाढ़ की आपदा से भी उबारा है। 1970 के आम चुनाव में फिर से बाबूजी निर्वाचित हुए और इस बार इंदिरा गांधी की सरकार ने उन्हें रक्षा मंत्रालय का कार्यभार सौंपा। उनके कार्यों से प्रभावित होकर राजीव गांधी ने क्या कहा था पता है? राजीव गांधी ने कहा था, राष्ट्र को आजाद करने में बाबूजी का योगदान सराहनीय रहा है, देश को अनाज की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने में तथा बांग्लादेश की मुक्ति युद्ध में उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। 1974 में बाबूजी को कृषि एवं सिंचाई विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। बाबूजी ने देश की जनता को कम कीमत पर खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए सार्वजनिक खाद्य वितरण प्रणाली की नींव डाली, जो आज भी लागू है। ये जो राशन वगैरह है ना, उनकी ही देन है। आज जो सस्ता राशन, जो राशन दुकानों से जो अनाज दी जाती है, ये सब उनकी ही नींव डाली गई, इसकी नींव उन्होंने ही डाली थी। इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए इमरजेंसी के दौरान बाबूजी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया।

और कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक नई पार्टी का गठन किया। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी और आम चुनाव में बाबूजी की एक बार फिर जीत हो गई। जनवरी 1979 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बाबूजी को भारत का उप प्रधानमंत्री घोषित किया गया। मार्च 1980 में जनता पार्टी से अलग होकर बाबूजी ने एक अलग पार्टी कांग्रेस जे इस नाम के पार्टी का गठन कर दिया और 1984 के आम चुनाव में फिर बाबूजी की जीत हो गई। अत्यंत ईमानदारी, साहस, ज्ञान और अपने अमूल्य अनुभवों से बाबूजी सदैव अपने देश के लिए कार्य किया। बाबूजी ने 6 जुलाई 1986 को 1986 को उन्होंने अंतिम सांस ली। देश के लिए किए गए उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। बाबूजी को शत शत नमन।

अभी आप सुन रहे थे वार्ता बाबू जगजीवन राम। वार्ताकार थे बॉलीवुड कलाकार, लेखक और निर्देशक तरुण मोहम्मद।

नजरों में तेज पर मन में अंधेरा, होठों पे सच्चाई भीतर है फेरा। कभी मंदिर जैसा कभी मदिरा सा छल, इंसान का चेहरा कितना है बदल। कभी दान का दीपक कभी स्वार्थ की लौ, कभी सत्य का पथिक कभी झूठ का द्रोह। भीतर ही भीतर चलता है संग्राम, पवित्र भी पापी यही है उसका नाम।

न तलवारें बदल सकीं इतिहास के पन्ने, तवारीख के पन्ने, नहीं शोर शराबे मिटा पाए गहरे जख्म अपने, जो बदल दे सोच की दिशा को धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता, वो ताकत है बस कलम की जो चुपचाप असर करे।

आजकल याद कुछ रहता नहीं आपकी याद आने के बाद। ये हैं मोहम्मद अजीज़, फिल्म का नाम नगीना।

आपकी याद जब आती है दिल की धड़कन बढ़ जाती है, खामोशी भी कुछ कहने लगती है, रात भी थोड़ी सिहर जाती है। आप दूर होकर भी पास लगते हैं, हर दर्द में खास लगते हैं। आपकी याद ही तो है जो अकेले में भी साथ लगते हैं।

कभी विरह की चुप्पी, कभी मिलन की बात, कभी यादों की बारिश, कभी सपनों की रात। हर एहसास से यहाँ एक धारा बन बहता, मन का हर कोना कुछ कहानी कहता। रस रंजन में जीवन का सार छिपा है, हर अनुभव में कोई उजियार छिपा है। जो इससे समझ ले वही कवि बन जाए, भावों के आकाश में दीपक जलाता है।

मैं तेरी यादों से मगर, कब कहाँ बचता रहा मैं। जिस मोड़ पे तूने छोड़ा था मुझे तन्हा कभी, उसी मोड़ पे हर शाम ठहरता रहा मैं।

निकाह। अब आइए सुनते हैं इस फिल्म का नगमा। गुलकारा हैं सलमा आगा। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए,

हर मुलाकात में मुस्कान रखी जाती है, पर आँखों में कुछ कई अनकही बातें छुपी जाती हैं। दिल पूछे भी तो लब खामोश रहते हैं, और बस रस्मन आवाज़ निकल आती है, जनाब कैसे हैं।

जो स्क्रीन से बाहर आकर हालात से लड़ता है वही असली नायक है, जो गिरकर भी खड़ा रहता है। न ताली चाहिए उसे, न शोहरत की चाहत है, उसकी मेहनत ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। रील की दुनिया तो बस एक पल का सपना है, रियल लाइफ का संघर्ष ही सच्चा अपना है। जो सच को जी ले हर दिन वही विजेता कहलाए, रील नहीं रियल जीवन का नायक आगे बढ़ जाए।

कहते हैं लोग इसे झुका दो ज़माने के आगे, पर ये तो इबादत है, कैसे झुके किसी धागे। जो दिल से उठे वो हर दीवार तोड़ देता है, प्यार सच में कभी भी झुकता नहीं, बस जोर देता है। जी हाँ, ये है कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। फिल्म का नाम है प्यार झुकता नहीं। आवाज़ें लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की।

इस समय रेडियो की घड़ी में पूर्वान्न के ठीक 10 बज रहे हैं। पेश खिदमत है फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम, जिसमें आज आप सुनेंगे मिश्रित गीत। आगाज फिल्म बंदिश के इस नगमे से।

बोलना तो है मगर क्या बोलें, सच कहें तो कई चेहरे डोलें, झूठ की महफिलें सजी हैं यहाँ, सच की राहों में कांटे बोलें।

मिटा सकते तो मिटा लो, लफ्जों के निशा सहारे, लेकिन हर एक सदी में एक नई बहार निकलेगी, जो दर्द दिल में पलता वो गीत बन के गाएगा, इंसाफ की राहों में दीपक सा जगमगाएगा। तूफान चाहे कितने रास्ते बदल दे, मगर इंसान की सारी सच्ची फितरत दीवार तोड़ निकलेगी।

कभी राधा कृष्ण के लिए बंसी में गूंजी, कभी हीर रांझा की सांसों में पूंजी, कभी लैला मजनू रेगिस्तान चले, कभी सीरी फरहाद पत्थरों से लड़े, मोहब्बत ने ताजमहल भी बनवाया, कभी जुदाई ने अश्कों का समंदर बहाया। ये मंदिर की घंटी अजानों में रही, हर भाषा हर बोली फसानों में रही, कभी खतों में महकती रही चुपके चुपके, कभी आँखों से कही गई बातें बन के। युद्धों ने चाहा इसे मिटा देना, नफरत ने चाहा इसे झुका देना, पर प्रेम की लौ हर बाल जल उठी, राख से जैसे कोई सुबह निकल उठी।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, एफएम के 101.7 मेगा हर्ट्ज पर। पूर्वान्ह के 10:30 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची से प्रसारित कार्यक्रम, और मुलाकात होगी सांध्यकालीन सभा में। शाम 5 बजकर कार्यक्रम होगा फौजी भाइयों के लिए जय भारती। इस रविवार कार्यक्रम को सुनना न भूलेंगे, और कीजिए इंतज़ार हमारे अगले प्रसारण का।

0: ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करने का सबसे सुंदर समय होता है।
1: बिल्कुल सही कहा आरती। जब उगते सूरज की पहली किरण धरती को रोशन करती है, पक्षियों की मधुर चहचहाट वातावरण को संगीत से भर देती है और ठंडी हवाएं मन को छूती है, तब ऐसा लगता है मानो प्रकृति स्वयं हमें एक नया संदेश दे रही हो कि हर नया दिन नई उम्मीद लेकर आता है।
0: बिल्कुल, और इसी सकारात्मक ऊर्जा के साथ जोहार रांची में हम हर सुबह ये कोशिश करते हैं कि आपके दिन की शुरुआत भक्ति, सुकून और अच्छे विचारों के साथ हो, क्योंकि भागदौड़ भरी जिंदगी में कुछ पल ईश्वर के नाम भी तो होने चाहिए, कुछ पल अपने मन की शांति के लिए भी होने चाहिए।
1: तो चाहे आप घर में सुबह की तैयारी कर रहे हो, ऑफिस जाने की जल्दी में हो, पढ़ाई में जुटे हो, या फिर चाय की प्याली के साथ इस सुबह का आनंद ले रहे हो, हम चाहते हैं कि आने वाले कुछ पल आपके मन को पूरी तरह शांति और भक्ति से भर दें।
0: और चूंकि मैं और अर्चना आज बड़े दिनों बाद मिले हैं, इसलिए बातें थोड़ी लंबी हो रही हैं, और इसलिए इसे आगे भी बढ़ाते हैं कि देखिए, भजन केवल संगीत नहीं होते, ये हमारी आस्था, हमारी संस्कृति और हमारी भावनाओं का सुंदर संगम भी होता है। भजन सुनते सुनते मन शांत होता है, विचार सकारात्मक होते हैं और भीतर एक नई शक्ति का एहसास होता है। तो आइए ना,
1: तो आइए इस पावन सुबह में हम सब मिलकर प्रभु का स्मरण करें, अपने मन की सारी
0: चिंताओं को
1: कुछ देर के लिए दूर रखें और खुद को भक्ति के रंग में रंग लें।

0: सच में कितना सुकून देने वाला यह भजन था अर्चना। उम्मीद है भक्ति के इन मधुर सुरों ने आपके मन को भी सुकून दिया होगा और आपके दिन की नई दिन को नई ऊर्जा से भर दिया होगा।
1: बिल्कुल। और इस अब इसी सुहानी सुबह में आगे बढ़ते हैं एक और जरूरी जानकारी की ओर। घर से बाहर निकलने से पहले जान लेते हैं रांची और आसपास के इलाकों के मौसम का हाल, ताकि आपका दिन और भी बेहतर तरीके से बीते।
0: बिल्कुल। और मई के इस महीने में झारखंड का मौसम कभी तेज धूप तो कभी अचानक बादल और बारिश के रंग दिखा रहा है। ऐसे में आइए जान लेते हैं कि आज यानी 17 मई 2026 को रांची और आसपास का मौसम कैसा रहने वाला है।
1: बिल्कुल। मौसम विभाग के अनुसार जो मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है तो आज हल्के बादल छाए रहेंगे और मौसम अपेक्षाकृत आरामदायक रहेगा और हल्की ठंडी हवाएं महसूस की जा सकती है।
0: और अगर तापमान की बात करें तो दिन का अधिकतम तापमान लगभग 36 से 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान तकरीबन 24 से 25 डिग्री सेल्सियस रह सकता है।
1: और दोपहर के समय धूप थोड़ी तेज रह सकती है, इसलिए अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो पानी साथ रखें और तेज धूप से बचने की कोशिश करें।
0: देखिए पिछले कुछ दिनों से झारखंड में मौसम का मिजाज तो बदल रहा है और कई जगहों पर गरज और चमक के साथ बारिश भी देखने को मिली। अब कल ही की बात ले लीजिए अर्चना, कल इतनी उमस भरी गर्मी थी, कल शाम बहुत ज्यादा गर्मी थी और देखिए फिर आज फिर ऐसे अनुमान है कि बारिश हो सकती है और फिर बादल छाए रहेंगे।
1: इसीलिए तो शाम के समय आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है और कुछ इलाकों में हल्की हवा चलने की संभावना भी है। आज भारी बारिश की संभावना कम बताई जा रही है, लेकिन मौसम का बदलता मिजाज कभी भी हल्की फुहारों का एहसास करा सकता है
0: और हवा की गति लगभग 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है। सूर्यास्त आज शाम करीब 6:23 पर होने का अनुमान जताया गया है।
1: तो कुल मिलाकर कहा जाए तो आज का दिन गर्मी और हल्के बादलों के बीच बीतेगा। सुबह और शाम का मौसम अपेक्षाकृत सुहाना रहेगा, जबकि दोपहर में गर्मी अपना असर दिखा सकती है।
0: तो श्रोताओं, आप मौसम का आनंद लीजिए, लेकिन अपनी सेहत का भी पूरा ध्यान रखिए। पर्याप्त पानी पीते रहिए, हल्के कपड़े पहनिए और अब इसी सुहाने मौसम के एहसास के साथ वक्त हो गया है एक प्यारे से गीत का।
1: आइए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत।

0: आरती, आज की दुनिया में अगर किसी चीज ने इंसानों को सबसे तेजी से जोड़ा है तो वह है संचार और सूचना तकनीक। मोबाइल फोन, इंटरनेट और डिजिटल माध्यमों ने हमारी जिंदगी को इतना आसान बना दिया है कि अब दूरियां सिर्फ नाम की रह गई हैं।
1: बिल्कुल, और इन्हीं आधुनिक संचार सेवाओं और ICT यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के महत्व को समझाने के लिए हर साल 17 मई को विश्व दूर संचार एवं सूचना समाज दिवस मनाया जाता है। ये दिन अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ यानी ITU की स्थापना की याद में मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 17 मई 1865 ईस्वी में हुई थी।
0: आज तकनीक ने शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और सामाजिक जीवन हर क्षेत्र में नई क्रांति लाई है। जहां तकनीक हमें आगे बढ़ा रही है, वहीं तेज रफ्तार जीवन शैली और बढ़ता तनाव हमारी सेहत पर भी असर डाल रहा है।
1: और आपको बता दें कि आज एक दूसरा महत्वपूर्ण दिवस भी है अर्चना, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस भी है आज। तो आजकल देखिए, काम का दबाव, देर तक मोबाइल और स्क्रीन का इस्तेमाल, अनियमित दिनचर्या और तनाव, ये सब हाई ब्लड प्रेशर जैसी गंभीर समस्या को बढ़ा रहे हैं। और इसलिए लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और सेहत को अच्छा रखने के लिए खेल कूद भी बेहद जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: तो खेल जगत की अगर बात करें तो वर्ष 1987 में भारतीय क्रिकेट के महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया। अपनी शानदार बल्लेबाजी और अनुशासन के लिए पहचाने जाने वाले गावस्कर ने भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया।
1: बिल्कुल, और देखिए, आज ही के दिन 2010 में भारतीय मुक्केबाजों ने कॉमनवेल्थ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए सभी 6 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। बीजिंग ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता विजेंदर सिंह समेत दिनेश कुमार, परमजीत समोटा, अमनदीप सुरोन जॉय और जय भगवान ने अपने अपने वर्ग में जीत हासिल कर भारत का गौरव बढ़ाया। विजेंद्र सिंह को प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ बॉक्सर घोषित किया गया और भारत ने टीम चैंपियनशिप भी अपने नाम की।
0: बिल्कुल, और अब नजर डालते हैं 17 मई को जन्मे कुछ विशेष व्यक्तियों पर। साल 1749 में जन्म हुआ एडवर्ड जेनर का, जिन्हें चेचक के टीके के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। चिकित्सा विज्ञान में उनका योगदान मानवता के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जाता है।
1: 1897 में प्रसिद्ध हिंदी और ब्रज भाषा के कवि और साहित्यकार धीरेन्द्र वर्मा का जन्म हुआ। उनके साहित्यिक कार्यों ने हिंदी भाषा को समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
0: 1953 में हिंदी सिनेमा की जानी मानी चरित्र अभिनेत्री प्रीति गांगुली का जन्म हुआ, जिन्होंने अपने अभिनय से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई।
1: और अब आखिर में बात उस आवाज की जिसने गजलों को घर घर तक पहुंचाया। जी हाँ, आज ही के दिन साल 1951 में जन्म हुआ मशहूर गजल गायक पंकज उधास का। अपनी मखमली आवाज, दर्द भरे अंदाज और यादगार गजलों के लिए पहचाने जाने वाले पंकज उधास ने संगीत प्रेमियों के दिलों में एक अलग ही मुकाम बनाया।
0: सही कहा आरती, और जैसे उनके जो कुछ बहुत ही फेमस गाने हैं, जैसे चिट्ठी आई है, नाकेजरे की धार और आहिस्ता, उनकी गजलें आज भी लोगों की जुबान पर है। तो आइए पंकज उधास साहब को याद करते हुए सुनते हैं उनका एक बेहद खूबसूरत सा नगमा।

0: और देखिए, इस खूबसूरत गीत के साथ अब धीरे धीरे वक्त आ पहुंचा है आपसे विदा लेने का। उम्मीद है कि जोहार रांची का आज का ये सफर आपके दिल को सुकून, चेहरे पर मुस्कान और मन में नई ऊर्जा देकर गया होगा।
1: बिल्कुल, और हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि हर सुबह आपके लिए कुछ नया, कुछ अच्छा और कुछ प्रेरणादायक लेकर आए।
0: जिंदगी की भाग दौड़ में कभी कभी कुछ पल खुद के लिए निकालना भी बहुत जरूरी होता है। सुबह की ताजी हवा, अपनों की मुस्कान, अच्छे विचार और मधुर संगीत, यही छोटी छोटी बातें जीवन को खूबसूरत बनाती हैं।
1: बिल्कुल सही कहा, हर सुबह अपने साथ एक नया अवसर लेकर आती है। अगर सोच सकारात्मक हो, इरादे मजबूत हो और मन में विश्वास हो तो हर दिन जिंदगी को बेहतर बना सकता है।
0: बिल्कुल अर्चना, और हर सुबह नई रोशनी लेकर आती है, हर दिन जिंदगी को सजाती है। हर सुबह नई रोशनी लेकर आती है, हर दिन जिंदगी को सजाती है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कान ही हर गम को भुलाती है।
1: और एक छोटी सी बात हमेशा याद रखिए, सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो हैं जो हमें नींद ही नहीं आने देते।
0: बिल्कुल, तो श्रोताओं, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने परिवार और अपनों का ख्याल रखिए। जिंदगी के हर छोटे छोटे पल को खुलकर जीते रहिए। तब तक के लिए रेडियो सखी आरती और
1: अर्चना को दीजिए अनुमति।
0: नमस्कार, जोहार, जोहार।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम स्वर यात्रा के 90 वर्ष। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर झारखंड के लोक कलाकार हरि मुंडा से अरविंद मित्रा की बातचीत आप सुनेंगे। अभी प्रस्तुति होगी संजीव कुमार लाल की।

0: तो भाई बहन मन, ये मधुर धुन रोले मन सुन लेनी, यह के सारंगी। और सारंगी आज देखबनी कि कोई भी मंच में बड़ा कम अब बिरले देखे के लिए मिलेला। धीरे धीरे एक ईसन वाद्यंत्र है जे आज हमारे मन कर बीच से विलुप्त होते जाते, कलाकार भी विलुप्त होते जाते हैं, बजवैया भी बहुत कम है। आकाशवाणी कर देश से निकल के बाहरी दुनिया तक कर पहुँच है 1936 ईस्वी में इकर स्थापना करल जा रहे। इकर जे उद्देश्य है सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, ये तीनों के उद्देश्य के लेके ये आगे बढ़ते जाते और 90 साल कर लंबा सफर पूरा कर चुके। तो आज ये दिन में, आज ये मौका में आज हमरे मन एक ठो कलाकार के बुलाए है। और ये कलाकार भी कोई आम कलाकार ना लगे, बड़ा कोई साधारण कलाकार ना लगे, बल्कि इनकर भी सफर अगर देखबनी आकाशवाणी रांची में 50 साल कर पूरा हुई चुकी है। तो इनकर कैसे जुड़ना होलक, कैसे इनकर आकाशवाणी से जुड़ाव होलक, इनकर अनुभव के आज हमरे मन जानब, इनकर लंबा सफर के आज हमरे मन जाने कर कोशिश करब। तो चलू हमरे मन भेंट करीला, अपन स्टूडियो में इनके हमरे मन बुला ही। तो भाई सबसे पहले तोर और बहुत बहुत स्वागत है, जोहार।
1: जोहार।
0: अपन परिचय दे दो, कहाँ का रहे वाला ही और नाम का होलक।
1: हमारा नाम होलक हरि मुंडा, गांव लेपसर, पंचायत तरंगा, पोस्ट ऑफिस चोरिया, प्रखंड चानू, जिला रांची के निवासी ही।
0: बहुत बढ़िया हरि मुंडा जी, जिसन के हम जानत ही रोड से बातचीत हमर होलक, तो रे बताली कि लगभग 50 साल पूरा हो गलक रोड आकाशवाणी रांची में।
1: हम 1977 सितंबर 27 तारीख से सारंगी वादन यहाँ आकाशवाणी में शुरू करी और आज बजा थी तो पूरा 50 साल हो।
0: बहुत बधाई रोड के, बहुत बधाई। और कितना गर्व कर बात है कि आकाशवाणी रांची जे की इकर मूल उद्देश्य है कि जे भी स्थानीय कलाकार हैं, जे लोक कलाकार हैं, लोक संगीत है, सिक्के संरक्षित करे करी कर अपन एक उद्देश्य है और उनके पूरा करते करते रोड मन संगे संगे चलते चलते आज रोड 50 साल पूरा हो गलक नहीं।
1: हाँ।
0: तो जाने खोजब कि जब पहला धाव रोड़े आकाशवाणी रांची आए रही, से बड़ा कर रोड कैसा अनुभव रहे, कैसे रोड़े एक से जुड़ ली?
1: उस समय चिट्ठी दे के बुलाल जात रहे, उकर बाकायदे 15 दिन के पहले चिट्ठी भेजल जात रहे, तब उकर फिर एक्सेप्टेंस माने स्वीकृति पत्र है कि फिर हमने जमा करते डाक द्वारा या फिर आए के, तब फिर बोला था कि भाई आर्टिस्ट आवी, कलाकार आवी, बजावे, ऐसा रहे।
0: तो कैसे आली, मतलब जुड़ाव कैसे हो लग रहा?
1: हाँ, जुड़ाव पहले हम सब शुरू कर रही सारंगी वादन तो सीख रही, तो 1977 में शहीद दिवस मनाल जात रहे 23 तारीख के, पत्र में देख ली समाचार पत्र में कि शहीद दिवस मनाल जाते, उस समय हमारे केकरू परिचय नहीं रहे। हम बजात तो रही गांव घर में लेकिन केकरू से कोई परिचय नहीं रहे। हम वहाँ चुपचाप आ गई और वहाँ कोई परिचय रहे, तब आखिरी तब हम बैठल रही हुआ, तब हुआ सब निकल गए रहे, हुआ का अध्यक्ष और संत कुमार पांडे और लाल रणविजय नाथ सादेव रहे। हमके पूछना बाबू कहाँ घर है रे, गीत उत गावी ले का? हम कही नहीं, हम तो गीत नहीं गावी ले, हल्का फुल्का गावी ले लेकिन सारंगी बजावी ले। तब तो दोनों बहुत प्रभावित हुए और रणविजय नाथ साहब कहना नाम पूछना है तो कहीं हमार नाम होलक हरि मुंडा, तो रणविजय नाथ साहब कि हम मुंडे परिवार से ही ऐसा बोलना। तो धोती पहन ले रहे और संत कुमार पांडे भी धोती पहन ले रहे और वहाँ का अध्यक्ष भी, तब संत कुमार पांडे भी प्रभावित होना, पांडे जी हमके अपन डरा ले गए। रात के बहुत बढ़िया विचार वह दिन बनल कि हमार घर दू गो लेडी मन है गीत गवैया और हम गीत भी जोड़ी ला और गावी ला भी, तो रावरे सारंगी बजावी ला, तो एक ठो मंदिरचा खोजू और हमने आकाशवाणी में ऑडिशन देव, स्वर परीक्षा देव कही के गली बहुत बेस। हम तो वह चाहते रहे कि कैसे आकाशवाणी पहुँचू।
0: हाँ।
1: तो मार्ग अपने स्वतः मिल गल। तो वहाँ हमने जब आए गली आकाशवाणी वह साल माने तुरंत दरखास्त पड़ गल और वह साल 77 में ही जुलाई में हकालना आकाशवाणी के मैदान जो है अखन दक्षिण साइड ने, वहाँ सब तारों तरफ कर कलाकार मान आ रहे हैं, बहुत कुछ रहे, तो सब कोई बजात ने अपन अपने दल में, तो हमने भी बजात रही। तो उसी क्रम में सुगिया बहन और तत्कालीन बांसुरी वादक दे रहे हैं जगदीश प्रसाद ठाकुर, जेके रोजनी लकड़ा नाम है, तो उ रहे, वो दोनों घूम घूम के देखत रहे हैं। तो वो मैंने कुछ ही दूरी में हमके जाके देखने, तो वो मन आपस में बोलना है कि बहुत अच्छा लड़का बजाते हैं सारंगी लेकिन गायक पक्ष कमजोर है, तो इनके अलग से मौका देवल जाए। तो हमके सुगिया बहन हकालें नागपुरिये में, कहे बाबू सुनू तो हम कहली का कही, गली उठ के तो रावरे एक छो दरखास्त लिखू, तो हम कहली दरखास्त का दरखास्त लिखा तो नहीं हेडिंग बता लें कि आकाशवाणी केंद्र निदेशक के कहें ये लिखे का और के एक तो अलग से बजाए कोई सारंगी कहें ग्रुप के साथ तो बजाते ही लेकिन सिर्फ राउ के अकेले धुन बजाए के तो दल तो फेल कर गलक वह जो हम अकेले जो बजा ली सेकरे में पास कर ली और एक्शन तक आकाशवाणी में आज 50 साल पूरा दिली।
0: बहुत बधाई फिर से बहुत बहुत बहुत बधाई। तो से बेरा उम्र और कितना होत रहे
1: से अखन 27 लगभग रहे।
0: अच्छा तो रुकी आई थे से बेरा कौन धुन के रोरे बजाए
1: रही। हाँ, आई तो है
0: तनी सुनाब तो

0: ओहरे कचकच बड़ा बढ़िया बहुत बेस लागलक, लेकिन जाने खोजब कि कौन धुन रहे, कौन राग रहे, कौन।
1: ई मर्दाने झूमर में है, उकर बोल है

0: खेलबैया तहने की धीरे चल गोया हमही की नारी खेलैया।
1: बहुत बेस बहुत बेस बहुत बढ़िया गीत। आज 50 साल पूरा हो गल की गीत कर नहीं ते केकर लिखल रहे रो खुद से लिखल है कि
0: केकरू लिखल नहीं लागे बहुत पुराना गीत है के कौन कवि लिखे का करे कर
1: माने लोक गीत है
0: लोक गीत है के
1: सुनते सुनाते आओ यह तो है। और आकाशवाणी का यह उद्देश्य भी है और कि जितना भी कलाकार हैं जितना भी छोट बड़ जितना भी लोकल हेराल जितना कलाकार हैं सबके एक ठीना जुमा करे कर इकर उद्देश्य है आकाशवाणी का। और इस सफर में आगे बढ़ते हैं जाते जितना भी आज कर दौर में भी जितना कलाकार मन है उमन के भी संरक्षित करे कर कोशिश आकाशवाणी कर है। और जैसा कि हमारे मन सबको जानी ला हरि मुंडा जी कि लगभग 99% जो आबादी है हुआ तक आकाशवाणी कर पहुँच है। चाहे भी कोई भी ऐसा मौका हो चाहे आपदा कर मौका हो चाहे बहुत खुशी कर मौका हो सब ठीना आकाशवाणी कर पहुँच है। अब देखब कि देखो कहे ना नहीं कि समय कर मांग है और जब दुनिया बदलेला तो अपने आप के भी बदले कर आदमी के जरूरत पड़ेला। अगर खुद के अगर आदमी नहीं बदली नहीं तो आदमी हेराई जाए तो वह दौर में आकाशवाणी भी चलते जाते। पहले कर दौर रहे रोड़ेमन जी देख रही हम तो जे दौर कर उड़े बात कर रहे थे से दौर में तो हम रहबो नहीं करी तो से बेरा कर दौर और आइज कर दौर काफ़ी कुछ बदल चुकी है। तो पहले कर जमाना में जब रूढ़े आए रही से बेरा आकाशवाणी में का चीज़ रहे तनी हम जाने खोजब हमरे मन कर सुनबिया भाई बहन मन भी जानब रोन कर माध्यम से जानब कि आकाशवाणी में पहले कैसन का रहे।
0: से समय आकाशवाणी एगो साधारण अथी में रहे जहाँ अखन अथी होल वहाँ ओ घर में रही सब घर नहीं बन रही तरह कर सुविधा नहीं रहे और स्कूल द्वारा उनकर अथी होत रहे रिकॉर्डिंग
1: फीता वाला नहीं
0: फीता वाला हाँ वह रहे।
1: अच्छा तो उकर में और क्या क्या साधन बन रहे ईसन सारा माइक उक सब व्यवस्था रहे
0: रहे माइक उक रहे सुविधा
1: और वाद्य यंत्र मन
0: वाद्य यंत्र तो उस समय सारंगी बांसुरी कही अलाव रहे मतलब साफ लिखल रहत रहे आकाशवाणी कर चिट्ठी में कि सारंगी बांसुरी छोड़ के अन्य सात्र माने साज का आवश्यकता नहीं है उसको अलाउ नहीं करल जाए ऐसा रहे। हारमोनियम नहीं बजा सकत रही बेंजो नहीं बजा यहाँ का ट्रेडिशनल चीज मानल जात रहे सारंगी और बांसुरी के ही टोहिला के फिर मानल जात रहे
1: टोहिला भी तो अब लगभग विलुप्त हो चुकी है। तो हिया से मान लो कोई कलाकार थी ना अगर वाद्य यंत्र न खे तो देवल भी जात रहे
0: यहाँ रहे एक तो सारंगी दिलीप नाथ महलिकर लेकिन भरसक कहते रहे कि अपना साज लेते आओ तो वो भी क्रम अलग हमारे साथ एक बार ऐसा कोई अच्छा कलाकार आ रहे हैं तो उस समय दिलीप नाथ महली जो यहाँ कर अस्थाई कलाकार रहे वो नहीं रहे तो हमके प्रमोद कुमार राय जो संतु भाई के नाम से प्रचलित रहे वो कहना है हरी जी से रावरे आए ही तो ये कलाकार बढ़िया है और अच्छा के होवे के चाही तो क्या रावरे महली के सारंगी बजाय पार भाई हम कहली कि उके तो थुई के देखे हुई तो उके हम देख ली थोड़ा सा 2 मिनट तो कहली हाँ बाजी तो उस सारंगी के हम बजाय रही
1: तो से बेरा कौन धुन के निकसाय रही
0: उ धुन के थम के आज नहीं आवत से खन तो जे गीत गाए रहे सेकरे साथ संगत कर रही हम
1: और उकर बाद लगातार और सफर आगे बढ़ते
0: हाँ बढ़ते गला उकर बाद हमार परिचय सबसे समझू कि जखन यहाँ रांची में आकाशवाणी नहीं रहे सेखन पटना से होत रहे कार्यक्रम और उ पीरियड में पांडे वीरेंद्र नाथ जात रहे पटना गीत गावे उनकर साथ भी गावे के मौका मिललक हमके कई एक बार
1: तो यहाँ से रोड़े जात रही पटना
0: नहीं हम पटना नहीं गली वो जात रहे
1: अच्छा, अच्छा।
0: लेकिन उनकर साथ भी बैठ के बजाय के मौका मिललक और वो कहत रहे कि हरी बाबू से सारंगी के हमारे घर में राखू और समय समय पर आऊ कह के लेकिन कल हम उलझल रही वैसा आवे के हमके संभव न खे कह
1: तो जब आकाशवाणी रांची कर स्थापना होलक तो कितना रोड़े मन के फायदा इकर होलक जितना भी कलाकार मन ही रोड़े मन
0: सबके फायदा होलक जैसन सखन रहे नहीं खोज खोज के अथी करल जात रहे जब होत रहे तो अच्छा और उस समय रहे कि मतलब वो पूछे वाला भी और गायक वाला भी सबके अच्छा जानकारी रहत रहे ये नहीं कि मैंने ये सब राग को कब गाया जाता है ऐसा ऐसा पूछल जात रहे अखन तो कुछ जानकारी नखे तो गीत डाले कोई समय उस समय मौसम संबंधी गीत होत रहे और गवैया के भी पूछत रहे कि गायन का समय कब है, ऐसा पूछत रहे, बहुत आदमी फेल कर जाते हैं उत्तर में।
1: तो मतलब आकाशवाणी जो है हमरे कर जितना भी संस्कृति है, गीत संगीत है, लोक कला है, सबके संरक्षित करके राखे में एकदम मुख्य भूमिका अपन निभाएल नहीं।
0: हाँ।
1: अच्छा एक चीज बताओ हरिमुंडा जी, जब पहल धाव रो रही बाजा के बजाय रही, से बरा जब रो घर घूर के गेली, अपन गाँव घूर के गेली, आदमी मन कर कैसन रिएक्शन रहे, का मन कर कहना रहे?
0: मतलब गाँव घर में सुन ले की हरी भाई जाते सारंगी बजाय रेडियो, तो कई बजे बाजी से लाइव होते रहे, रिकॉर्डिंग नहीं होता, लाइव होते रहे प्रोग्राम, तो सब रेडियो खोल खोल के सुनत रहे कि बहुत बजा बाजल, बहुत अच्छा बाजल,
1: बहुत
0: हाँ ई गीत के बजा ले, ई गीत के बजा ले, गाँव में कतरे का धुन रहे थी, ई राकर धुन रहे, ऐसा कह के सब कोई बहुत। और उस समय से हमार माने वो आस पास अभियो माने हुजंकर दसो गाँव हमके बहुत अच्छा था सब जाने में।
1: बढ़िया बढ़िया। तो देखो पहले कर तो दौर रहे कि वो ट्रांजिस्टर रहे, रेडियो खोलत रहे, ऊपर में मीटर के मिलात रहे, तब जाके रेडियो बाजत रहे। लेकिन अब तो काफी कुछ तकनीक बदल जाए है, अब तो मोबाइल के खोलो, ऐप के निकालो और चिपो, ओकर बादे गाना शुरू भे जाए, रेडियो शुरू भे जाए, कितना अंतर देखत ही रोरे?
0: देखो दुनिया परिवर्तन का तो अथी है, परिवर्तन नहीं हुई तो विकासो नहीं हुई।
1: तो मतलब अब मोबाइल का जमाना आ जाए है, तो अब तो बड़ा सुलभ, पहले से ज्यादा अब सुलभ हो जाए है आदमी ठी ना।
0: हाँ अखन सब कहत है कि भाई यूट्यूब में तो रहो, पूछा ना था हमके,
1: आकाशवाणी का ऐप भी है, उगर माध्यम से भी आदमी मन सुन सके ना।
0: कई बार कई आदमी कहने कि भाई तोर वहाँ यूट्यूब में हो, हम कहीं तो सर्च करके देख, तो सुने ना यूट्यूब में भी बाजत थे से ले सुने ना।
1: तो मतलब नया दौर में भी कलाकार मन के आकाशवाणी बचाए कर आगे कोशिश में लागल है। अच्छा एक चीज बताओ, रोज ये यंत्र हम देखा थी जेके सारंगी का है ना, काफी पुराना बुझाते हैं हमके।
0: नहीं ज्यादा पुराना ना के, हम समझो कि बहुत सारंगी बना ली, बहुत कोई बने कहना कि हमहू सीख, तो हम फ्री में बहुत कोई सारंगी बनाए बनाए के दे ली, लेकिन कोई सीखले नहीं। और संरक्षित के लिए हमके मन बंधु परिषद जे बरियात्री रोड में है, वहाँ मांग रहे हैं सारंगी दूठो, जेकर में हमके ऊपर पारिश्रमिक दे रहे हैं मैंने 10,000 रुपया। और फिर 22-23 में खेल गांव में फिर एक ठो सारंगी बनाए के दिल्ली। और इकर बाद 23 के रामदयाल मुंडा संग्रहालय जो मुराबादी है, वहाँ हमार देख रेख में 5 ठो सारंगी बनाए के देवल है,
1: अपन बनाल,
0: अपन बनाल, और वहाँ थी एक ठो अपने बनाल के दिल्ली, और वहाँ 5 दिन मान 8 दिन का वर्कशॉप रहे, जेकर में मिस्त्री मन के हम बनवा ली, हमार देख रेख में बन लगे।
1: रोरे जे एखन धरले ही से कतना दिन कर है?
0: इकर लगभग 10 साल हो गए।
1: कैसे के का तरी बना ली, बड़ा एकदम इकर में तो देखा थी एक से एक यंत्र लागल है।
0: असल में ना शुरू होलक हमार खेत जगह चना खेत रहे ना, स्कूल पीरियड में हमके उस समय चना के मैना चिड़िया मन खात रहे, तो माए बाप कहने कि स्कूल जात के पहले जा खेत दे रहे, वह पीरियड में मल्हार जाती मन कर वह जगह डेरा रहे एक तो कटहर गज के नीचे, वह मन के देख ली सारंगी बजाए कर हम प्रभावित हो ली। पहले तू मन छुए नहीं देना हमके, लेकिन बाद में 8 दिन रह ली तो छुए देना है, तो देखनी कैसे ऐसे तो कैसे बाजेलू मन से हम जानकारी ले ली, तो कहना भाई कर में तो इस है ई है तार फार, तू को ज्यादा जंत्र तो नखे तो लकड़ी कर है, खोल बना ले चमड़ा से चारल है, घोड़ा कर बाल है तार है, तो सब देख ली, तो घोड़ा का बाल कहाँ उपलब्ध हुए, तो उस समय तो केकरू से परिचय नहीं, तो वो मन कह रहे हैं कि मोरेबा का रस्सी से भी बाजेल, तो हम मोरेबा का रस्सी से बजात रहे, उस समय घोड़ा का बाल नहीं मिल रहे। बाद में जब परिचय हो रहे तो गांव घर में अगल बगल में साहु महाजन मने घोड़ा लाना था, तू मन से मांग ली तो स्वतः मन दे देना, बहुत खुश हो रहा है कि हमार गांव घर का एक कलाकार घोड़ा बाल मांगते तो का है, एक मन खुशी खुशी दे।
1: तो ये कौन लकड़ी कर बनल है?
0: ये एक ठो लकड़ी है जठरोपा,
1: अपन से बना ली सारंगी है। आज तो देखो मंच में हमके बड़ा कम देखे के लिए भेटायला हरिमुंडा जी, तो कैसे तो धीरे धीरे तो विलुप्त होते जाते?
0: नहीं विलुप्त होने का कारण इकर में अब के कहल जाए,
1: आकाशवाणी तो अपन देखो पूरा काम करत है, और जितना भी कलाकार है रोड मन देखो आई जरूर 50 साल पूरा हो गलक, तो 50 साल कर मौका में आई जरूर मन के रोड के हमरे मन हका ही बोला ही सब सम्मान रोड के फिर से हमरे मन सुनत थी, और तब आकाशवाणी तो अपन पूरा उद्देश्य के पूरा करते जाते हरिमुंडा जी। लेकिन हमके लगे कि जो भी कलाकार हैं वो मन की अगला पीढ़ी तैयार करे कर दरकार है, जैसन कि रोरे ही अगर रोरे अपन कला के अगर दोसर के अगर नहीं बाँटब तो रोठिना सिराई जाए, लेकिन अगला के बाटब तब तो अगला जानी, तो हमके लागे ला कि कलाकार मन कर भी बड़ा भूमिका हो ला कि अगला पीढ़ी तैयार करे कर।
0: नहीं नहीं इकले तो जब तक आदमी के धैर्य बांध के जोगी नहीं बनाल जाए कहने तो कहावत है देहात में तो उस तरह से नहीं हुई उके तो खुद कही कि भाई हम सीखब तब नहीं कहे कि वहाँ अखन आब राखल है रामदयाल मुंडा का अथी में पाँच ठो हुआ दो ठो एक ठो हुआ और बाद हमके अचानक रामदयाल मुंडा कर बेटा फोन करने तो कि नहीं हमके एक ठो सारंगी बनाए दे तो उनके एक ठो सारंगी बनाए दे ली
1: तो बनाए नया पीढ़ी मतलब सीखे खोजे
0: लेते हैं। उकर बाद बेड़ो कॉलेज कर एक प्रोफेसर हमके कह रहे हैं तो उकर बाद वो मटिया दे रहे हैं
1: तो फिर हम रोड आकाशवाणी कर रोड सफर है सेकर बटे हम घूरे खोजब हरिमुंडा जी जब रोरे पहिल धाव वाली उकर बादे रोके लगातार हिया कार्यक्रम मिलते चल गया तो रोरे हिया फिर जे ऑडिशन हुए रहे बी हाई रोरे भी हो
0: हाँ, आगे तो बीर ग्रेड रही उकर बाद फिर बी हाई ग्रेड कर अथी होलक उकर बाद सब भाषा भाषी में संगत करे कर मौका मिललक ने उरा मुंडा हो खड़िया संताली पचपनगनिया कुरमाली खोरठा सभी भाषा में यहाँ के
1: अच्छा सब भाषा में रोड़े बजाए लगी हाँ
0: जितना क्षेत्रीय भाषा सब में संगत कर ली है।
1: देखो हमरे मन कर नागपुरी कर बात अगर हम करब नी दिकर हर मौसम कर हर पहर कर एक ठो गीत अपन होएला हाँ। और सब कर अलग धुन भी होएला हाँ। एखन कर समय में जे धुन बजाल जाएला से के रोड़े तनिसन बजाए के सुनाब तो
0: एखन जैसे बैसाख आ गेलक ने तो उदासी राग गामे ना हमनी कर क्षेत्र में उकर यह स्वर है

0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, उदासी राग हो,
1: हाँ
0: नहीं
1: उदासी राग
0: बहुत
1: है।
0: बढ़िया। तो हरि मुंडा जी, रोर से हम जाने खोजब कि जब आकाशवाणी से रोरे जुड़ ली, तो हियाँ रोर कुछ तो अनुभव ऐसा हो भी, कुछ ऐसा सुखद अनुभव जे कि हमरे मन रोर से जाने खोजब, ऐसा कोनो बात है तो बताओ, तो अपन जे पुराना अनुभव है से कि हम जाने खोजब, कुछ सुखद अनुभव जे रोन के हो है।
1: जब हियाँ से जुड़ ली तो बहुत आदमी एक ठो भावना रहे अगल बगल में, एक ठो कि नहीं माने बिरहोर मलार सारंगी बजाएन, ऐसा भावना रहे। जब सुनलें कि हरि मुंडा, तो सब आदमी भावसक रह गए, खेरे मुंडा भी बजा ले सारंगी। और यह क्रम में बता थी, जब बिरसा चौक में बिरसा जयंती मनाल जात रहे, तो उस समय हम भी रही, तो गीत मन बहुत गानों कर बाद हमार नाम लेने की मांडर से आए हैं हरि मुंडा, उ सारंगी बजाएंगे। तो एक मुंडा लड़का वही जंकर रहे, जब मुंडा सुनलक तो उछल पड़लक, और हमार आसरा देखा थे मन से घायल कि कखन उतरी कर भेंट करब, तो ऐसा मैंने से खन जाति कर भी सोचते रहे कि मलारे भर बजाए न सारंगी, ऐसा भावना रहे।
0: अच्छा, हियाँ और कितना कलाकार मन से रोर संगत करे कर मौका लगलग?
1: तो बताबे कर ली कि पटना जात रहे, उनकर से होलक शिबू भाई जे रहे यहाँ कर जे दुर्गा पांडे नाथ राय, उनकर से प्रफुल्ल कुमार राय से, बिंदेश्वरी मिश्र से, नईमुद्दीन मिर्दहा से, इतना पुराना कलाकार। अब खोरठा में शिवनाथ प्रमाणिक, ए के राय, शिवनंदन पांडे गरीब, उराव भाषा से जत्रु उराव, रायसन उराव, मैंने मुंडारियो भाषा से रामदयाल मुंडा से चार बार आकाशवाणी में अति कर ली बजा ली, तो और कतना कतना से उन्होंने कह के न कह सबकर से बजा ली।
0: और कभी दिल्ली भी जाए कर मौका लगे?
1: हाँ दिल्ली भी गली, हम सारंगी के चूहा काट देते ना चमड़ा के, तो अथी ठोक दे रही टीन के, धुआं के जो बिलास सालवे रहे, कहल कि नहीं नहीं नहीं आपका आयरन नहीं चलेगा, नो नो नो कह के कहा था। तो फिर कहने कि सर तो हमको दीजिए दो घंटा का समय, इसको हम तुरंत चेंज करते हैं। कहले नहीं अबर हम आपको देते हैं। फिर दूसरा साल उदयपुर हकाए रहे, उसमें फिर कहने कि आपका सारंगी चेंज हुआ कि नहीं, तो हम कहली हाँ हो गया, फिर बजाए रही।
0: तो दिल्ली आकाशवाणी कर बात।

0: मजा रही। ओकर बाद आर्मी डे बनावे लहका रहे पटना में, पटना में दो बार आकाशवाणी में सारंगी बजाई और आर्मी डे गेली, फिर सोनपुर मेला गेली, आकाशवाणी भेज रहे।
1: पहचान दिवाक में आकाशवाणी कर कितना बड़का भूमिका है, कितना का मानी लरूरे?
0: हम तो बिल्कुल साधारण है, गरीब परिवार का कहूँ, किसान परिवार, खर गरीब तो नहीं कह सका थी, मैंने जी एक खाक पर रह जमी लेकिन जो पहचान आकाशवाणी देलक, वो पहचान उनके बुझाएल कि विविध भारती से भी बाजलक गीत बहुत जगह कला के चलते बोली इंडिया कर हमके बुझाएल कि कोई ऐसा राज्य नहीं है जैसे 10 से 15 व्यक्ति हरिमुंडा के नहीं जाने, भले गांव घर कर नहीं जानते लेकिन जाने हरिमुंडा की है सारंगी वादक से। और खास करके सारंगी वादक के बहुत आदमी चॉइस से देखे ना, ऐसे देखन बहुत तरह का साज निकल है लेकिन इके नहीं कि यही ट्रेडिशनल चीज है। और उदयपुर में जब बुलाए रहे विलास सालवे तो कहने कि सारंगी आगे चलेगा, उस दिन खाली धुन रहे बाजे, तो कहली कि कैसे हुई होगा कह के, क्या कि इसमें बहुत सा तार है, इसमें अगर हमारा धुन से इसको कहेंगे तो नहीं जुड़ सकता, इसलिए इसी का धुन में हम लोग मिलाते हैं, उसके बाद हम आगे आगे चलेंगे। तो हमके लीड करे पैर रहे और हम बहुत अथी करे वहाँ, और माने रेत के बजाय वाला और भी रहे हैं, एक ठो रहे और आसाम बटे कर, एक ठो उड़ीसा कर रहे, लेकिन उमन में आधुनिकता रहे। और ये सारंगी ने कहा कि यही ट्रेडिशनल चीज है,
1: मतलब आकाशवाणी रोके काफी पहचान दे लग, गोटा देश दुनिया में रोके पहचान दिवाई में कर बहुत बड़ भूमिका
0: रहा।
1: हरिमुंडा जी जैसन की हमरे मन सबको ही जानी ला कि वंदे मातरम कर 150 साल पूरा हुई चुकी है, तो ई मौका में हमरे मन हर कोई वंदे मातरम के सत सम्मान हमरे गावत भी, तो हम चाहब कि रोरे भी तनिसन सारंगी में इकर धुन के निकसाऊ।

0: बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगलक हरि मुंडा जी। रोरे आकाशवाणी से जुड़ली और लगातार सेवा रोरे देते आवत थी। आकाशवाणी कर भी एक उद्देश्य है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। एकर उद्देश्य भी है कि सूचना शिक्षा और मनोरंजन जितना भी कलाकार हैं सबके संरक्षित करे कर एक ठो प्रयास में आकाशवाणी लगातार 90 साल से जुटल है और आगे भी कर यात्रा लगातार जारी रही। रोरे मन जितना भी कलाकार है इमन कर भी आकाशवाणी कर बहुत बड़ भूमिका है कि रोर मन के संरक्षित करके राखलक। आगे जैसन के रोरे बताली कि आकाशवाणी से जुड़ ली तो रुके गोटा देश कर आदमी मन रुके जान लें सारंगी कर माध्यम से। तो ऐसा ऐसा जितना भी कलाकार हैं सिक्के आकाशवाणी उमन के बचाए के राखे में अपन बहुत बड़ भूमिका अदा करते आवत है। तो हरि मुंडा जी जाते जाते रोर से हम जाने खोजब कि जे भी नवा कलाकार हैं जे छोट छोट छोट छुआ मन है जे गीत संगीत और ऐसा वाद्य यंत्र से जुड़ल हैं उमन के रोड़े का संदेश देवे खोजिला और आकाशवाणी कर जे श्रोता मन है उमन के रोड़े का संदेश देवे खोजिला।
1: हम चाहब कि इके सरकार से चाहे जैसे भी हो गवर्नमेंट देखन तो बहुत अखरा और झखरा सब बना थे लेकिन इके संरक्षित करे के लिए इके आगे बढ़ाए के लिए कलाकार जे सीखत है सीखे मान दे देवे के पड़ी। बजात सके तो नहीं जे सीखी सीखे देवे को भी मान दे सिखात सके मिले चाहे नहीं मिले लेकिन जे सीखे चाहते उके मान दे गवर्नमेंट दे तभी के सीख सकत है हमके बुझाएल हमारे तो यही नजर आवेल।
0: और आधुनिकता जे एखन धीरे धीरे हमारे मन कर गीत संगीत में आते जाते उके का देखी ल रूरे कैसे देखी ल।
1: देखो वो आधुनिकता समय के अनुसार वो ठीक है लेकिन आधुनिकता कर कलाकार मन से भी हम आग्रह करब वो तो इलेक्ट्रिक से बाजत है वो मन के वॉल्यूम कम करके सारंगी के भी संगे बजाय चाहिए या बांसुरी के भी तो सब बाजी तोहिला भी जहिया जब हो रहे दूरदर्शन के उद्घाटन श्यामली हॉल में उस दिन भी हमने जाए रही और जगदीश प्रसाद ठाकुर बजात रहे बांसुरी हम सारंगी तोहिला में एक तो हनीफ अंसारी रहे सबकर अच्छा आवाज आ रहे तो खास करके ऑपरेटर मन भी गलती है और जो आधुनिक साज जो बजात है ना वो मने खाली कर सोचे न कि हमारे आवाज जाए ऊ के सोचे हुए अगर वॉल्यूम ठीक करके अगर सारंगी के साथ चले तो बाजी
0: एकदम सही बात है भाई कि हमरे मन के अपन जे भी पारंपरिक चीज है से के हमरे मन के

0: बचाए के रखना है, चाहे गीत हो चाहे वाद्य यंत्र हो, आई जे के बचाए कर बहुत दरकार है। आकाशवाणी लगातार इकर में जुटल है, अपन जे भी कलाकार हैं, जे भी वाद्य यंत्र हैं, जे प्राचीन सभ्यता संस्कृति है, से कि धीरे धीरे आगे बढ़ाए में आकाशवाणी बड़ा मुग्ध योगदान है। तो हरि मुंडा जी, रोरे हमरे मनकर स्टूडियो में आली, अपन 50 साल कर जी अनुभव है आकाशवाणी से, जैसे कैसे रोरे जुड़ ली और इकर माध्यम से रोके कैसे कैसे पहचान मिलक, सारा सफर के रोरे बड़ा बढ़िया से बता ली। तो आशा करीला रो इसने लगातार सफर आगे बढ़ते जाए, आकाशवाणी से रोरे इसने जुड़ले रहो। तो रोरे अपन समय के दिली आकाशवाणी से जुड़ ली, इकर ले बहुत बहुत धन्यवाद, लगे तब जोहार।
1: जोहार।

0: बहुत बहुत धन्यवाद हरिमुंडा जी, लय तब
1: जोहार जोहार।
2: अभी आप सुन रहे थे स्वर यात्रा के 90 वर्ष, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर झारखंड के लोक कलाकार हरि मुंडा से बातचीत कर रहे थे अरविंद मित्रा, और प्रस्तुति थी संजीव कुमार लाल की।

0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। अब से थोड़ी देर में सुनेंगे कार्यक्रम आपकी पसंद।
1: हमारे साथ हैं डॉक्टर उमेश कुमार ओझा धनबाद से।
2: नमस्कार, मैं डॉक्टर उमेश कुमार ओझा, फॉर्मर प्रोफेसर एंड एचओडी डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन SNMCS धनबाद।
1: मेरा पहला सवाल आपसे है, क्या हाइपरटेंशन सच में हार्ट अटैक का कारण बन सकता है?
2: जी हाँ, क्योंकि ब्लड प्रेशर, एक कल्पना कीजिए कि आपके घर में पाइप, पानी की पाइपलाइन है और उसमें अचानक दबाव बढ़ जाए तो क्या होगा, या तो पाइप फट जाएगी या लीक करेगा। इसी प्रकार के शरीर में जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो शरीर की रक्त नलिकाएं, जिनको कि आम भाषा में नस बोलते हैं, उन पर दबाव बढ़ता रहता है, उससे रक्त नलिकाओं की अंदरूनी परत को नुकसान पहुंचाता है और नुकसान की वजह से वहां पर जो फैट, कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है, जिसकी वजह से हृदय को खून पहुंचने में कठिनाई होती है और मरीज को कभी कभी सांस फूलना, छाती में दर्द होना, ये शिकायतें शुरू हो जाती है। ये एक वार्निंग है, अगर इस अवस्था में अगर मरीज ने डॉक्टर का संपर्क नहीं किया तो आगे जाकर के ये प्राण घातक भी हो सकता है, जो कि हार्ट डिजीज या हार्ट अटैक जिसको बोलते हैं, वो भी पेशेंट को हो सकता है।
1: अ पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव फॉर हेल्दी इंडिया।
3: 10 लाख की लॉटरी मुझे,
4: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
5: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: कार्यक्रम आपकी पसंद में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके साथ है रेडियो सखी अर्चना। तो आइए सबसे पहला पत्र पढ़ते हैं। बाबा बैजनाथ धाम से मनोज केसरी, पूजा केसरी, महादेव केसरी, श्रद्धानंद केसरी, रोशनी केसरी, राजा बाजार बिहिया से सुरेश केसरी, पूनम केसरी, प्रतीक केसरी, थाना रोड बक्सर से ओम नंद केसरी, धनानंद केसरी, विनोद केसरी, बड़ा बाम्बो सुपाई से साई से देवेंद्र तांती, राकेश तांती, कुमारी निशा, प्रकाश तांती, ललित प्रधान और देवेन, चक्रधरपुर ग्राम गेलिया लोहर से कोमल बेसरा, बसंती, अनु बनमाली, सिद्ध कुमारी और पूजा। आप सब ने सुनना चाहा है फिल्म यादों की बारात का ये गीत, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में। गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार है RD बर्मन। तो आइए आपकी पसंद का ये गीत सुनवाते हैं आपको।

0: हाइपरटेंशन डे के अवसर पर हमारे साथ हैं डॉक्टर उमेश कुमार ओझा धनबाद से। डॉक्टर, ज्यादा नमक सच में दिल के लिए खराब होता है?
1: यह भी एक वैज्ञानिक रूप से स्थापित तथ्य है कि ज्यादा नमक खाने से होता क्या है कि शरीर में पानी रुकने रहता है, तो शरीर में जो ब्लड वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, उसके कारण से ब्लड प्रेशर भी बढ़ने लगता है। और नमक की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ गया, उसके वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से स्ट्रोक यानी कि लकवा, किडनी यानी कि क्रॉनिक किडनी डिजीज या आंखों पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। कभी कभी आंख एकदम दिखना बंद हो जाता है। तो मुख्य रूप से ब्लड प्रेशर जो कि ज्यादा नमक खाने की वजह से हो सकता है, उस पर दुष्प्रभाव हार्ट पर, ब्रेन पर, किडनीज पर और आंखों पर पड़ता है और आदमी को हाइपरटेंशन की वजह से कॉम्प्लिकेशन होने लगते हैं।
0: अ पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव फॉर हेल्दी इंडिया।
2: अगले गाने की फरमाइश की है आदर्श नगर कांके रोड रांची से सूरज कुमार, वासुरंजन, नम्रता, प्रवीण, प्रियंका, श्वेता, विनीता, सोनी, सोनिया, रेखा, अनुमेदा, दीपक, रोशन, सोनू, शुभम, तान्या, सत्यम, रंजीत, अमन, अंशु, सौरभ, मयंक, आशुतोष, कविता, मीना, देवी, नैना, मोहित और अपूर्वा। ब्रह्मपुरा मुजफ्फरपुर बिहार से प्रभात ठाकुर, अरुणिमा आलोक, दिव्या, दीक्षा, श्रुति, राकेश, नन्हे, श्रेया, हेमलता, रमन, बेबी, देव, तेजो, मनीष, माधव, सुमन, कृति, अभिषेक, रंजन, अनुराग, चंदन, मनोज, सीमा, हनी, ऋषभ, बबलू, डब्लू और इनके परिवार के समस्त सदस्य। आप सब ने सुनना चाहा है फिल्म सरस्वती चंद का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीतकार हैं इंदीवर और संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी।

0: वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के अवसर पर हमारे साथ हैं डॉक्टर उमेश कुमार ओझा धनबाद से। क्या बीपी डायरेक्टली लिंक्ड है हार्ट डिजीज से?
1: जी हाँ, हाई बीपी से होता क्या है कि एक हृदय एक निश्चित दबाव में काम करता है, मगर ब्लड प्रेशर होने से रक्त नलिकाओं में दबाव हो जाता है। इससे होता क्या है कि हार्ट को या दिल को उस दबाव के अगेंस्ट में खून को पूरे शरीर में पहुंचाने के लिए पंप करना पड़ता है। क्या होता है कि हार्ट की जो मसल्स हैं या तो मोटी हो जाती हैं या और वीक हो जाती हैं, और उसकी वजह से हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर इत्यादि बीमारियां पेशेंट को हो सकती हैं।
0: अ पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव फॉर हेल्दी इंडिया।
2: अगले गाने को सुनना चाहा है गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित व मोहित। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मिका, बलविंदर वीरक, जैतक वीरक, मिका वीरक। महादेव घाट अमलेश्वर से डुमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर। छत्तीसगढ़ भाटापारा दंतेरेगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। दंतेरेगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और चरडोंगरी पिपरिया से दुर्गा राम साहू। आप सब ने सुनना चाहा है फिल्म कारवा का ये गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार है आर डी बर्मन।

0: नौकरी लग गई।
1: अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
0: हाँ दी, नया मोबाइल।
1: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
0: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
1: पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो।
0: पर दी,
1: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
0: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
1: अच्छा।
2: RBI कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
5: अल्टीमेट गोल एग्जाम के नंबर नहीं हो सकता है, अल्टीमेट गोल संपूर्ण जीवन के विकास का होना चाहिए।
4: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
6: अगले गाने की फरमाइश की है मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत ग्वानकर, श्रीमती सरिता ग्वानकर, प्रिंस एकांश ग्वानकर, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत ग्वानकर, प्रणीता ग्वानकर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से शैलेश ग्वानकर, श्रीमती वैशाली ग्वानकर, श्वेता सुमित ग्वानकर, कुमारी ध्वनि ग्वानकर, कोटा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिया निवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, बक्सर बिहार से सरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, पुराना तालाब डुमर राव से वलीउल्लाह अंसारी, असमा नाज अंसारी, चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर अदीबा, सारिमपुर बक्सर से राजेश डी अंसारी, आसमा खातून अंसारी और गुलफराज भागलपुरी। आप सब ने सुनना चाहा है फिल्म मुकद्दर का सिकंदर का ये गीत, किशोर कुमार की आवाज़ में। गीतकार हैं अनजान और संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे महिलाओं के लिए खास कार्यक्रम गृहलक्ष्मी।

0: जिंदगी एक प्यारा सफर है, हर पल में एक नया असर है। हंसते रहे और आगे बढ़ते रहे, यही खुशियों का असली घर है। नमस्कार सखियों, मैं हूँ आपकी रेडियो सखी खुशबू, आपके अपने कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में। और सखियों, इस सफर में मेरे साथ आपकी एक और रेडियो सखी है और वो है राखी। राखी, कैसी हैं आप?
1: बस अच्छी हूँ और बहनों को कहती हूँ नमस्कार। आपकी रेडियो सखी राखी हाजिर है बहनों आपका कार्यक्रम लेके। और तुम कैसी हो?
0: बिल्कुल अच्छी हूँ राखी। हाँ। और यही प्रार्थना है कि सभी सखियाँ भी अच्छी होंगी, स्वस्थ होंगी।
1: बिल्कुल सखियों, आज के समय में अपने आप को स्वस्थ रखना बहुत ही ज़रूरी है, फिर चाहे उम्र कोई भी हो। तो खुशबू, जब स्वास्थ्य की बात हम कर रहे हैं तो आज अपने कार्यक्रम में हम बात करेंगे योग की, है ना, और फिटनेस की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले लेते हैं छोटा सा विराम।

0: निशुल्क कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के अवसर पर हमारे साथ हैं डॉक्टर उमेश कुमार ओझा धनबाद से। क्या बीपी डायरेक्टली लिंक्ड है हार्ट डिजीज से?
2: जी हाँ, हाई बीपी से होता क्या है कि एक हृदय एक निश्चित दबाव में काम करता है, मगर ब्लड प्रेशर होने से रक्त नलिकाओं में दबाव हो जाता है। इससे होता क्या है कि हार्ट को या दिल को उस दबाव के अगेंस्ट में खून को पूरे शरीर में पहुंचाने के लिए पंप करना पड़ता है। क्या होता है कि हार्ट की जो मसल्स हैं या तो मोटी हो जाती हैं या

0: और वीक हो जाती हैं और उसकी वजह से हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर इत्यादि बीमारियां पेशेंट को हो सकती है।
1: अ पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव फॉर हेल्दी इंडिया।
2: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
3: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
1: विराम के बाद एक बार पुनः आपका स्वागत है बहनों आपके ही कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में, और आपके साथ हैं हम दो सखियां राखी और खुशबू।
4: बिल्कुल राखी, और जैसा कि तुमने बताया कि आज हम चर्चा करेंगे योग और फिटनेस की, क्योंकि सखियों आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, और हम सभी न जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं से, परेशानियों से घिरे हुए हैं, और इसका मुख्य कारण है अनियमित दिनचर्या, गलत खान पान, तनाव, प्रदूषण और शारीरिक गतिविधियों में कमी के कारण लोग छोटी उम्र में ही कई बीमारियों के शिकार हो रहे हैं, है ना।
1: तो ऐसे समय में योग और फिटनेस का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है, लोग जागरूक भी हो रहे हैं खुशबू। और योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह हमें आध्यात्मिक और मानसिक शांति भी देता है। सखियों, बहुत जरूरी है कि हम अपनी जो दिनचर्या है उसे योग और सही जीवन शैली की आदतों से सही रखें और अपनी आदतों को सुधारें।
4: बिल्कुल, और क्यों फिटनेस का मतलब है शरीर का स्वस्थ होना, चुस्त दुरुस्त होना और ऊर्जावान होना। इसलिए आज फिटनेस हर उम्र के व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि योग भारतीय संस्कृति की अमूल्य देन है। यह शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन बनाता है, और नियमित योग करते रहने से शरीर मजबूत होता है, मन शांत रहता है और जीवन में सकारात्मक भी आती है।
1: योग हर उम्र के लिए लाभदायक है, जैसा कि बहनें जानती हैं। सखियों, आज योग में कई तरह के की चीज़ें शामिल भी की गई हैं, जैसे आसन, प्राणायाम, ध्यान, ये सब तो है ही है। आजकल बहुत तरह की पद्धतियां उसमें अपनी तरफ से भी लोगों ने शामिल की है, लेकिन फायदा सबका है, है ना। तो मतलब यह है कि शरीर को फिट रखने का एक सटीक तरीका है योग, जिसमें शरीर के सभी अंग सक्रिय होते हैं और सुचारू रूप से काम करने लगते हैं, और ये सभी जो हैं क्रियाकलाप वो शरीर को रोगों से दूर रखने में मदद करते हैं। योग करने से रक्त संचार, या यूं कहें कि शरीर में खून का प्रवाह भी सही हो जाता है, पाचन तंत्र मजबूत होता है और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है,
4: और इसके साथ ही यह तनाव, चिंता, उत्साह को भी कम करने में बहुत ही मदद करता है, और इसलिए यह हर उम्र के लिए जरूरी है। जैसे कि राखी, योग करने से बच्चों का जहाँ शारीरिक विकास तेजी से होता है, एकाग्रता बढ़ती है, पढ़ाई में ध्यान लगता है, मानसिक संतुलन बना रहता है, वहीं युवाओं के लिए यह तनाव कम करने, शरीर को फिट रखने और आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करता है। तो बुजुर्गों के लिए शरीर में लचक को बनाए रखता है, दर्द को कम करने और मानसिक शांति बनाए रखने में भी मदद करता है, और साथ ही बढ़ती उम्र के असर को भी दूर करता है।
1: यानी कि हर उम्र के लिए उपयोगी है योग, भले ही आसन अलग हो, प्राणायाम कौन सा करना है, ये सब आप योग गुरु के निर्देश में करें तो ज्यादा अच्छा है। वैसे सखियों, आजकल लोग जिम या आधुनिक व्यायाम की ओर आकर्षित हो रहे हैं ज्यादा, लेकिन योग एक सरल, सस्ता और प्रभावी उपाय है जिसे कोई भी आसानी से कर सकता है।
4: इसलिए तो कहा जाता है सखियों, योग और फिटनेस स्वस्थ जीवन शैली की चाबी है, और हम यदि प्रतिदिन योग करें, यानी डेली योग करें, तो हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। इसलिए योग को अपनी दिनचर्या में अवश्य शामिल करें।
1: बिल्कुल, और शारीरिक मानसिक फिटनेस की तुमने बात की, तो उसमें एक और भी चीज है जो हमें बहुत मदद करती है, क्योंकि उससे हमारा मन शांत रहता है, प्रसन्न रहता है, और जब हम प्रसन्न रहेंगे तो स्वस्थ भी रहेंगे, और वो चीज है संगीत।
4: बिल्कुल,
1: तो चलो अपने कार्यक्रम में बहनों को भी एक सुंदर सा गीत सुनवाते हैं।

0: तीनों कॉलेज में।
1: डोंट वरी,
0: फीस तो देखो।
2: क्या हाल है, क्या हुआ?
1: फीस की टेंशन,
2: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही, रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा, और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल।
1: वो कहाँ है?
2: मिठाई।
3: आरबीआई कहता है,
4: खतरों से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
5: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: विराम के बाद आपका स्वागत करते हैं हम आपके ही कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में, और खुशबू आगे क्या लेकर आए हैं बहनों के लिए, हम बताओ।
8: राखी, सखियों को हम आगे सुनाएंगे एक भेंट वार्ता, और आज का विषय है जल संरक्षण में महिलाओं की अहम भूमिका। और आज बातें हो रही हैं सर्वेश्वरी मिश्रा जी से, जो कि एक शिक्षिका भी हैं, और वो हमें बता रही हैं कि किस तरह से महिलाएं हैं जल का सही उपयोग करके उसके बचत में बड़ा योगदान दे सकती हैं। तो आइए सुनते हैं सखियों, राखी और सर्वेश्वरी मिश्रा जी की ये भेंट वार्ता।
9: जल है तो कल है, जल संरक्षण आज समय की आवश्यकता है, और यह एक सबसे बड़ी चुनौती भी मानी जा सकती है। जल संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं आज की महिलाएं, और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका भी है इसमें। तो आइए आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं, और आज की हमारी अतिथि हैं सर्वेश्वरी मिश्रा। आप पेशे से एक शिक्षिका तो हैं ही, साथ ही साथ सामाजिक कार्यों में भी महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। सर्वेश्वरी जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आपका अपने कार्यक्रम में, नमस्कार।
10: नमस्कार राखी जी, नमस्कार प्यारे श्रोताओं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
9: हम आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि जल संरक्षण में महिलाओं की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है।
10: देखिए, जल संरक्षण की बात की जाए तो महिलाएं एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं, क्योंकि उचित मायने में वे जल की सबसे बड़ी उपभोक्ता होने के साथ साथ उसकी सबसे सशक्त संरक्षक भी होती हैं। क्योंकि महिलाएं घर में जल के उपयोग, उसकी बचत, उसकी हर एक बूंद का महत्व समझती हैं। रसोई से लेकर बच्चे की परवरिश तक, घर की जिम्मेदारी, हर एक चीज में जल का उचित उपयोग और उसकी बचत का संस्कार सबसे पहले सभी को वही सिखाती हैं, तो उनकी भूमिका तो है ही महत्वपूर्ण।
9: जी, घर और समाज में पानी की जो बर्बादी होती है उसे रोकने में महिलाएं कैसे अपना योगदान दे सकती हैं?
10: हाँ, जैसे मुझे लगता है कि घर हो या समाज की बात की जाए, तो पानी की बर्बादी रोकने के लिए महिलाएं जो हैं वो अपनी रोजमर्रा की आदतों से काफी बड़ा योगदान दे सकती हैं। जैसे जरूरत के अनुसार ही पानी का उपयोग करें, फिल्टर या एसी वगैरह से जो पानी बचते हैं, तो वो अतिरिक्त पानियों का उपयोग वो पौधों में प्रयोग करें। इसके साथ ही वे बच्चे और परिवार को भी पानी की एक एक बूंद का महत्व समझा सकती हैं। वास्तव में महिलाएं जो हैं, उनकी छोटी छोटी सावधानियां जो होती है ना, वो जल संरक्षण को एक अच्छी आदत और समाज की जिम्मेदारी बना सकती हैं।
9: जी, हमें ये भी बताएं सर्वेश्वरी जी कि वर्षा जल संचयन को
10: जी
9: अगर बढ़ावा देना चाहें हम, तो महिलाएं क्या भूमिका उसमें निभा सकती हैं?
10: देखिए, वर्षा जल संचयन जो है तो उसको तो हमें अपनाना ही चाहिए, और महिलाएं जो होती है उसमें बढ़ चढ़ कर आगे भाग लेती हैं। ये एक मुझे लगता है एक आंदोलन की तरह है। वे घर की पहली शिक्षक होती हैं, परिवार की मार्गदर्शक होती हैं। तो इसके पानी बचाने की जो आदत है बच्चे में या परिवार में, वो आसानी से उसे विकसित कर सकती हैं। और वो है कि जैसे छत पे जो पानी टपक रहा होता है तो उसे वो एकत्रित करने की व्यवस्था कर सकती हैं, उसका वो रोजमर्रा के कार्य में उपयोग कर सकती हैं। जैसे वही पौधे को पानी देना हुआ या कूलर वगैरह में हम उसको उपयोग कर सकते हैं। बल्कि वो आस पड़ोस वालों में भी है कि महिलाओं को जागरूक कर सकती हैं। छोटी छोटी बैठक जैसे महिलाएं करती हैं ना, किटी पार्टीज वगैरह, उसके माध्यम से, या और ऐसे भी संगठन बना के वो लोगों को संदेश दे सकती है, उसके लिए काम कर सकती है, तो हम ये मुझे लगता है वो कर सकती है सही तरीके से।
9: अब बात करते हैं आज की युवा पीढ़ी की, तो क्या आज की युवा पीढ़ी पानी के महत्व को सही तरीके से समझ पा रही है?
10: आज की जो युवा पीढ़ी है वो पानी के महत्व को ऐसा तो है कि वो समझती है, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल ही नहीं समझती है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर मुझे लगता है कि अभी थोड़ा उसमें काम करना पड़ेगा हमें, क्योंकि वो ऐसा नहीं है, वो करते हैं वर्क, जैसे सेव वाटर या वर्षा जल संचयन जैसे वो अभियान चला रहे होते हैं एक तरफ, या सोशल मीडिया के माध्यम से भी वो लोगों को जागरूक करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनसे भी थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती है, थोड़ी लापरवाही मैं देखती हूँ आजकल जो आज की पीढ़ियों पर मतलब देखने को मिलता है, कोई नल खुला करके भूल जाते हैं, या छोटी छोटी नादानियां जो उसमें उनका ध्यान नहीं जाता है, ऐसे तो वो बातें बहुत अच्छी करेंगे, जागरूक भी रहते हैं, लेकिन जब खुद की बात आती है तब वो उतने व्यवहारिक नहीं हो पाते हैं। तो मुझे लगता है कि यदि बचपन से ही हम उन्हें जल के महत्व का एहसास दिलाएं और रोक टोक करें थोड़ा उनकी लापरवाही में, तो उनकी आदत बदल सकती है और व्यवहारिक तौर पर वो जल संरक्षण के लिए जागरूक और अधिक हो सकते हैं, ऐसा नहीं है
9: जी।
10: क्योंकि जो युवा पीढ़ी है हमारी वो वही सीखते हैं जो वो अपने आसपास देखते हैं, इसलिए उन्हें केवल हम दोष नहीं दे सकते हैं, बल्कि हमें एक उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ेगा उनके सामने, खुद ही की आदतों को सुधार कर जो वो देखें और सीखें।
9: जी जी। अब हम बात करते हैं मुख्यतः समाधान की, तो क्या समाज में पानी बचाने की जो आदत है उसे विकसित करने के लिए कुछ खास कदम उठाना चाहिए, क्या करना है?
10: जी बिल्कुल, उठाना तो चाहिए ही, क्योंकि वैसे पानी बचाने के लिए भाषण नहीं, आदतें हमें बदलनी होगी, क्योंकि भाषण लोग बड़े बड़े देते हैं, नारे लगाते हैं, लेकिन व्यवहारिक तौर पर हम इसे अपनाना भूल जाते हैं। समाज में जो पानी बचाने की शुरुआत है हमारे रोजमर्रा की छोटे छोटे कामों से हम कर सकते हैं, जैसे ब्रश करते समय नल बंद रखें, आरओ या फिर सब्जी धोने के बाद जो पानी बचा हो उसे हम पौधों में इस्तेमाल करें, बेवजह पानी खर्च ना करें, इस तरह से हम छोटी छोटी आदतों को सुधार कर हम सहयोग कर सकते हैं, जैसे कि हर मोहल्ले में जल प्रहरी जैसे छोटे छोटे समूह भी बना सकते हैं जो लोगों को जागरूक करें, समझाएं, क्योंकि हमें यह समझना होगा कि अगर आज हमने पानी नहीं बचाया तो कल केवल प्यास ही नहीं संघर्ष ही भरेगा, इसलिए अब समय आ गया है कि हम जल ही जीवन है ऐसा सिर्फ कहें नहीं, बल्कि जल संरक्षण के प्रति अपने कर्तव्य का निष्ठा से पालन करें।
9: बहुत अच्छी बात आपने कही। अब चलते चलते एक आखिरी प्रश्न आपसे करना चाहेंगे कि आज के बच्चे कल के युवा हैं और इसका भविष्य भी है, तो महिलाएं बच्चों में आदत कैसे विकसित करें बचपन से ही?
10: ये बच्चों में तो जो हमें है बचपन से ही जल संरक्षण की आदत विकसित करने के लिए, जैसा मैंने कहा कि वो देखकर सीखते हैं, जो हमारी युवा पीढ़ी है हमारे बच्चे हैं वो अगर घर में देखेंगे कि उनकी मम्मी पापा या जो भी घर के परिवार वाले जैसा व्यवहार कर रहे हैं, पानी का जैसा प्रयोग कर रहे हैं, तो वो वैसा ही करेंगे, वही संस्कार बच्चों में भी आएंगे। वो अगर वो जल संरक्षण कर रहे हैं, उनके घर वाले अपना सहयोग दे रहे हैं, जल की कीमत समझ रहे हैं, तो बच्चे भी समझेंगे, क्योंकि जैसा कहा गया है ना कि बच्चे माटी का स्वरूप होते हैं, हम उन्हें बचपन में जैसा आकार देंगे वैसा स्वरूप ही को ग्रहण करेंगे, तो इस बात की जिम्मेदारी पूरी तरह से मतलब हमारी घर वालों की है, समाज की भी है, क्योंकि यदि समाज का हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझकर थोड़ा थोड़ा प्रयास करे तो जल संकट जैसी बड़ी समस्या को भी हम कुछ हद तक नियंत्रित कर ही सकते हैं, खत्म भले ना कर सके।
9: सर्वेश्वरी जी आपने बहुत अच्छी बातें बताई और प्रायोगिक तौर पर बताई जो कि हर किसी के लिए उपयोगी है। सर्वेश्वरी जी चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगी?
10: जी मैं उनसे अपनी पंक्तियों के माध्यम से एक छोटा सा संदेश पहुंचाना चाहूंगी, ध्यान देंगे, बूंद बूंद में सांस धरा की, बूंद बूंद में सांस धरा की, बूंद बूंद में राग धरा की, इन बूंदों को कम ना आको, ये मिल जाए तो प्यास बुझाए, ये मिल जाए तो प्यास बुझाए, एक ही क्षण में प्रलय ले आए, इनकी ताकत इनकी शक्ति से ही जुड़ा है हमारा जीवन, से ही जुड़ा है हमारा जीवन, क्यों ना हम एक कदम बढ़ाएं, क्यों ना हम एक कदम बढ़ाएं, जल की हर एक बूंद बचाएं, जल की हर एक बूंद बचाएं। धन्यवाद।
3: बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
10: जी बिल्कुल।
8: सखियो अभी आप सुन रही थी

0: तो बहनों, फिर से आपका स्वागत करते हैं हम आपके कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में। और खुशबू, चलते चलते बहनों को और क्या हम जानकारियां देने वाले हैं?
1: आज हम जानकारी देने वाले हैं सखियों को ऑनलाइन सुरक्षा और साइबर क्राइम से कैसे बचा जा सकता है इसके बारे में, क्योंकि राखी, आज का युग इंटरनेट और तकनीक का युग है। मोबाइल, कंप्यूटर और इंटरनेट ने हमारे जीवन को आसान तो बना दिया है, लेकिन इसमें बहुत सारे जोखिम भी आ गए। आज हम बहुत सारी चीजें ऑनलाइन करते हैं, जैसे कि पढ़ाई, बैंकिंग, खरीदारी, टिकट बुकिंग, सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, और इंटरनेट के बढ़ते उपयोग के साथ साइबर अपराध भी तेजी से बढ़ रहे हैं। इसलिए ऑनलाइन सुरक्षा के प्रति जागरूक होना बहुत जरूरी है।
0: बहुत जरूरी है सच में। साइबर क्राइम वह अपराध है जो इंटरनेट या डिजिटल माध्यम से किया जाता है बहनों, ये तो हम जानते ही हैं। इसमें हैकिंग, फर्जी कॉल, बैंक फ्रॉड जो होता है, पासवर्ड की चोरी, सोशल मीडिया अकाउंट हैक करना और ऑनलाइन जो है बहुत तरह की ऐसी चीजें हैं जो कि एक उदाहरण है। कई लोग जो है लालच में फंस जाते हैं आसानी से, जब उनको लालच दिया जाता है, इसके कारण भी इस साइबर फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं।
1: बिल्कुल, और लालच भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे कोई बोलता है कि हम बहुत सारे इनाम जीत चुके हैं, हमारे खाते में इतनी राशि आ चुकी है, या फिर जानकारी की कमी के कारण भी इसके शिकार हम आसानी से बन जाते हैं। लेकिन इससे बचने का सबसे उपयोगी तरीका ये है कि हम सबसे पहले अपना पासवर्ड जो है वो मजबूत बनाएं और समय समय पर उसे बदलते रहें, और किसी भी अनजान आदमी के साथ अपना OTP, बैंक डिटेल या पासवर्ड साझा नहीं करें।
0: हाँ, सोशल मीडिया पर अपनी जो निजी जानकारी है वो कम से कम साझा करनी चाहिए। इसके अलावा किसी भी संदिग्ध लिंक या मैसेज पर क्लिक बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मोबाइल और कंप्यूटर पर आजकल जो है एंटीवायरस का भी ऑप्शन है।

0: उसका उपयोग कीजिए और केवल सुरक्षित और विश्वसनीय वेबसाइट का ही उपयोग करना चाहिए।
1: बिल्कुल, और ऑनलाइन भुगतान करते समय भी काफ़ी सावधानी रखनी चाहिए क्योंकि आजकल ऑनलाइन पेमेंट हम बहुत करते हैं, इसलिए वेबसाइट का यूआरएल ध्यान से जांचना चाहिए और साथ ही बच्चों और युवाओं को भी साइबर सुरक्षा के बारे में हमें जानकारी देनी चाहिए ताकि वे ऑनलाइन धोखाधड़ी से बच सकें।
0: हाँ सखियों, बच्चों और युवाओं को ऑनलाइन जो भी है गेमिंग और हाँ, किसी भी प्रकार का जो इस तरह का है वहाँ पे खेल वगैरह, उससे बचना चाहिए ताकि हम किसी प्रकार की ठगी के शिकार ना हों। और ये तो ऐसी जानकारी है कि इसकी सीमा भी बहुत बड़ी है, तो इसीलिए बाकी की जानकारियाँ हम अगले कार्यक्रम में देंगे बहनों। और चलते चलते बता दें कि आज के कार्यक्रम की प्रस्तुति थी नूतन प्रसाद की।
1: और अब अपनी दो सखियों राखी और खुशबू को दे इजाजत।
0: नमस्कार।
2: गृहलक्ष्मी।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अब समय हो चला है कार्यक्रम भारत भारती का, जिसमें आप सुनेंगे मैथिली भाषा में आंचलिक लोकगीत विंध्यवासिनी देवी और साथी की आवाजों में।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भारत भारती के तहत आंचलिक लोकगीत मैथिली भाषा में, बिंदवासिनी देवी और साथी की आवाजों में।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम लोकरंग में खड़िया लोकगीत अब्राहम कुल्लू और साथी की आवाजों में।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोकरंग में खड़िया लोकगीत अब्राहम कुल्लू और साथी की आवाजों में। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के निमंत्रण पर श्री मोदी स्वीडन जा रहे हैं। श्री मोदी की यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी।
1: प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर स्वीडन के उद्योग जगत में उत्साह का माहौल है और कारोबारी समुदाय इस दौरे के परिणामों को लेकर काफी आशावान है। आकाशवाणी से बातचीत में इंडियन स्वीडन बिजनेस काउंसिल के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी श्री रॉबिन सुखिया ने जन से जन संपर्कों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री की दूसरी बार मेजबानी करना स्वीडन के लिए अत्यंत उत्साह और गर्व का विषय है। इस बैठक में दोनों देशों के बीच समग्र द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जा सकती है और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा करी जा सकती है। दोनों नेता हरित परिवर्तन, एआई, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, रक्षा, अंतरिक्ष, क्लाइमेट एक्शन और जन से जन संपर्कों जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: इससे पहले कल हेग में प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन के बीच वार्ता के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। सहयोग को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन ने कहा कि भारत के साथ संबंधों का महत्व लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और रणनीतिक सहयोग जरूरी है। भारत ने कहा है कि हॉर्मुस जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को उचित नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक विशेष बैठक में कही। मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है जो 21 मई तक चलेगी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से सीएनजी की कीमतों में 1 रुपए की बढ़ोतरी की है। इस सप्ताह की शुरुआत में भी आईजीएल ने

चिरंजी की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की थी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को संशोधित करके मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। दिल्ली मेट्रो निजी वाहनों के बजाय मेट्रो के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त ट्रेनें चलाएगी। दिल्ली मेट्रो के अनुसार ये फैसला ऊर्जा और धन की बचत तथा पर्यावरणीय सुरक्षा में मेट्रो की भूमिका को देखते हुए लिया गया है। इसके लिए प्रत्येक सोमवार को 24 अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन चलाई जाएंगी। टेनिस में यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना ने इटालियन ओपन का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। 7वीं वरीयता प्राप्त एलिना ने फाइनल में अमरीका की कोको गॉफ को हराया। आज इटली के यानिक सिनर का मुकाबला नॉर्वे के कैस्पर रूट से होगा। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लिया रूली कार्नेंडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल रीच गोथेनबर्ग टुडे ऑन अ टू डे विजिट टू स्वीडन। ही विल होल्ड बायलैटरल टॉक्स विद स्वीडिश प्राइम मिनिस्टर उल्फ क्रिस्टेशन टू रिव्यू कोऑपरेशन इन ट्रेड, ग्रीन ट्रांजिशन, एआई, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, स्टार्टअप्स, रेजिलियंट सप्लाई चेन्स, डिफेंस, स्पेस, क्लाइमेट एक्शन एंड पीपल टू पीपल टाइज। The two leaders will also address the European Round Table for Industry alongside European Commission President Ursula von der Leyen. This visit is the third leg of Prime Minister Modi's UAE and European tour and his first to Europe since the India-EU Free Trade Agreement took effect in January 2026. India has strongly condemned attacks on commercial shipping in the Strait of Hormuz, calling them unacceptable. India's permanent representative to the UN, P. Harish, said targeting civilian crew and disrupting freedom of navigation cannot be justified. He was speaking at a special meeting of the United Nations Economic and Social Council on safeguarding global energy and supply flows.
1: Targeting of commercial shipping, endangering civilian crew, impeding freedom of navigation in the Strait of Hormuz are unacceptable. International law in this regard must be fully respected. Open and predictable trade flows must be preserved and fragmentation avoided. Coordinated efforts are needed to stabilize energy markets and support countries facing external and fiscal pressures. Strengthening multilateral financial support mechanisms will also be critical in this regard. This crisis underscores the importance of combining immediate response with long-term transformation.
0: Mr. Harish's remarks came days after an India-flagged commercial vessel was attacked off the coast of Oman. Within days of levying high customs duties on precious metals, the government has imposed import curbs on silver. Directorate General of Foreign Trade in a notification said the import policy for silver, including silver plated with gold and platinum, are revised from free to restricted with immediate effect. A major rail accident was averted in Ratlam, Madhya Pradesh this morning. Fire broke out in the B1 coach of the Thiruvananthapuram Hazrat Nizamuddin Rajdhani Express, train number 12431. The incident took place between Luni Richa and Vikramgarh Alot stations in the Kota division around 5:20 a.m. There has been no casualty in this incident. The cause of the fire is being investigated. The field operations for the house listing and housing census under Phase 1 of Census 2027 have commenced in 5 states and union territories. These states and union territories are Rajasthan, Meghalaya, Maharashtra, Jharkhand and Municipal Corporation of Delhi area in Delhi NCT as part of the ongoing nationwide census exercise. Meanwhile, house-to-house house listing operations by enumerators are presently in progress in Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Bihar, Chandigarh, Chhattisgarh, Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu, Haryana, Madhya Pradesh, Punjab, Telangana and Uttarakhand. The World Health Organization, WHO, has declared the Ebola outbreak in the Democratic Republic of the Congo and Uganda a public health emergency of international concern. WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus announced the decision after more than 300 suspected cases and 88 deaths were reported. WHO in a social media post clarified the outbreak does not meet the criteria for a pandemic emergency like COVID-19 and advised against closing international borders. World Hypertension Day is being observed today. The theme for this year is controlling hypertension together. Check your blood pressure regularly. Defeat the silent killer. The day is a part of Hypertension Awareness Month, aiming to raise global awareness about high blood pressure, promote prevention, detection and control. Southwest monsoon has advanced into some parts of Arabian Sea, Bay of Bengal, many parts of Andaman Sea and Andaman Islands and entire Nicobar Islands. According to the IMD, southwest monsoon is likely to set in over Kerala on 26th of this month. Meanwhile, the weather agency has predicted heat wave conditions in Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh and Vidarbha tomorrow. In IPL cricket, Punjab Kings will take on Royal Challengers Bengaluru in Dharamshala at 3:30 p.m. today. In another match, Delhi Capitals will face Rajasthan Royals in Delhi at 7:30 p.m. In badminton, world number 4 Indian pair Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty went down 12-21, 23-25 to Indonesia's Leo Roli, Carnado and Daniel Martin. And that is the end of this news bulletin.
2: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्ति परीक्षा विवाद मामले में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने राज्य सरकार से मांगी पूरी जानकारी, 23 मई को होगी अगली सुनवाई। केंद्र सरकार ने चांदी के आयात पर लगाया प्रतिबंध, मुक्त से प्रतिबंध श्रेणी में रखी गई चांदी, अब आयात के लिए सरकारी लाइसेंस जरूरी। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री देश के सर्वश्रेष्ठ जिलाधिकारियों की सूची में हुए शामिल, देश के 100 जिलाधिकारियों को भी सूची में मिला स्थान। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस को लेकर राज्य भर में चलाया जा रहा है जागरूकता अभियान, हेल्पलाइन नंबर 104 पर 24 घंटे मरीजों को दी जा रही है सलाह। और भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे ने कहा ऑस्ट्रेलिया दौरे और FIH महिला हॉकी नेशंस कप में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगी टीम। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स में हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
3: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं, इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा से जुड़े नियुक्ति विवाद मामले में गठित वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के अध्यक्ष गौतम कुमार चौधरी ने मामले की सुनवाई की। इस दौरान राज्य सरकार को नियुक्त अभ्यर्थियों से संबंधित पूरी जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। इसमें नियुक्ति से जुड़े कार्यालय आदेश, विषयवार और श्रेणीवार प्राप्तांक, जिलावार मेरिट सूची सहित अन्य दस्तावेज शामिल हैं। SDPO बैजू राम ने बताया कि मामले की अगली सुनवाई 23 मई को होगी।
4: JSSC और राज्य सरकार दोनों को पिछले 2 डेट से डायरेक्शन मिला था रिवाइज मेरिट लिस्ट सबमिट करने के लिए। JSSC के द्वारा आज रिवाइज मेरिट लिस्ट सबमिट कर दिया गया है और राज्य सरकार के द्वारा जो दस्तावेज लाए गए थे वो कुछ अपूर्ण थे, पूरे कम्प्लीट नहीं थे, तो कोर्ट ने उनको 1 हफ्ता का और समय दिया गया। अब अगले शनिवार को इस केस की फिर से सुनवाई होगी।
0: कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिनों बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को मुक्त से प्रतिबंधित करके संशोधित कर दिया गया है। सरकार ने पिछले सप्ताह कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री को फेम इंडिया मैगजीन और एशिया पोस्ट द्वारा जारी देश के सर्वश्रेष्ठ जिलाधिकारियों की सूची में स्थान मिला है। देश भर के करीब 800 जिलों के अधिकारियों के कार्यों के अध्ययन के बाद तैयार इस सूची में उन्हें बेहतर प्रशासन, जन सरोकार और विकास कार्यों के आधार पर चुना गया है। चयन प्रक्रिया में प्रशासनिक क्षमता, प्रभावी गवर्नेंस, नवाचार, संकट प्रबंधन और जनभागीदारी जैसे मानकों को शामिल किया गया। इस सूची में देश भर के 100 जिलाधिकारियों को स्थान मिला है। पूर्वी सिंहभूम में जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने वन विभाग की DFO सबा आलम अंसारी के साथ मानगो से सटे दलमा पहाड़ की तलहटी के विभिन्न क्षेत्रों का संयुक्त निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान क्षेत्र को पर्यावरण और पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की योजना पर सहमति बनी। प्रस्ताव के तहत चंद्रावती नगर, गोपाल नगर, कुमरुम बस्ती और पार्डी के आसपास पार्क,
5: तालाब, पाथवे और बच्चों के लिए चिल्ड्रन पार्क विकसित किए जाएंगे। इन क्षेत्रों को इको टूरिज्म केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है। विधायक ने कहा कि दलमा की तलहटी प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है और यहां पर्यावरण अनुकूल विकास कार्य किए जाएंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक सैंडल एटीआईआर न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक सैंडल एटीआईआर न्यूज _ रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल एआईआर न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। इधर राज्य के स्वास्थ्य विभाग की ओर से नागरिकों को नियमित व्यायाम करने, फल और सब्जियों का अधिक सेवन करने और वजन नियंत्रित रखने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य संबंधी जानकारी या शिकायत के लिए 24 घंटे संचालित हेल्पलाइन नंबर 104 पर संपर्क करने की सुविधा उपलब्ध है। रांची पुलिस ने वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन के निर्देश पर चलाए गए ऑपरेशन प्रहार के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए पिछले दो दिनों में 100 से अधिक अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अभियान के दौरान 220 से ज्यादा लंबित वारंटियों को अभी निष्पादन किया गया, जिसमें रांची पुलिस की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई में से एक माना जा रहा है। रांची पुलिस ने कहा है कि अपराध नियंत्रण और संगठित अपराध पर कार्रवाई के लिए भविष्य में भी इस तरह के अभियान लगातार जारी रहेंगे। रांची के कांके थाना क्षेत्र में पुलिस ने पेट्रोल पंप संचालकों को सख्त चेतावनी जारी की है कि ईंधन की कृत्रिम कमी पैदा करने, जमाखोरी या सप्लाई रोकने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और पेट्रोलियम अधिनियम 1934 के तहत कार्रवाई होगी। पुलिस ने निर्देश दिया है कि सभी पंपों पर पेट्रोल डीजल की आपूर्ति सामान्य रखी जाए, स्टॉक और सरकारी दरें बोर्ड पर प्रदर्शित हों और एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और आपातकालीन वाहनों को प्राथमिकता दी जाए। बिना हेलमेट वाले दोपहिया चालकों और खुले बर्तन में पेट्रोल डीजल देने पर पूरी तरह रोक लगाई गई है। साथ ही भीड़ होने पर तुरंत पुलिस को सूचना देने को कहा गया है। थाना प्रभारी साक्षी जमुआर ने कहा कि नियमों की अनदेखी करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देवघर जिले की पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 30 किलो अवैध गांजा बरामद किया है। देवघर के एसपी प्रवीण पुष्कर ने बताया कि इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
6: तो वो सूचना के आधार पर एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और वहाँ पे छापामारी की गई, तो वहाँ पे 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई। ये लोग गांजा अगरतला से लेके आए थे और यहाँ पे डिलीवर करने वाले। उसके बाद उन तीनों का करोक्ति बयान के आधार पे और 3 नाम सामने आए और वो तीनों देवघर के रहने वाले थे जो उनसे गांजा खरीदते थे और यहाँ पे सप्लाई करते थे।
5: कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने भोजपुरी और मगही भाषा पर कहा है कि जिन भाषाओं को बिहार में ही पूर्ण मान्यता नहीं मिली है, उन्हें झारखंड में अलग दर्जा देना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि झारखंड की अपनी क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं की समृद्ध पहचान है, जिनके संरक्षण और संवर्धन को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। बंधु तिर्की ने कहा कि राज्य की मूल भाषाओं और संस्कृति को मजबूत करना सरकार की जिम्मेदारी है।
7: भोजपुरी कोई भाषा नहीं है, वो कुछ जिलों में बोली के रूप में जाना जाता है। मगही आपका बोली के रूप में जाना जाता है और भोजपुरी और मगही को तो खुद में आपका बिहार में इसका मान्यता नहीं है और ऐसे में यहाँ पर उन भाषा का दर्जा देना ये कहीं से भी उचित नहीं है।
5: भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे ने कहा है कि महिला टीम आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले बंगलुरु स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण में तैयारियों पर कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। भारतीय टीम 26 से 30 मई के बीच पर्थ हॉकी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैच खेलेगी। यह न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में होने वाले आगामी FIH महिला हॉकी नेशंस कप के लिए एक महत्वपूर्ण चरण है। बता दें कि भारतीय टीम की कप्तान सलीमा टेटे झारखंड के सिमडेगा की रहने वाली हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्ति परीक्षा विवाद मामले में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने राज्य सरकार से मांगी पूरी जानकारी, 23 मई को होगी अगली सुनवाई। केंद्र सरकार ने चांदी के आयात पर लगाया प्रतिबंध, मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में रखी गई चांदी, अब आयात के लिए सरकारी लाइसेंस जरूरी। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री देश के सर्वश्रेष्ठ जिलाधिकारियों की सूची में हुए शामिल, देश के 100 जिलाधिकारियों को भी सूची में मिला स्थान। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस को लेकर राज्य भर में चलाया जा रहा है जागरूकता अभियान, हेल्पलाइन नंबर 104 पर 24 घंटे मरीजों को दी जा रही है सलाह। और भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे ने कहा, ऑस्ट्रेलिया दौरे और FIH महिला हॉकी नेशंस कप में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगी टीम। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है।

अब समय हो चला है कार्यक्रम अनुरंजनी के अंतर्गत उपशास्त्रीय संगीत का। आज आप सुनेंगे ठुमरी खमाज में सिद्धेश्वरी देवी की आवाज में। तबले पे संगत दे रहे हैं चतुरलाल और सारंगी पर सबरी खान।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अनुरंजनी के अंतर्गत उपशास्त्रीय संगीत में ठुमरी खमाज। कलाकार थी सिद्धेश्वरी देवी, इनके साथ तबले पर संगत दे रहे थे चतुरलाल और सारंगी पर सबरी खान। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। अब वक्त है सुरों की इस महफिल का, जहां हर एहसास गजलों की मिठास में घुल जाएगा। तो तैयार हो जाइए सुनने के लिए कुछ बेहद खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली गजलें। कार्यक्रम सुगम संगीत में बस थोड़ी ही देर में।

0: हाइपरटेंशन डे के अवसर पर हमारे साथ हैं डॉक्टर उमेश कुमार ओझा धनबाद से। डॉक्टर, अपनी मर्जी से बीपी की दवा बंद करना खतरनाक है क्या?
1: एकदम सही सवाल पूछा आपने। ये अक्सर मरीज हमारे पास में आते हैं, चाहे शुगर के मरीज हो या बीपी के मरीज हो, कि डॉक्टर साहब मेरा तो बीपी कंट्रोल हो गया, मेरा शुगर कंट्रोल हो गया, अब मैं दवाई बंद कर देता हूँ या कुछ दवाई बंद करके भी आते हैं। मैं इस मामले में मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आपके माध्यम से आम जनता से अनुरोध करूंगा कि कभी भी बीपी और शुगर की दवाइयां बिना चिकित्सीय सलाह के बंद नहीं करें। होता क्या है, मैं बीपी के बारे में बात करूंगा, होता क्या है कि हमारी रक्त नलिकाएं और हृदय एक निश्चित दबाव पर काम करने के अभ्यस्त हो जाते हैं। बीपी की दवाएं इस दबाव को नियंत्रित रखती हैं ताकि हृदय, मस्तिष्क, किडनी और आंखों को नुकसान न पहुंचे। जब कोई व्यक्ति अचानक दवा बंद कर देता है तो कई बार ब्लड प्रेशर तेजी से बढ़ता है, जिसको कि रिबाउंड हाई बीपी बोलते हैं। वैज्ञानिक रूप से देखें तो लगातार उच्च रक्तचाप नलिकाओं को अंदरूनी परत को नुकसान पहुंचाता है, इससे दिल का दौरा, किडनी फेल होना, आंखों की रोशनी कम होना और हार्ट फेलियर जैसी गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं।
0: पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव फॉर हेल्दी इंडिया।
2: आइए सुनते हैं आशा भोसले की आवाज़ में ये गज़ल, जिसके बोल लिखे हैं फयाज हाजमी ने और संगीत से सजाया है निसार बज्मी ने।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से मिड डे न्यूज़, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: popularly known as the Mountain Queen, also extended her own record as the first Nepali woman to summit Everest by completing her 11th successful ascent of the peak. Within days of levying high customs duties on precious metals, the government has imposed import curbs on silver. The Directorate General of Foreign Trade in a notification said the import policy for silver, including silver plated with gold and platinum, are revised from free to restricted with immediate effect. Delhi Metro will run additional train trips to encourage the adoption of the metro over private vehicles. Delhi Metro Rail Corporation, DMRC, said the decision has been taken keeping in view the significant role of public transport in ensuring energy efficiency, economic viability and environmental sustainability in the prevailing circumstances. DMRC said that from tomorrow, 24 additional train trips will be operated every Monday with the deployment of 6 extra trains. The corporation added that the additional services will also be introduced on other days depending upon the requirement. The Railway Ministry has ordered a high-level inquiry into the fire incident involving 2 rear coaches of the Trivandrum New Delhi Rajdhani Express. At around 5:15 this morning, there was fire in 2 rear coaches, which include 1 guard coach and 1 AC 3-tier in Trivandrum New Delhi Rajdhani near Nagda of Kota Division. A major rail accident was averted in Ratlam, Madhya Pradesh this morning. Fire broke out in the B1 coach of the Thiruvananthapuram Hazrat Nizamuddin Rajdhani Express, train number 12431. The incident took place between Luni Richa and Vikramgarh Alod stations in the Kota Division around 5:20 a.m. Ratlam Railway Division's Public Relations Officer Mukesh Kumar informed there has been no casualty in this incident. The cause of the fire is being investigated. The India Meteorological Department, IMD, has issued an orange alert for heavy to very heavy rainfall at isolated places over Andaman and Nicobar Islands, sub-Himalayan West Bengal and Sikkim for the day. The Met Department has predicted thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Maharashtra and northeastern states for the next 2 days. IMD has said Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh and Vidarbha may experience heat wave conditions till tomorrow. Severe heat wave grips Madhya Pradesh. Temperature crosses 43 degrees in 15 cities. A report.
1: Madhya Pradesh is reeling under severe heat. Life has become difficult for people. Indore and Ujjain divisions are the worst affected. Yesterday, Khandwa and Nogaon recorded temperatures above 44 degrees Celsius. In 15 cities across the state, the mercury touched 43 degrees or above. According to the IMD, a strong heat wave is likely in Ratlam, Khargone and Khandwa today. Temperature may cross 44 degrees there. Heat wave conditions will also continue in Indore, Ujjain, Sagar, Rewa, Chhatrapur and more than a dozen other districts. The IMD says severe heat will continue across most part of the state till May 19. No rain alert has been issued anywhere today. Abhinav Goyal, Akashvani, Bhopal.
0: On to sports now. In badminton, world number 4, Indian pair Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty went down 12-21, 23-25 to Indonesia's Leo Roli Kanando and Daniel Martin in the men's doubles final of the Thailand Open in Bangkok today. In tennis, Ukraine's Alina Svitolina stunned world number 4 Coco Gauff of the US 6-4, 6-7, 6-2 to win the women's title at the Italian Open yesterday. In the men's section, Jannik Sinner will face Norway's Casper Ruud in the final today. The match will start at 8:30 p.m. Indian Standard Time. In IPL cricket, today Punjab Kings will take on Royal Challengers Bengaluru at Himachal Pradesh Cricket Association Stadium in Dharamshala. The match is scheduled to begin at 3:30 p.m. In another match, Delhi Capitals will face Rajasthan Royals at Arun Jaitley Stadium in Delhi. The match will begin at 7:30 p.m. World Hypertension Day is being observed today. The theme for this year is Controlling Hypertension Together. Check your blood pressure regularly. Defeat the silent killer. The day is a part of Hypertension Awareness Month, aiming to raise global awareness about high blood pressure, promote prevention, detection and control. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to reach Gothenburg this afternoon on a 2-day visit to Sweden will hold talks with Swedish Prime Minister Ulf Kristersson. Stachon to review cooperation in trade, green transition, AI and defense. India and Netherlands elevate bilateral relationship to strategic partnership. 17 agreements signed to strengthen collaboration in key areas. India condemns attacks on commercial shipping in Strait of Hormuz as unacceptable, says disrupting freedom of navigation cannot be justified. World Health Organization declares Ebola outbreak in Congo and Uganda a public health emergency of international concern. IMD issues heavy to very heavy rainfall alert at isolated places over Andaman and Nicobar Islands, sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And Nepali mountaineer Kami Rita Sherpa creates history by climbing Mount Everest for 32nd time, breaking his own record. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार, प्रदूषण रहित तकनीक अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर वार्ता करेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। भारत ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापारिक जहाजों पर हमलों की निंदा करते हुए उन्हें अस्वीकार्य बताया। कहा, जहाजों की बेरोक टोक आवाजाही में बाधा उचित नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बताया। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की और नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के निमंत्रण पर स्वीडन जा रहे हैं। श्री मोदी की यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी।
3: प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर स्वीडन के उद्योग जगत में उत्साह का माहौल है और कारोबारी समुदाय इस दौरे के परिणामों को लेकर काफी आशावान है। आकाशवाणी से बातचीत में इंडियन स्वीडन बिजनेस काउंसिल के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी श्री रॉबिन सुखिया ने जन से जन संपर्कों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री की दूसरी बार मेजबानी करना स्वीडन के लिए अत्यंत उत्साह और गर्व का विषय है।
4: मैं एक बिजनेस काउंसिल की सोच के साथ काम करता हूं, जहां लोगों और मीटिंग्स को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। हर मीटिंग हमारे लिए आगे बढ़ने का एक नया कदम होती है। उनके स्वीडन आने से हमें बेहद खुशी और गर्व है। वे जिन क्षेत्रों पर काम कर रहे हैं उनकी जल्द घोषणा होने की उम्मीद है। इससे कई उद्योगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मुझे भरोसा है कि इस आर्थिक सहयोग से हमें बेहतर और मजबूत परिणाम देखने को मिलेंगे।
3: इस बैठक में दोनों देशों के बीच समग्र द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जा सकती है और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए संयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा करी जा सकती है। दोनों नेता हरित परिवर्तन, AI, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, रक्षा, अंतरिक्ष, क्लाइमेट एक्शन और जन से जन संपर्कों जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
2: कल अपनी यात्रा के दूसरे चरण में भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक स्तर पर ले जाकर 17 समझौते किए। ये समझौते रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित हैं। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया और विशेषकर ऊर्जा आपूर्ति में बाधा से विश्व व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव पर चिंता प्रकट की। श्री मोदी और रॉब येटन ने कहा कि हॉर्मुज की खाड़ी से होकर जहाजों की बेरोकटोक आवाजाही होनी चाहिए और इसे नियंत्रित करने का कोई भी प्रयास स्वीकार्य नहीं है। दोनों नेताओं ने यूक्रेन रूस संघर्ष पर भी चर्चा की। वे यूक्रेन समस्या का समाधान बातचीत और राजनयिक प्रयासों से किए जाने पर सहमत हुए। बातचीत के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक रोडमैप जारी किया। इनमें सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष, यांत्रिक मेधा और क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र के में सहयोग भी शामिल है। दोनों नेताओं ने ग्रीन हाइड्रोजन के विकास के लिए भी साझा रोडमैप जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया।
5: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
2: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन ने कहा कि भारत के साथ संबंधों का महत्व लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और रणनीतिक सहयोग जरूरी है। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक विशेष बैठक में कही। कुछ दिन पहले ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाले एक जहाज पर हमला हुआ था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार होंगे। आज गुजरात के अहमदाबाद में मिलियन माइंड्स टेक पार्क के पहले चरण और ग्रेमी सिटी कैंपस का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत विश्व के हर उभरते क्षेत्र में अग्रणी बन गया है।
6: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। AI और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
2: श्री अमित शाह ने गांधीनगर में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन भी किया। वे गांधीनगर निगम के विकास कार्यों का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री शाह गांधीनगर जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड मधुर डेयरी के नवनिर्मित 5 लाख लीटर क्षमता वाले संयंत्र का भी उद्घाटन करेंगे। श्री शाह 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
7: घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। सूची तैयार करने के लिए घर के सामानों, उपलब्ध सुविधाओं और परिसंपत्तियों का विवरण जुटाया जा रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में भी शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है, जो 21 मई तक उपलब्ध रहेगी। अब तक 25 राज्यों में 1,44,00,000 से अधिक घरों के निवासी स्वगणना प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
2: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया था, जिसमें मुसलमानों को हर शुक्रवार को भोजशाला परिसर के भीतर नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से CNG की कीमतों में 1 रुपए की बढ़ोतरी की है। अब दिल्ली में 1 किलोग्राम CNG की नई दर 80 रुपए 9 पैसे, गाजियाबाद और नोएडा में 88 रुपए 70 पैसे और गुरुग्राम में 85 रुपए 12 पैसे हो गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में भी CNG की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की गई थी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित

0: अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन चलाई जाएंगी। केरल से दिल्ली आ रही तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के B1 कोच में आज तड़के आग लग गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, कुछ रेलगाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा है। ये घटना मध्य प्रदेश के रतलाम में कोटा डिवीजन के लूणी रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच तड़के 5:20 पर हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए आपात स्थिति घोषित किया है। इस बीमारी से 300 से अधिक लोग पीड़ित हैं और 88 की मौत हुई है। हालांकि संगठन ने स्पष्ट किया है कि इबोला का संकट COVID-19 जैसी महामारी जैसा नहीं है। संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को बंद न करने की सलाह भी दी है। इबोला के इलाज के लिए फिलहाल कोई टीका या उपचार उपलब्ध नहीं है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। आज विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस भी मनाया जा रहा है। आज ही के दिन 1865 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र डिजिटल प्रौद्योगिकी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य इंटरनेट और इससे जुड़ी तकनीकों के सकारात्मक उपयोग को बढ़ावा देना है। नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेर्पा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रच दिया है। 56 वर्षीय कामी रीता एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ाई करने वाले शेर्पा हैं। इस बीच पर्वत रानी के नाम से मशहूर लाखपा शेर्पा ने भी एवरेस्ट पर लगातार 11वीं बार सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली नेपाली महिला होने का अपना रिकॉर्ड बरकरार रखा है। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने कहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ अपनी साझेदारी के माध्यम से डोमिनिका के कलिनागो समुदाय को सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मार्गरीटा ने डोमिनिका के कलिनागो क्षेत्र का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत डोमिनिका के साथ साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और दक्षिण दक्षिण सहयोग पर आधारित अपनी मैत्री को और प्रगाढ़ कर रहा है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, दक्षिण कर्नाटक के भीतरी इलाकों, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में भी भारी बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ओडिशा, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्यों में बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान की संभावना है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू की स्थिति रह सकती है। मध्य प्रदेश में इंदौर और उज्जैन भीषण गर्मी की चपेट में है। कल खंडवा और नौगांव में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया, जबकि प्रदेश के 15 शहरों में पारा 43 डिग्री या उससे अधिक रहा। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग के अनुसार आज रतलाम, खरगोन और खंडवा में तेज लू चलने की संभावना है और तापमान 44 डिग्री के पार जा सकता है। इसके अलावा इंदौर, उज्जैन, सागर, रीवा, छतरपुर समेत प्रदेश के दर्जन भर से ज्यादा जिलों में लू का असर बना रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को दोपहर 12 से 3 बजे के बीच जरूरी काम होने पर ही घर से निकलने की सलाह दी है। साथ ही दिन भर पर्याप्त पानी पीते रहने और शरीर को हाइड्रेट रखने की अपील भी की है। मौसम विभाग के मुताबिक 19 मई तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। आज कहीं भी बारिश का अलर्ट नहीं है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: अभी प्राप्त समाचार के अनुसार रेल मंत्रालय ने त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के 2 पिछले डिब्बों में लगी आग की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मंत्रालय ने बताया कि डिब्बे की सुरक्षा प्रणाली के कारण ट्रेन स्वतः रुक गई। और अब खेल खबरें। IPL क्रिकेट में आज धर्मशाला में दोपहर बाद 3:30 से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इधर दिल्ली में शाम 7:30 से राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार, प्रदूषण रहित तकनीक अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर वार्ता करेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए 17

समझौतों पर हस्ताक्षर हुए और भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापारिक जहाजों पर हमलों की निंदा करते हुए उन्हें अस्वीकार्य बताया। कहा, जहाजों की बेरोक टोक आवाजाही में बाधा उचित नहीं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

जय भारती कार्यक्रम सुनने वाले सभी फौजी भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके साथ है कार्यक्रम की हम सफर अर्चना। हुआ जाता है कैसे मुल्क पर कुर्बान, लिख देंगे हम अपने खून से घर घर में हिंदुस्तान लिख देंगे। आइए सबसे पहला गाना हम सुनते हैं फिल्म परदेसी बाबू से। आवाज है आनंद राज आनंद की। इसके गीतकार और संगीतकार हैं आनंद राज आनंद।

मेरी सांसें मेरा लहू मेरे बदन में रहा, मेरा मुल्क हर वक्त मेरे जहन में रहा। मैं मरा तो अंदाज भी इतना गजब था कि तब भी ये तिरंगा मेरे कफन में रहा। तो आइए अगला गीत सुनते हैं, फिल्म रिफ्यूजी से सोनू निगम अलका याग्निक की आवाज़ों में। गीतकार हैं जावेद अख्तर और संगीतकार हैं अन्नू मलिक।

करता हूँ भारत माता से गुजारिश कि तेरी भक्ति के सिवा कोई बंदगी ना मिले, हर जन्म मिले हिंदुस्तान की पावन धरा पर या फिर कभी जिंदगी ना मिले। आइए अगला गीत सुनते हैं फिल्म सरफरोश से सोनू निगम रूप कुमार राठौर की आवाज़ों में। गीतकार हैं समीर इंदिवर इसरार अंसारी निदा फाजली और संगीतकार हैं जतिन ललित।

कुछ नशा इस तिरंगे की यान का है, कुछ नशा इस मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये जो हिंदुस्तान की शान का है। आइए अगला गीत सुनते हैं फिल्म केसरी से, बी प्राक की आवाज़ में। गीत के बोल लिखे हैं मनोज मुंतशिर ने और संगीत से सजाया है आरको ने।

फौजी भाइयों, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। अपना ख्याल रखिए, आप बहुत महत्वपूर्ण हैं राष्ट्र के लिए, हम सब के लिए। इसके साथ ही फिर मिलने के वादे के साथ मैं अर्चना आज की इस कड़ी से लेती हूँ विदा।

0: रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल का जनसंवाद अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज उन्होंने हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र स्थित वार्ड 31 और 32 के विभिन्न इलाकों का पैदल भ्रमण किया। मौके पर उन्होंने स्थानीय जनता से सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना और उनके समाधान के लिए सकारात्मक पहल करने का भरोसा दिलाया। भाजपा नेता अनिल टाइगर हत्याकांड का मुख्य सरगना अभिषेक कुमार सिन्हा उर्फ सूरज सिन्हा को रांची पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उस पर 20 लाख रुपए सुपारी के लिए कटहल मोड़ के छड़ सीमेंट व्यवसायी राधेश्याम साहू पर जानलेवा हमला करने का षड्यंत्र रचने का भी आरोप है।
1: अनिल टाइगर का जो केस हुआ था जिसमें उनकी हत्या कर दी गई थी, तो उसमें जो मेन आदमी था वह सूरज सिन्हा था। जमीन संबंधी विवाद था, उस विवाद में सूरज सिन्हा को कॉन्ट्रैक्चुअल किलिंग के लिए एक सुपारी मिली थी जिसमें उसे अनिल टाइगर की हत्या करनी थी। उसे टोटल 5 लाख रुपए दिए गए थे इस काम को करने के लिए।
0: रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री को फेम इंडिया मैगजीन और एशिया पोस्ट द्वारा जारी देश के सर्वश्रेष्ठ जिला अधिकारियों को सूची में स्थान मिला है। देश भर के करीब 800 जिलों के अधिकारियों के कार्यों के अध्ययन के बाद तैयार इस सूची में उन्हें बेहतर प्रशासन, जन सरोकार और विकास कार्यों के आधार पर चुना गया है। चयन प्रक्रिया में प्रशासनिक क्षमता, प्रभावी गवर्नेंस, नवाचार, संकट प्रबंधन और जन भागीदारी जैसे मानकों को शामिल किया गया। इस सूची में देश भर के 100 जिलाधिकारियों को स्थान मिला है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। साहिबगंज जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में गुम हुए मोबाइल के पुनर्वितरण को लेकर साहिबगंज के सिद्धो कानो सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सामुदायिक पुलिसिंग के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में मोबाइल धारकों के बीच मोबाइल का वितरण कर जन विश्वास को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह कार्यक्रम उपायुक्त दीपक दुबे, पुलिस अधीक्षक अमित कुमार सिंह और वन प्रमंडल पदाधिकारी प्रबल गर्ग की देखरेख में आयोजित किया जा रहा है।
2: 300 के आसपास मोबाइल फोन जो स्टोलेन अथवा लॉस्ट है उनको रिकवर करने में सफल रहा है। जो आप सूचना है वो अपन माध्यम से अगर पुलिस विभाग को देते हैं तो एक तंत्र जो है उपलब्ध है जिसके माध्यम से हम सभी प्रकार के टेक्निकल एनालिसिस करते हुए उसको ट्रेस भी करते हैं और उसको सम्मान नागरिकों को वापस भी करते हैं।
0: जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने वन विभाग के जिला वन पदाधिकारी सबा आलम अंसारी के साथ मानगो के सटे दलमा पहाड़ की तलहटी के विभिन्न क्षेत्रों का संयुक्त निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान क्षेत्र को पर्यावरण और पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की योजना पर सहमति बनी। प्रस्ताव के तहत चंद्रावती नगर, गोपाल नगर, कुमरुम बस्ती और पारडी के आसपास पार्क, तालाब, पाथवे और बच्चों के लिए चिल्ड्रन पार्क विकसित किए जाएंगे। इन क्षेत्रों को इको टूरिज्म केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है। विधायक ने कहा कि दलमा की तलहटी प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है और यहां पर्यावरण अनुकूल विकास कार्य किए जाएंगे। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। इधर राज्य के स्वास्थ्य विभाग की ओर से नागरिकों को नियमित व्यायाम करने, फल और सब्जियों का अधिक सेवन करने तथा वजन नियंत्रित रखने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य संबंधी जानकारी या शिकायत के लिए 24 घंटे संचालित हेल्पलाइन नंबर 104 पर संपर्क करने की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

एक फूल दो माली का ये गीत अब आप सुनेंगे मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। गीतकार हैं प्रेम धवन और संगीतकार हैं रवि।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: भारत पड़े भारतीय सेना।
1: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे पॉडकास्ट सीरीज हमारे दिल्ली केंद्र से, थोड़ी ही देर में, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं छत्तीसगढ़ में चिकित्सा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले श्री रामचंद्र गोडबोले और श्रीमती सुनीता गोडबोले के साथ हमारी खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं नरेश मिश्रा।
2: छत्तीसगढ़ बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा के घने जंगल और दुर्गम क्षेत्र के कई गांव आज भी ऐसे हैं जहां बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं। वहां एक दंपत्ति बीते 3 दशक से निस्वार्थ भाव से स्वास्थ्य सेवा की अलख जगा रहा है। ये कहानी है डॉक्टर रामचंद्र त्रयंबक गोडबोले और सुनीता गोडबोले की। उनके इस सराहनीय कार्य को देखते हुए सरकार ने इस बार पद्मश्री सम्मान के लिए उन्हें चुना है। उनके इस प्रेरक सफर की कहानी आइए जानते हैं उनकी ही जुबानी। सबसे पहले तो रामचंद्र सर और सुनीता मैडम, मैं आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आप दोनों को बहुत बहुत बधाई पद्मश्री सम्मान के लिए चुने जाने के लिए।
3: धन्यवाद।
2: रामचंद्र सर, आप ये बताइए कि आप बस्तर कब पहुंचे और कैसे आपके मन में ये प्रेरणा आई कि आपको बस्तर के क्षेत्र में या आदिवासी क्षेत्र में काम करना है?
4: मैं रहने वाला सतारा महाराष्ट्र का हूँ और जब मैं BAMS डॉक्टर कोर्स के लिए जब पढ़ाई कर रहा था तो एक डॉक्टर अल्बर्ट श्वाइटजर करके एक डॉक्टर था, यूरोप में उसका जन्म हुआ लेकिन वो अफ्रीका में चला गया और वहां से आदिवासियों के लिए उन्होंने जीवन भर काम किया। तो डॉक्टर अल्बर्ट श्वाइटजर की ये जो कहानी है वो मैं कहीं किसी समाचार पत्र में पढ़ा था। उसका जीवन ही उसके आत्मकथन है, वो मुझे अंग्रेजी में एक छोटा सा किताब मिला, वो मैंने पढ़ने के बाद वो मेरी थोड़ी सी प्रेरणा हुई। उसके बाद मैं डॉक्टर प्रकाश आमटे जो गढ़चिरौली में काम करते हैं वहाँ कुछ साल के लिए काम में जाने का मैंने विचार किया, वहाँ मिला मैं उनको लेकिन दुर्भाग्यवश वहाँ लेप्रसी का कोई मैं कोर्स नहीं किया था इसलिए मैं ज्वाइन नहीं हो पाया। लेकिन बाद में ये एक वनवासी कल्याण आश्रम करके एक संस्था है, उन लोगों को मालूम हुआ कि ये आदमी कहीं तो आदिवासी क्षेत्र में जाके कुछ काम करने का सोच रहा है, तो वो मेरे से संपर्क उन्होंने किया और उन्होंने मुझे ये किया कि आप नासिक और डांग डिस्ट्रिक्ट जो गुजरात का है उस बॉर्डर में आप काम कर सकते हो। तो वहां मैंने 4 साल भिल्ल आदिवासियों के बीच में काम किया और वो उनका जो जीवन है, उनकी जीवन की कठिनाई, स्वास्थ्य की उनकी असुविधा इतनी सारी, ये सब देखने के बाद मेरे अंदर से प्रेरणा जागृत हो गई कि ये हम काम कर सकते हैं। और वही से मेरा धीरे धीरे ऐसा लगता है कि मुझे मन की तैयारी हो गई कि मैं लंबे समय के लिए आदिवासी क्षेत्र में काम करूंगा। फिर हमारे संस्थाओं ने हमको बताया कि भाई महाराष्ट्र के बाहर ज्यादा समस्या है, वहां जाके काम करना चाहिए। तो फिर मेरे मन में यह हो गया कि मैं महाराष्ट्र के बाहर जाने के लिए तैयार हूँ। मैं जाके अधिकारियों को बताया, 89 की बात है ये। हाँ, तो फिर 90 में हमारा शादी हो गई और 10 दिन के अंदर हम दोनों बस्तर में बारसूर में आ गए हम लोग।
2: सुनीता जी, आमतौर पर ऐसा होता है कि शादी के बाद लोग कुछ समय खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं और ये बड़ी रोचक बात है कि डॉक्टर रामचंद्र जो है उनका कमिटमेंट अलग था, उससे पहले से आपने एक कमिटमेंट कर रखा था अपने जीवन को लेकर के। आपके जीवन में ये चुनाव कैसे तय हुआ?
3: हाँ, इसका 2 प्रमुखता से मुझे लगता है कारण है ये विचार मेरे मन में आने का, क्योंकि मेरे घर में जो वातावरण है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए मेरा मामा था जो ज्यादा रूप से काम करता था और बाकी भी घर के सदस्य कोई कुछ ना कुछ छोटा बहुत थोड़ा बहुत काम करते थे, तो उसके कारण और पुणे का एक जो सांस्कृतिक और सामाजिक सब वातावरण है उसका भी असर हमारे सभी के ऊपर पड़ता है, जो संवेदनशील है उनके ऊपर तो होता ही है। तो बहुत सारे जो सामाजिक सुधारों का इतिहास है पुणे शहर को, उसके यहाँ जो काम करने वाले समाज सुधारक थे उनके कारण, वो भी हम पाठ्य पुस्तकों में पढ़ ही रहे थे जब पढ़ाई चल रही थी शालेय जीवन में। फिर महाविद्यालय जीवन में मेरा संपर्क अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र संगठन से संपर्क आया, उसके कारण मुझे अपने भारत में जो भी इस प्रकार से समाज है अलग अलग और उनकी अवस्था क्या है, हम किस प्रकार से जीना जी रहे हैं और उनको कितने छोटी छोटी बातों का भी सामना करना पड़ रहा है रोज के जीवन में, ये सब हमको हमारे जो ज्येष्ठ कार्यकर्ता प्राध्यापक कार्यकर्ता भी हमारे साथ काम करते हैं विद्यार्थी संगठन में, तो वो सब बताते थे। और वो हमेशा यह आह्वान करते थे, हमें एक छात्र के रूप में ये सभी समस्याओं को जानना चाहिए। और हमारे साथ साथ कुछ छात्र भी ऐसे थे कि जो मास्टर डिग्री कर रहे थे लेकिन पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में विद्यार्थी परिषद का काम करते थे, तो उनका भी वो सब देख के मेरे मन में विचार आया। बहुत लोगों को फिर पता चला कि भाई इसके मन में ऐसा कुछ काम करने का है। तो वैसे ही हमारे जो मैं जहाँ रहती हूँ, मेरा मायका का घर है, वहां ही एक वनवासी कल्याण आश्रम की फाउंडर मेंबर रहती थी नंदाताई करके, तो उन्होंने मुझे बताया कि अरे तुम्हें तो गांव में जाके कुछ काम करना है तो तुम्हें फिर आओ हमारे साथ, अपना जो संगठन का काम है वो ऐसे ही वनवासी क्षेत्र में है, आदिवासी क्षेत्र में काम है। फिर वो संगठन के पदाधिकारियों से बातचीत हुई, फिर उन्होंने मुझे कुछ जगह भेजा, नासिक जिले में भेजा, रायगढ़ जिले में भेजा, ठाणे जिले में भेजा, जहां जहां मतलब काम चलता है अभी भी वहां पर भेजा। और वहां के कार्यकर्ताओं से मैंने बातचीत किया, कुछ गांवों में घूमी, तब जाके मुझे ये मेरा विचार पक्का हो गया कि नहीं मैं ऐसा काम कर सकती हूँ।
2: डॉक्टर रामचंद्र, ये बताइए कि जब आप बस्तर पहुंचे तो आपने बारसूर में रहना शुरू किया और फिर यहां से गतिविधियां शुरू की, कितना चैलेंजिंग था आप लोगों के लिए और कैसे आप लोगों ने इन चैलेंज का सामना किया?
4: अबुझमाड़ में जाना आना तो काफी कठिन ही था उस समय, फिर भी हमारे साथ कुछ माड़िया आदिवासी लड़कियां थी, तो वो 8-10 लड़कियां पहले से रहती थी, उनके साथ ही हम लोग जंगल जाते थे, उनके साथ ही अबुझमाड़ में गए थे। और इतना दूर से पेशेंट आते हैं तो हमको कुछ ना कुछ अपने प्रिंसिपल्स हमको पक्के करने हैं, बिना नाम लिखने के पहले ही पेशेंट को ट्रीटमेंट चालू कर देना, पैसा नहीं पूछना, और उसको जहाँ ठीक हो जाए वहां तक ले जाके उसको ठीक करवा के लाना। हम अबुझमाड़ में इतना दूर मेडिसिन के लिए नहीं जा सकते थे, ले जाके पेशेंट हमारे यहाँ आते थे, तो उनका आना ही इतना कठिन था। ये सब देखने के बाद मेरे अंदर इतनी प्रेरणा जागृत हो गई, आपको आश्चर्य लगेगा कि 20 किलोमीटर गिदम है, मैं 4-4 महीना में गिदम नहीं आता था, मैं बारसूर में बैठा रहता था, क्योंकि सेरेब्रल मलेरिया की केस है, निमोनिया की केस है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस का बहुत डेंजरस केस है, ऐसी केसेस जब आएगी उस समय आपको उसके साथ रहना ही है। अगर मैं यहाँ ट्रीट नहीं कर सकता हूँ, ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है, तो महारानी अस्पताल जगदलपुर में ट्रांसफर करना है, तो एम्बुलेंस, ड्राइवर, डीजल हम पक्का तैयार करके रखते थे। इतना ही नहीं, इतवार को जो पेशेंट रुकते थे वो पेशेंट के लिए सवेरे जो भी ट्रीटमेंट करना है सब करना है, तो एक ऐसा लगता है कि इतवार को मैं थोड़ा जंगल घूमने के लिए जाऊंगा, इंद्रावती घूमने के लिए जाऊंगा, कहीं भी जाऊंगा, तो मैं घूमने के लिए जाऊंगा तो भी मैं आश्रम में बोल के जाता था कि मैं इस इलाके में हूँ, अगर जंगल का पेशेंट आए तो तुरंत मुझे बुलाना है। कठिनाई भाषा के प्रश्न था, लेकिन हमारे साथ माड़िया महिलाएं थी इसलिए वो भाषा का प्रश्न हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं आया।
2: मैडम आप बताइए कि महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर बड़ा हमेशा प्रश्न रहता है, शहरी समाज में भी है, फिर आप तो अबुझमाड़ और बस्तर के दूरस्थ क्षेत्रों में काम कर रही हैं, वहाँ आपने क्या देखा और वहाँ के समाज की महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर किस तरह की चुनौतियां हैं?
3: वो क्षेत्र ही पूरा बुनियादी सुविधाओं से वंचित था, इसीलिए किसी को भी आना और वो जैसे डिलीवरी के लिए आना है या कोई बच्चा बीमार है या बार बार, अभी तो हम इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की बात करते हैं कि भाई अस्पताल में डिलीवरी हो सभी महिलाओं, लेकिन उस समय ये सब संभव ही नहीं था क्योंकि उन तक वो पहुंचती ही नहीं थी, उनको वो समझ में भी नहीं आती थी। अच्छा, वो डिलीवरी की अगर कोई महिला है, मतलब प्रेग्नेंट गर्भवती महिला है, तो उसको 6-7 घंटा चला के लाना, मतलब वो खुद पैदल चल के नहीं आएगी, यानी उसको तखत खटिया पर डाल के वैसा सब लाना है, तो उसके लिए बाकी लोगों का जुगाड़ करना पड़ता है। फिर अगर वो बाकी लोगों का जुगाड़ करना है तो उनको भी कुछ देना पड़ता है, कभी कभी कम से कम दाल चावल दे दो, तब जाके लोग तैयार होते हैं। तो ये सभी दिक्कतें हमको धीरे धीरे समझ में आई, तो हम लोग महिला चेतना शिविर जो लेते थे, सब जा जाके बता के, हमारी दो दो जो बहनें थी उनको हमने प्रशिक्षित करके ऐसे हम 8 सब सेंटर चलाए, और उसके आजू बाजू के 15-16 गांवों में ये बहनें जाती थी, वहां पर ये सभी बातें बताती थी। उसके कारण ये बात हुआ कि जल्द से जल्द पेशेंट को लाना है, बारसूर ले जाना है और ठीक ठाक करना है।
2: डॉक्टर रामचंद, आपको कैसा अनुभव रहा अबुझमाड़ क्षेत्र में जब आप गए, तो सबसे बड़ा चैलेंज जागरूकता ही था, सबसे बड़ी चुनौती लोगों को जागरूक करना ही था स्वास्थ्य के लिए?
4: जागरूक करना ये सबसे बड़ी बात है, वो कि हमको जो बीमारी आई है वो बीमारी ठीक हो सकती है, ये इनके दिमाग में नहीं है, तो बीमारी है तो हम शरीर है तो बीमारी रहती ही जाएगी, ये कौन सा बड़ी बात है, अरे लेकिन ये बीमारी तो ठीक हो सकती है। तो एक पेशेंट को लाए थे तो बोला कि 6 महीना हो गया, 6 महीने से बीमार है, तो बीमारी अबुझमाड़ से था और बारिश के दिनों में वो ला रहे थे, तो गुडरा करके एक नदी है, वो नदी पार करके फिर इंद्रावती नदी पार करके उस पेशेंट को लाया। तो मैं बोला भैया मैं इसमें ही तो इतना बड़ा प्रॉब्लम था कि ये दोनों नदियों में तो आदमी बह जाता है, इसमें बच करके यहाँ आया है, और उसको डायबिटीज विद ट्यूबरकुलोसिस विद जॉन्डिस, अच्छा 3 बीमारी थी उसको, इस पेशेंट को। तो मैंने देखा तो मैं बोला अरे भैया ये तो बहुत ज्यादा है, सीरियस केस है ये, इसको कैसा रखेंगे। तो वो फिर पेशेंट को हम लोगों ने जगदलपुर ट्रांसफर किया, पेशेंट ठीक होके आ गया। अबूझमाड़ में इसका हम लोगों ने अभी भी दर्शन कर रहे हैं, अभी भी कुपोषण का कार्यक्रम हम लोग ले रहे हैं ना। तो बच्चों को 10 दिन का चिक्की देने के बाद, तो 3 दिन के बाद जाते तो पूरी चिक्की खत्म हो गई। कौन खाया? तो बोला हमारा एक साला है, दूर से आया, अबूझमाड़ से वो आया है, वो देखा और वो 4-5 के वही खा लिया। अरे ऐसा मत करो, बच्चों को बीमारी से मुक्त करने के लिए सब अभियान चल रहा है और वो चिक्की अब दूसरे लोग खा रहे हैं। अबूझमाड़ में आपको काम करना है तो इस समस्या से आपको जूझना पड़ेगा कि कोई भी चीज गंभीरता से नहीं लेते, उनको गंभीरता लानी पड़ेगी, चेतना जागृति, उसके बाद ये सारे कार्यक्रम। तो अबूझमाड़ में अपने मेडिकल सर्विसेज पहुंचाना आज भी बहुत बड़ा चैलेंज है।
2: जी जी, आपने देखा महिलाएं काफी ज्यादा एनेमिक होती हैं, खासतौर पर आदिवासी समाज में सिकल सेल की भी समस्या है, इसको आप लोगों ने कैसे एड्रेस किया था?
3: वही बात मैं फिर से बताऊंगी कि जो अभी भी पहुंच विहीन गांव है, आपको रोड साइड के गांव में जहां तक ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन की सब सुविधाएं अभी पहुंच रही है, वहां की महिलाएं जागरूक हो रही है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कर रही है, मितानिन जो बता रही है उसको समझ रही है, आगे अपने जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उनका भी वो सुनती है, कुछ कुछ टीकाकरण है वो सब करती है, लेकिन अंदर में अभी भी दुनिया का ही प्रभाव है। और वो अगर आते भी है तो भी बूढ़े लोग वहां पर है। अभी जैसे हमारा नारायणपुर रोड पर जो बोतली घोटिया हरा कोडेर वगैरह गांव है वहां पर ये चलता है उनके जो, क्योंकि वो तो बस्तर जिला पड़ता है वहां से, लेकिन फिर भी वहां से नर्स और ये लोग आते हैं, वेलनेस सेंटर करके आजकल जो कल्पना सरकार ने ये की है, तो उनके पास गोली वगैरह मांगने, लेकिन वही पुराने ही, मतलब जो बुजुर्ग, पुराने नहीं बुजुर्ग जो है वही बार बार आते हैं। मेरे बच्चे को वहां पर समय पर ले जाना चाहिए और ये करना चाहिए, ये बहुत ही कम होता है। बस कुछ गांवों में हमारे कारण जो है वो ये हुआ है, चलो भाई कम से कम मलेरिया जो जांच है वो तो करो। आपको लगता है ना कि बच्चे का मलेरिया, उसको कैसा हो रहा है, उनको समझाया हमने और वो वेलनेस सेंटर में आके कम से कम वहां पर ये करते हैं, नहीं तो पहले तो वो उसके लिए भी दुनिया के पास ही जाते थे।
2: डॉक्टर रामचंद, आप लोग इसके अलावा कुपोषण एनीमिया के लिए भी एक अभियान चला रहे हैं इस क्षेत्र में?
4: हाँ, हम लोगों ने माल न्यूट्रिशन एनीमिया एलिवेशन स्कीम, मास नाम से अलग स्कीम बनाई है। उसमें हम लोग जो जंगल का क्षेत्र एकदम अबूझमाड़ या अबूझमाड़ में 5-6 गांव में हमने चालू किया और बाकी क्षेत्र में भी है, जैसे इंद्रावती किनारे का सब इलाका है, वहाँ हम लोग एक गांव के 20 बच्चों को चुनते हैं जिनका हीमोग्लोबिन 8 ग्राम परसेंटेज के नीचे है, उन बच्चों को हम चुनते हैं, उनकी पूरी जांच बाल रोग तज्ञ से उसकी पूरी जांच करवा लेते हैं, उसके बाद उसके अदर जो डिसीजेस है वो सब कंट्रोल करने के बाद फिर कृमि का गोली, फिर मलेरिया की ट्रीटमेंट, मलेरिया प्रतिबंधन जो है वो, उसके बाद फलीदाना गुड़ और काला तिल इसका चिक्की और एक चिवड़ा बनाते हैं देते हैं, उसके बाद हम लोग दाल तेल और बाकी मिरी और हल्दी ये सब कुछ, तो ये सारा उनको हम देते हैं। तो मध्यान्ह भोजन उनको करना है, उनका घर का चावल और हमारा दाल और तेल दिया वाला उसका उनको रोज खिलाना है बच्चों को, तो ये कार्यक्रम चलता है। सब्जी बीज भी देते हैं कि सब्जी उगा के वो अपने रोज का जो भोजन है उसमें सब्जी पन्ना डाले, हरे पन्ने का सब्जी डाले, मच्छरदानी लगाते हैं कि नहीं ये भी देखते हैं, क्योंकि मलेरिया के कारण भी खून टूट रहा है। तो उस गांव में भी एक मॉनिटर करने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त करते हैं और हम इतना तक बोलते हैं कि रात को 10 बजे जाके देखो कि वो बच्चा मच्छरदानी में सोया है कि नहीं सोया है। हम लोगों ने अभी तक 24-25 गांवों में ये कार्यक्रम चलाया, 400 के ऊपर बच्चों को हम लोगों ने इसमें ठीक करवाया है। एक समय हम लोग 1-2 गांव लेते हैं, इस बार हम लोगों ने 4 गांव लिए हैं, माने 80 बच्चों के लिए हम लोग कार्यक्रम चला रहे हैं हम लोग। तो ये हम लोग प्रोग्राम अभी लगातार चल रहा है, 2021 से हम लोग कुपोषण के ऊपर लगातार काम कर रहे हैं और इसका मैंने विचार बदलो तो नसीब बदलेगा ऐसा बोलते हैं। तो स्कूल में जाके इसी सारे अनुभव हम स्कूल में जाके बच्चों को सुनाते हैं।
2: तो ये थे सुनीता गोड़बोले जी और डॉक्टर रामचंद्र, जिन्होंने अपना पूरा जीवन निस्वार्थ भाव के आदिम समुदाय की सेवा में बिताया है और उनकी इस प्रेरक बातचीत के जरिए आपने जाना कि हमारी शिक्षा का, हमारी जो जीवन शैली है उसके क्या दायित्व हैं परिवार और समाज के लिए।
1: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी छत्तीसगढ़ में चिकित्सा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले श्री रामचंद गोड़बोले और श्रीमती सुनीता गोड़बोले के साथ हमारी खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे नरेश मिश्र।

कार्यक्रम रांची मेलोडीज में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके साथ है रेडियो सखी अर्चना। आइए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कभी कभी लफ्ज जरूरी नहीं होते, एक मुस्कान, एक नज़र और हो गया इश्क, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। ये गाना उस प्यार का है जो कहा नहीं जाता, बस देखा जाता है। तो आइए अगला पहला गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म CID से, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त ने। शब्द रचना है जान निसार अख्तर की और धुन बनाई है OP नैयर ने।

पुराने जमाने की मोहब्बत का सबसे प्यारा लम्हा ये गीत नहीं, एक फिल्म का सबसे रोमांटिक पल है। तो चलिए दोबारा जीते हैं इस पल को फिल्म श्री 420 के गीत से, जिसे लिखा है शैलेंद्र ने, संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने, आवाजें हैं मन्ना डे और लता मंगेशकर की।

जिस दौर में प्यार इजहार से ज्यादा अदब में था, वहीं से आता है ये गीत जिसने मोहब्बत को शायरी बना दिया। चांदनी रात और किसी अपने की याद, ये गीत आपको वही ले जाएगा। अब हमारा अगला गीत है फिल्म चौदहवीं का चांद से, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने, जिसके बोल लिखे हैं शकील बदायूनी ने और संगीतबद्ध किया है रवि ने।

जब दिल कहे रुको थोड़ी देर और जब अल्फाज ना मिले तब जज्बात कहे कि तुम पास रहो, तब एक ही गीत दिल की बात बन जाता है। आइए सुनते हैं वो नज़्म जो किसी की जुदाई को रुक जाने की गुजारिश है। मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में अब सुनते हैं फिल्म हम दोनों से, जिसके संगीतकार हैं जयदेव और गीतकार हैं साहिर लुधियानवी।

बारिश भिंगेलर की और किशोर कुमार की नटखट आवाज़, इससे ज़्यादा मज़ेदार कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है। ये गाना नहीं, एक फिल्मी शरारत है जो आज भी उतना ही ताज़ा है जितना पहली बार था। तो आइए सुनते हैं फिल्म चलती का नाम गाड़ी से ये गीत, जिसे गाया है किशोर कुमार ने, गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं एस डी बर्मन।

प्यार छुपाने की नहीं जताने की चीज है, और अनारकली ने ये बात सदियों पहले कह दी थी। अगर आज भी किसी को बिना डरे इजहार करना हो तो बस ये गीत गुनगुना दीजिए। तो श्रोताओं, आप समझ ही गए होंगे कि हमारा अगला गीत फिल्म मुगले आजम से है। इस गीत में सुमधुर आवाज दी है लता मंगेशकर ने, लिखा है शकील बदायूनी ने, और संगीत से सजाया है नौशाद ने।

कुछ गाने सिर्फ सुनने के लिए नहीं होते, वो महसूस करने के लिए होते हैं। लग जा गले वैसा ही एक गीत है जिसमें बिछड़ने से पहले मिलने की तमन्ना है। सुनिए वो एहसास जो शब्दों से परे हैं। फिल्म वो कौन थी का ये गीत हम सुनेंगे लता मंगेशकर की आवाज़ में, जिसकी शब्द रचना की है राजा मेहदी अली खान ने और संगीत से सजाया है मदन मोहन ने।

आज के कार्यक्रम की यह अंतिम प्रस्तुति है रांची मेलोडीज कार्यक्रम लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए रेडियो सखी अर्चना को देव विदा।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: की 12वीं की परीक्षा में ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली से मूल्यांकन में पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ी है। 12वीं परीक्षा के परिणामों पर आज नई दिल्ली में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार ने बताया कि विद्यार्थियों ने मार्किंग और उत्तीर्णता प्रतिशत में मामूली गिरावट पर चिंता जताई है। जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने वन विभाग के जिला वन पदाधिकारी सबा आलम अंसारी के साथ मानगो से सटे दलमा पहाड़ की तलहटी के विभिन्न क्षेत्रों का संयुक्त निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान क्षेत्र को पर्यावरण और पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की योजना पर सहमति बनी। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री को फेम इंडिया मैगजीन और एशिया पोस्ट द्वारा जारी देश के सर्वश्रेष्ठ जिला अधिकारियों की सूची में स्थान मिला है। देश भर के करीब 800 जिलों के अधिकारियों के कार्यों के अध्ययन के बाद तैयार इस सूची में उन्हें बेहतर प्रशासन, जन सरोकार और विकास कार्यों के आधार पर चुना गया है। हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल का जनसंवाद अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज उन्होंने हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र स्थित वार्ड 31 और 32 के विभिन्न इलाकों को पैदल भ्रमण किया। मौके पर उन्होंने स्थानीय जनता से सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना और उनके समाधान के लिए सकारात्मक पहल करने का भरोसा दिलाया। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर कानरा मुख्य मार्ग स्थित BSNL कार्यालय के समीप कल रात एक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल बाइक सवार युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। आदित्यपुर थाने की गश्ती पुलिस ने उसे देर रात घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया था। भाजपा नेता अनिल टाइगर हत्याकांड का मुख्य सरगना अभिषेक कुमार सिन्हा उर्फ सूरज सिन्हा को रांची पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उस पर रांची के कटहल मोड़ निवासी छड़ सीमेंट व्यवसायी राधेश्याम साहू पर जानलेवा हमला करने का षड्यंत्र रचने का भी आरोप है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार,
1: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे बच्चों के लिए कार्यक्रम बाल सभा।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: गर्मी के फल न्यारे न्यारे, मीठे रंग रंगीले प्यारे। फलों का राजा कहलाता आम, मम्मी पापा भैया दीदी सभी करते उसे सलाम। खरबूजा तरबूज भी है खूब भाते, गर्मी सारी दूर भगाते। आड़ू चीकू लीची गोल मटोल, खाओ मिलकर खूब तुम, क्योंकि होते गर्मी के फल अनमोल।
1: वाह दीदी वाह, ये तो बहुत अच्छी कविता आपने सुनाई, और ये कविता बच्चों को भी अच्छी लगी होगी, क्योंकि गर्मी के फल न्यारे न्यारे, रंग रंगीले, प्यारे प्यारे होते हैं, और गर्मी का मौसम आ चुका है बच्चों, इसलिए सूरज दादा आसमान में तेज चमकने लगे हैं आजकल।
0: हाँ भैया, सूरज की तेज चमकती किरणें हमारे शरीर को गर्मी तो प्रदान करती है, पर आवश्यकता से अधिक गर्मी हमारे सेहत को नुकसान भी पहुंचाती है। यानी गर्मी के इस मौसम में हम यदि थोड़ी सी भी लापरवाही बरतें तो बीमार पड़ सकते हैं बच्चों।
1: ऐसे मौसम में हम सभी को चाहिए ठंडक, ताकत और ताश की। और ये सब हमें कहाँ से मिलता है बच्चों? हमें स्वादिष्ट रंग रंगीले और रसीले फलों से, जो कि इस मौसम में खूब मिलता है।
0: तो बच्चों चलिए जान लेते हैं गर्मी के फलों की पहचान और उनके फायदे के बारे में, फलों की रंग बिरंगी दुनिया की शेयर करके। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों फलों के राजा आम की। बताइए आप में से कितने बच्चों को आम खाना पसंद है? अरे ये क्या, सभी ने हाथ उठा दिए, मतलब सभी बच्चों को आम बहुत अच्छा लगता है ना?
1: हाँ बच्चों, पीला पीला, रसीला, गुद्देदार, मीठा मीठा आम किसे नहीं पसंद है। जानते हैं बच्चों, आम खाने से शरीर को खूब ऊर्जा मिलती है, साथ ही विटामिन ए और विटामिन सी भी मिलता है, जो कि आंखों और त्वचा के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है।
0: अब बात करते हैं बच्चों तरबूज की। बड़ा सा दिखने वाला हरा हरा तरबूज, काटो तो अंदर से दिखता लाल लाल, है ना ये कुदरत का कमाल। जानते हैं बच्चों, इसको खाने से गर्मी के इन दिनों में शरीर को ठंडक मिलती है और पानी की कमी शरीर में नहीं होती है।
1: इसी तरह बच्चों, खरबूजा भी गर्मियों का खास फल होता है। इसको खाने से ठंडक मिलती है, पाचन तंत्र सही रहता है और शरीर में जल की कमी नहीं होती है।
0: सब फल मिलकर हमें सिखाते, रोज हमें तुम खाओगे, ताकत सेहत ऊर्जा से हर कदम आगे बढ़ते जाओगे, हर कदम आगे बढ़ते जाओगे।
1: वाह, तो बच्चों फलों की बातें निराली लगी ना? और कुछ बच्चों को बाहर से खरीदा चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स या अन्य खाने की चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, पर बच्चों वो सब वस्तुएं खाने में भले ही स्वादिष्ट लगे पर सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदायक होती है।
0: फल जो होता है ना बच्चों, वो प्रकृति द्वारा दिया गया उपहार होता है, उससे हम लोगों को कभी हानि नहीं पहुंचती है, बल्कि शरीर को लाभ होता है। इसीलिए बाजार के पैकेट बंद चीजें, फास्ट फूड, जंक फूड इत्यादि जो होता है खाने से बचिए, और मम्मी पापा से बोलकर फल खरीदवा कर ही खाइए।
1: आप

0: को तो लीची बहुत अच्छी लगती है ना बच्चों? सचमुच सफेद गुदे वाली छोटी सी लीची खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है बच्चों। इसमें भी विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं जो शरीर के लिए सेहतमंद होते हैं।
1: इसी तरह पपीता, ककड़ी, खीरा इत्यादि भी जरूर खाइए बच्चों। पपीता पेट को स्वस्थ रखता है, वही खीरा ककड़ी शरीर में पानी की कमी को दूर करता है।
0: हाँ बच्चों, रोजाना एक फल जरूर खाइए, परंतु एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि खाने से पहले फल को खूब अच्छी तरह से धो लीजिए और बहुत समय पहले से कटे फल भी नहीं खाने चाहिए, ताजा फल ही खाएं।
1: फल खाएंगे शरीर स्वस्थ रहेगा, तभी रहेंगे आप खेल में चैंपियन और पढ़ाई में भी चैंपियन।
0: तो बच्चों ये तो थी फलों की बात, और अब आप लोगों की गर्मियों की छुट्टी भी हो गई है ना, तो इन छुट्टियों में कुछ खास चीज बनाएं तो कैसा रहेगा बच्चों?
1: क्या खास चीज भैया, बच्चों के साथ साथ हमें भी तो बताइए कि इस छुट्टी में बच्चों को आप क्या बताने वाले हैं।
0: दीदी दरअसल गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही हम सभी लोग कहीं घूमने की योजना बनाने लगते हैं, या बच्चे लोग पढ़ाई से ज़्यादा खेल कूद पर ध्यान देने लगते हैं, लेकिन हम लोग कभी ये नहीं सोचते कि हम अपने नन्हे पंखों वाले दोस्त यानी प्यारी प्यारी सुंदर सी चिड़ियों के लिए भी कुछ खास कर सकते हैं।
1: आपका मतलब मैं समझ गई भैया कि आप इस गर्मी की छुट्टी में बच्चों से बर्ड हाउस बनाने की बात कह रहे हैं, और ये आज के परिदृश्य में बहुत जरूरी भी है बच्चों। तो आप अपने घर की बालकनी, छत या बगीचे में एक छोटा सा बर्ड हाउस बना कर लगा देंगे तो जब चिड़ियों की नजर उस पर जाएगी तो वो खुशी खुशी उसमें रहने के लिए आने लगेंगी।
0: हाँ बच्चों, सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस बर्ड हाउस के लिए आपको बहुत सामान की भी जरूरत नहीं है। इसके लिए तो आप पुराने डिब्बों, लकड़ी, नारियल के खोल इत्यादि बेकार पड़ी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं और एक सुंदर सा चिड़ियों का घर बना सकते हैं।
1: बर्ड हाउस बनाकर जब आप अपनी बालकनी या बगीचे में टांगेंगे तब साथ ही पास में थोड़ा दाना और एक कटोरी में पानी भी रख दीजिएगा। जब चिड़िया दाना चुगने आएगी तो अपनी प्यास भी बुझा सकेगी और बर्ड हाउस देखेगी तो आज नहीं तो कल, यानी धीरे धीरे एक न एक दिन रहने की शुरुआत भी उसमें कर देगी।
0: हाँ बच्चों, इसका एक और फायदा ये भी है कि चीची करती चिड़िया जब रहने आएगी तो वो दृश्य आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप अपने को प्रकृति के बेहद करीब पाएंगे और घर की वजह से चिड़ियों की संख्या भी बढ़ जाएगी।
1: बर्ड हाउस लगाते समय ध्यान रखें बच्चों कि इसे शांत सुरक्षित जगह पर ही लगाइए और बहुत ज्यादा ऊंचाई पर मत लगाइएगा।
0: बर्ड हाउस का ऊपरी हिस्सा अच्छी तरह से बंद करें ताकि बरसात में पानी उसके अंदर न जा पाए।
1: तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए कीजिए ये खास काम बच्चों, ताकि चिड़ियों को भी मिले आराम। और जब सुबह सुबह प्यारी प्यारी चिड़ियों की चहचहाहट से खुलेगी आपकी नींद, देखिएगा फिर मिलेगा चैन, सुकून, ताजगी और कितना ज्यादा आराम।
0: तो चलिए बच्चों, बातें तो और भी होती रहेंगी, कुछ मनोरंजन भी होना चाहिए, तो आइए सुनाते हैं एक प्यारा सा बाल गीत।

चूहा भी आया, बंदर भी आया, चुन चुन करती आई चिड़िया, चुन चुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया।

कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया, चुन चुन करती आई चिड़िया। चलते चलते मिलेगा भालू, हम बोलेंगे नाचो कालू। चलते चलते मिलेगा भालू, हम बोलेंगे नाचो कालू, नाचो कालू, नाचो कालू। मुन्ना ढोल बजाएगा, भालू नाच दिखाएगा। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया।

0: हाथी मुन्ने का हाथी मुन्ने का हाथी सीधा दिल्ली जाऊंगा तेरी दुल्हनिया लाऊंगा। मोर भी आया कौवा भी आया चूहा भी आया बंदर भी आया सुन सुन करती आई चिड़िया सुन सुन करती आई चिड़िया दाल का दाना लाई चिड़िया। मोर भी आया कौवा भी आया चूहा भी आया बंदर भी आया सुन सुन करती आई चिड़िया।
1: तो बच्चों कैसा लगा ये बाल गीत? अब तो आपके साथी भी तैयार हैं कुछ सुनाने के लिए, आइए सुना जाए उनसे।
2: क्या नाम है आपका?
3: सुप्रभात, मेरा नाम पावनी प्रियम है। मैं आज आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है मातृभूमि। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश झूमता है, नीचे चरण तले झुक नीत सिंधु झूमता है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही है, जगमग छटा निराली पग पग चहर रही है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। झरने अनेक झरते हैं जिसकी पहाड़ियों में, चिड़ियां चहक रही है वो मस्त झाड़ियों में। अमराइयां घनी है, कोयल पुकारती है, बहती मल्ले पवन है तन मन सवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मे जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनित गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई जग को दिया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।
2: वाह, बहुत अच्छी कविता। आपका क्या नाम है और आप क्या सुनाएंगी?
4: सुप्रभात, मेरा नाम स्तुति आर्या है और आज मैं आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सरहद के रखवाले रण में कूच कर जाएंगे, देशभक्ति जोश जज्बा दिलों में भर जाएंगे। महकते शब्दों की खुशबू हम जग में फैलाएंगे, सद्भावों की मोती लेकर जन मन में बस जाएंगे। हर्ष खुशी आनंद भर विजय तिरंगा लहराएंगे, भारत माँ के जयकारों में आकाश गूंज जाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद।
2: भारत माँ के जयकारों से आकाश गूंज जाएंगे, वाह बहुत अच्छी कविता। क्या नाम है आपका?
5: मेरा नाम आकांक्षा है, मैं आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है सूरज की किरणों से सीखो। सूरज की किरणों से सीखो तुम सदा समय पर उठना, चींटी से अब तुम सीखो मेहनत से आगे बढ़ना। इधर उधर मत फेंको कूड़ा, कूड़ेदान में ही डालो कूड़ा। सदा समय पर पाठ पढ़ो, दीन दुखी की मदद करो, कभी किसी से ना करो लड़ाई, मिलजुल कर रहने में ही भलाई। अपने बड़ों को शीश झुकाओ, कोयल जैसे मीठी बोल सुनाओ।
2: वाह, बच्चों ने तो बहुत अच्छी अच्छी कविता सुनाई दीदी, और अब कुछ जानकारी की बातें और होनी चाहिए। तो अगली जानकारी क्या है दीदी?
1: जानकारी के तहत हम बच्चों को बताएंगे भैया कि नन्ही मधुमक्खी के बड़े बड़े काम।
2: आपको बताते हैं कि कितने बड़े बड़े काम करती है ये छोटी सी मधुमक्खी, है ना?
1: बिल्कुल भैया। बच्चों सबसे पहले तो मधुमक्खियाँ हमें

0: स्वादिष्ट और ताकत देने वाला शहद देती हैं, जो कि मीठा तो होता ही है, साथ ही सर्दी जुकाम जैसे कई रोगों को ठीक करने का काम भी करता है।
1: हाँ बच्चों, इसके साथ ही मधुमक्खियों का इस धरती पर सबसे महत्वपूर्ण काम है फूलों का परागण करना। जब मधुमक्खियाँ फूलों से रस लेने के लिए उस पर बैठती हैं, तब फूलों के छोटे छोटे परागण उसके पैरों और शरीर पर चिपक जाते हैं।
0: ऐसे में जब मधुमक्खियाँ दूसरे फूल पर जाकर बैठती हैं, तो वही पराग कण वहाँ यानी दूसरे फूल पर पहुँच जाते हैं। इसका फायदा ये होता है बच्चों कि फूलों में फल और बीज बनने लगते हैं।
1: इस परागण के चलते ही कई नई किस्मों के पौधे भी तैयार होते हैं। जब अलग अलग पौधों का पराग मधुमक्खियों के पैरों और शरीर से चिपक कर एक दूसरे पर गिरते हैं, तब
0: इतना ही नहीं, मधुमक्खियों का ही मेहनत का प्रतिफल होता है बच्चों कि हम सभी को तरह तरह के फल और सब्जी खाने को मिलते हैं। यदि ये नन्ही मधुमक्खियाँ ना हो तो हमें आम, सेब, तरबूज, खीरा, ककड़ी, कद्दू इत्यादि खाने को नहीं मिलेगा या बहुत कम मिलेगा। मधुमक्खियाँ किसान भाइयों की दोस्त भी कही जाती हैं, क्योंकि वे पराग कण के माध्यम से फूलों में फल और बीज तैयार करवाती हैं।
1: बच्चों, मधुमक्खियाँ हमेशा मिलजुल कर अपना काम करती हैं। उनके छत्ते में हर मधुमक्खी के काम की अपनी अलग जिम्मेदारी होती है। कोई भोजन खोजती है, कोई शहद बनाती है और कोई छत्ते की रक्षा करती है। सबसे खास बात यह है कि मधुमक्खियाँ कभी आलस नहीं करती हैं और हमेशा अनुशासन में रहती हैं, जिसे हमें भी सीख लेनी चाहिए।
0: बच्चों, पर्यावरण वैज्ञानिकों का मानना है कि मधुमक्खियाँ पर्यावरण को स्वस्थ रखने में भी बहुत सहयोग करती हैं, इसीलिए उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए, बल्कि पेड़ पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाकर उनकी रक्षा करनी चाहिए।
1: इसीलिए तो कहते हैं दीदी
0: कि मधुमक्खी कितनी प्यारी, तुम मेहनत से ना डरती हो, फूलों के रस लेकर मीठा शहद बनाती हो,
1: भांति भांति के पुष्पों पर सुबह सुबह ही मंडराती हो,
0: डॉक्टर और वैद्य तुम्हारे शहद के गुण गाते, खुद ना चखती कभी, सदा हमें ही खिलाती हो।
1: वाह, दीदी ने बहुत अच्छी कविता लिखी है बच्चों, और उम्मीद है कि आपको भी ये कविता अच्छी लगी हो और मधुमक्खियों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी भी आप लोगों को हो गई है। तो अब कुछ मनोरंजन भी बच्चों का होना चाहिए दीदी। तो चलिए बच्चों, हम आपको एक कहानी सुनाते हैं जिसका शीर्षक है ए बगुला सफेद टीका देता जा, और इसके रचनाकार हैं श्री सतीश चंद्र चौधरी।
0: मुर्गी की बाग के साथ साथ सुशील जग उठा। उस समय बाहर बूंदाबांदी हो रही थी। उसने बगीचे के फूलों की ओर देखा। बगीचा फूलों से लदा हुआ है। आज रामू और चीमू फूल बटोरने नहीं आए, सुशील सोचने लगा। इसका कारण क्या हो सकता है? देर करने से पिताजी यहाँ पहुँच आएंगे। पिताजी ने उन्हें फूल बटोरते हुए देख लिया तो उन्हें डांटने लगेंगे। पहले भी कभी कभी ऐसा हुआ है। रामू और चीमू को सुशील रोज इस तरह इंतजार करता था। आज भी उसने यही किया, लेकिन आज उनके आने के आसार ही नहीं दिखते। अब तो उसके स्कूल जाने का समय भी हो जाएगा। जब वे नहीं आए तो सुशील स्कूल जाने को निकल पड़ा। पैंट की जेब में रामू और चीमू के लिए दो टुकड़े रोटी लेता गया। रामू और चीमू का घर उसके स्कूल जाने के रास्ते में पड़ता है।
1: रामू चीमू रोज फूल बटोरने यहाँ आते थे। उस समय सुशील उन्हें रोज रोटियां खाने को देता था। रोटी खाकर वे मारे खुशी के नाचने लगते थे, लेकिन आज भी क्यों नहीं आए, ये समझ में नहीं आया। वो बहुत से कारण सोचने लगा। रामू चीमू की बात वो बार बार भूलना चाहता है, लेकिन कहाँ भूल पाता है। उसे बार बार उस दिन की बात याद आती है जिस दिन उससे उनका परिचय हुआ था।
0: उस दिन वह अपने दादा के साथ नदी किनारे घूमने गया था। वहां से जब लौट रहा था तो दादा ने कहा, मुन्ना उन दो बच्चों को तो देखो। सुशील ने घूम कर देखा कि दो लड़के आकाश में उड़ते हुए बगुलों से कुछ कह रहे हैं। बगुला बगुला टीका देता जा, कौन सा टीका भाई, सफेद टीका देता जा। दोनों फिर एक साथ गाना गाकर बगुलों को बुलाते। बगुला ए सफेद टीका लगा जा, हमारी बातें सुनता जा, बगुला ए सफेद टीका लगा जा।
1: सुशील को ये लड़के बहुत अच्छे लगे। वो उनके पास जा पहुंचा, बच्चों का नाम पूछा तो रामू और चीमू बताया। कुछ ही दिनों में सुशील के साथ उनकी दोस्ती हो गई। इनसे दोस्ती के कारण सुशील के पिता ने अपने बेटों को बहुत भला बुरा कहा, लेकिन सुशील कभी भी इनसे दोस्ती न छोड़ सका, बल्कि दोस्ती बढ़ती गई।
0: रामू और चीमू यहाँ

0: कर रखा था।
1: इस तरह सोचता सोचता सुशील उसके घर के नजदीक जाकर रुक गया। सुशील ने पूछा कि आज फूल बटोरने वे क्यों नहीं आए, लेकिन उनमें से किसी ने कुछ नहीं कहा। इतने में रामू के माँ बाप आगे आए और कहने लगे, हम लोग आज ये जगह छोड़कर जा रहे हैं, रामू और चिमू भी चले जाएंगे। सुशील को इस बात से बहुत दुख हुआ, लेकिन रामू की माँ ने बताया,
0: हाँ छोटे बाबू, हमारा हड्डी उठाने का काम फिलहाल यहाँ से खत्म हो गया। अब नई जगह की तलाश में यह स्थान छोड़ रहे हैं, दूसरी जगह हम हड्डी उठाने का काम करेंगे।
1: इस बात से सुशील को बड़ा कष्ट पहुंचा। वो रामू और चिमू की ओर देख रहा था। वे भी सुशील की ओर एक टक देख रहे थे। उसकी आंखों में आंसू टपक रहे थे।
0: अंत में रामू अपने माँ बाप के साथ जाने लगा। उसके बाबा ने गाड़ी में घोड़े जोत दिए। रामू और चिमू ने सुशील से विदा ली। दोनों फूट फूट कर रोने लगे। सुशील भी रो रहा था। उनकी गाड़ी चलने लगी, पहले आहिस्ता आहिस्ता, फिर तेजी से।
1: उस चलती हुई गाड़ी की ओर सुशील एक टक देखता रहा। हठात उसको रामू और चिमू के लिए लाए हुए रोटी के टुकड़ों की याद आई। उसने उसे अपनी जेब से निकाला, लेकिन तब तक गाड़ी बहुत दूर जा चुकी थी। रोटी के टुकड़े हाथ में लेकर गाड़ी के पीछे वो दौड़ना चाहता था कि पीछे से किसी ने उसे गोद में उठा लिया। मुड़कर देखा तो उसी के दादाजी हैं। वो दादाजी की छाती से चिपक कर फफक फफक कर रोने लगा। दादाजी के मुंह से निकला, शिशु भगवान होता है, उसके सामने जाति धर्म भाषा की कोई दीवार नहीं होती।
0: सुशील बार बार दोहराने लगा, ऐ बगुला सफेद फूल लेता जा, ऐ बगुला सफेद टीका देता जा।
1: तो कैसी लगी कहानी बच्चों? बहुत अच्छी कहानी थी, है ना? और दीदी बच्चों को हम लोगों ने कहानी भी सुना दी, उनका मनोरंजन भी हो गया, और अब कुछ जानकारी की बातें और होनी चाहिए। तो चलिए, हर हफ्ते हम बच्चों को एक प्रेरक व्यक्तित्व के बारे में जानकारी देते हैं, और वो प्रेरक व्यक्तित्व हैं
0: प्रकृति की सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत।
1: बच्चों, भारत की धरती ने अनेक महान कवियों और साहित्यकारों को जन्म दिया। उन्हीं महान साहित्यकारों में से एक नाम है सुमित्रा नंदन पंत जी का। वे हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि थे और उनकी कविताओं में प्रकृति, प्रेम, मानवता और सुंदर भावनाओं का अद्भुत मेल दिखाई देता है। चलिए, उनकी एक कविता से हम शुरुआत करते हैं।
0: मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी और फूल फलकर मैं मोटा सेठ बनूंगा। पर बंजर धरती में एक न अंकुर फूटा, ना बंध्या मिट्टी ने एक भी पैसा उगला, सपने जाने कहाँ मिटे, कब धूल हो गए।
1: मैं हताश हो बाट जोता रहा दिनों तक, बाल कल्पना के अपलक पावड़े बिछाकर मैं अबोध था, मैं गलत बीज बोए थे, ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था। तो बच्चों, इस तरह की अनेक कविताएं सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखी। बच्चों, हम आपको बता दें कि सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 20 मई 1900 को उत्तराखंड के सुंदर पहाड़ी गांव कसौनी में हुआ था। उनका बचपन प्रकृति की गोद में बीता। चारों ओर ऊंचे पहाड़, हरे भरे पेड़, पक्षियों की चहचहाहट और ठंडी हवाएं थी। यही प्राकृतिक सुंदरता आगे चलकर उनकी कविताओं की पहचान भी बनी।
0: उनका बचपन आसान नहीं था बच्चों। जन्म के कुछ ही घंटे बाद उनकी माँ का देहांत हो गया। उनका पालन पोषण उनकी दादी ने किया। दादी उन्हें बहुत प्यार करती थी और कहानियाँ सुनाया करती थी। इन्हीं कहानियों से उनके मन में कल्पना और संवेदनशीलता का विकास हुआ।
1: बच्चों, बचपन में पंत जी का नाम था गोसाई दत्त। बाद में उन्होंने अपना नाम बदलकर सुमित्रा नंदन पंत रख लिया। वे बचपन से ही शांत स्वभाव के थे और उन्हें अकेले बैठकर प्रकृति को निहारना बहुत अच्छा लगता था। वे बादलों के बदलते रंग, पहाड़ों की सुंदरता और फूलों की खुशबू को बड़े ध्यान से महसूस करते थे।
0: कहा जाता है कि बचपन में वे पेड़ों और पक्षियों से भी बातें किया करते थे। उन्हें लगता था कि प्रकृति भी इंसानों की तरह मुस्कुराती और बोलती है। यही कारण है कि उनकी कविताओं में प्रकृति जीवित दिखाई देती है। वे पढ़ाई में भी अच्छे थे। उन्हें किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। बचपन से ही वे हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी साहित्य में रुचि लेने लगे थे। स्कूल में शिक्षक उनकी कल्पना शक्ति और सुंदर लेखन की प्रशंसा करते थे।
1: बच्चों, सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति से बहुत प्रेम था। उनकी कविताओं में पहाड़, फूल, झरने, पक्षियों का सुंदर चित्रण मिलता है। उनकी एक प्रसिद्ध

0: कविता है, छोड़ ध्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। इन पंक्तियों में प्रकृति के प्रति उनका गहरा प्रेम दिखाई देता है। बच्चों बच्चों सुमित्रानंदन पंत की राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्रभक्ति भी उनकी कविताओं में झलकती है। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ तो पंत जी ने अपनी प्रसिद्ध कविता 15 अगस्त 1947 में राष्ट्र की स्वतंत्रता का भव्य स्वागत किया। इन पंक्तियों में राष्ट्र के प्रति उनका अपार हर्ष और देशभक्ति झलकती है। चीर प्रणमय ये पुण्य अहन, जय गाओ सूरगण, आज अवतरित हुई चेतना भू पर नूतन, नव भारत फिर चीर युगों का तमस आवरण, तरुण अरुण सा उदित हुआ परिदीप्त कर भुवन, सब हुआ अब विश्व सब धरणी का जीवन, आज खुले भारत के संग भू के जड़ बंधन।
1: पंत जी बचपन से ही बहुत भावुक थे, किसी को दुखी देखकर उनका मन दुखी हो जाता था। वे मानते थे कि हर इंसान को प्रेम और दया का भाव रखना चाहिए। उनकी कविताओं में यही संवेदनशीलता झलकती है। उनकी एक प्रसिद्ध पंक्ति है, सुंदर है बिहग सुमन सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदरतम। इन पंक्तियों में वे बताते हैं कि इंसान सबसे सुंदर है क्योंकि उसके पास प्रेम और समझ की शक्ति है।
0: बच्चों जैसे जैसे वे बड़े हुए उनका मन कविता लिखने में अधिक लगने लगा। उन्होंने प्रकृति और जीवन के अनुभवों को शब्दों में पिरोना शुरू किया। उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है पल्लव, गुंजन, ग्राम्या, युगांत आदि। उनकी रचना चिदंबरा के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला, उन्हें पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया।
1: सुमित्रानंदन पंत का जीवन आप लोगों को कई अच्छी बातें सिखाता है। बच्चों प्रकृति से प्रेम करना चाहिए, कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, हमेशा सीखते रहना चाहिए, दूसरों के प्रति दया और सम्मान रखना चाहिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। बच्चों सुमित्रानंदन पंत जी के जीवन और उनकी रचनाओं से प्रेरणा लेकर अच्छा इंसान बनने का प्रयास हमें भी करना चाहिए।
0: तो बच्चों ये थे महान कवि सुमित्रानंदन पंत। और दीदी अब हमारे कार्यक्रम का समय भी समाप्त होने वाला है, तो हमें बच्चों से विदा लेनी होगी। लेकिन बच्चों चलते चलते हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की जो प्रस्तुति थी वो नूतन प्रसाद की थी। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति।
2: जय हिंद बच्चों।
3: अभी आप सुन रहे थे बाल सभा, चर्चा थी गर्मियों के फल पहचाने, खाएं खिलाएं सेहत बनाएं, छुट्टियों में बनाएं बर्ड हाउस। प्रस्तुति थी नूतन प्रसाद की। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। 4:35 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सांझ सरगम। 5:02 पर आप सुनेंगे युवाणी। चर्चा होगी वर्ल्ड हाइपर टेंशन डे, अनावश्यक तनाव से बचे, नहीं बढ़ेगा रक्तचाप, स्वस्थ जीवन अपनाएं युवा। प्रस्तुति होगी गौरव कुमार पांडे की।

शाम 5:30 पर श्रमिक भाइयों का कार्यक्रम श्रमिक लोक, जिसमें आप सुनेंगे नियमित जांच अपनाएं, उच्च रक्तचाप को दूर भगाएं, देश की धड़कन 90 वर्षों से हर घर की आवाज, कौशल प्रशिक्षण प्रगति का आधार, बदलते मौसम में रखें अपने सेहत का ख्याल। शाम 6:00 खेतीबाड़ी का प्रसारण होगा। चर्चा होगी खेती में मोबाइल ऐप का प्रयोग। बातचीत होगी खरीफ आने से पहले खेत की तैयारी। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर परवेज आलम, भेंटकर्ता कृष्ण जीवन पौराणिक। प्रस्तुति होगी संजीव कुमार लाल की। छह 6:32 पर हमारी दुनिया का प्रसारण होगा। चर्चा होगी अच्छा पड़ोसी सच्चा मित्र, सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ते कदम। प्रस्तुति होगी संजीव कुमार लाल की। प्रादेशिक समाचार का प्रसारण होगा 7:00। 7:11 पर जिले में आजकल। 7:15 पर आप सुनेंगे हिंदी साहित्यिक पत्रिका शतदल, जिसमें आप सुनेंगे कविताएं नीरज कुमार की नीर, लघु कथाएं रश्मि सिंह की। प्रस्तुति होगी प्रशांत गौरव की। 7:45 पर संताली समाचार पत्र

का रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अगला कार्यक्रम बस कुछ ही क्षणों में।

प्रस्तुत है फिल्म गीतों का कार्यक्रम साज सरगम। सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए सुनते हैं पहला गीत फिल्म चंबल की कसम से, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के स्वर में। शब्द रचना है शाहिर लुधियानवी की।

अगला गीत है फिल्म गुरु से, जिसे गाया है एआर रहमान, चिन्मयी मर्तुजा खान और कादिर खान ने। बोल है गुलजार के, धुन बनाई है एआर रहमान ने।

0: ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: कार्यक्रम शांत संगम में सभी श्रोताओं का पुनः स्वागत है। अगली पेशकश है फिल्म लव से SP बालासुब्रमण्यम व चित्रा के स्वर में। गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत है आनंद मिलिंद का।

आकाशवाणी के राज्य केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम साज सरगम। अब आप सुनेंगे आखिरी गीत फिल्म चांदनी से, लता मंगेशकर व बाबला मेहता के स्वर में। रचना है आनंद बख्शी की, संगीत है शिव हरी का।

इस प्यारे से गीत के साथ ही संपन्न होता है आज का कार्यक्रम साज सरगम। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अब से बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे अब तक के मुख्य समाचार।

नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। केंद्र सरकार ने कहा है कि CBSE की 12वीं की परीक्षा में ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली से मूल्यांकन में पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ी है। 12वीं परीक्षा के परिणामों पर आज नई दिल्ली में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार ने बताया कि विद्यार्थियों ने मार्किंग और उत्तीर्णता प्रतिशत में मामूली गिरावट पर चिंता जताई है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची के होटवार केंद्रीय जेल में बंद एक महिला कैदी के साथ जेल अधीक्षक के द्वारा यौन शोषण और गर्भवती किए जाने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जेल आईजी मामले को दबाने, फाइलें गायब करने और सबूत मिटाने के लिए महिला कैदी को गुप्त स्थानों व अस्पतालों में ले जा रहे हैं, जबकि गवाह कर्मियों का तबादला कर उन्हें

कराया जा रहा है। जमशेदपुर में कोल्हान प्रमंडल के झारखंड विद्युत श्रमिक संघ की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें श्रमिकों ने बकाया पीएफ, ईएसआई और अन्य सुविधाओं को लेकर गहरी नाराजगी जताई। बैठक में श्रमिकों ने संबंधित ठेकेदार पर मनमानी और कर्मचारियों की समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर कांडरा मुख्य मार्ग स्थित बीएसएनएल कार्यालय के समीप कल रात एक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल बाइक सवार युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। आदित्यपुर थाने की गश्ती पुलिस ने उसे देर रात घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया था। लोहरदगा के मंडल कारा में जेल अदालत, विधिक जागरूकता शिविर सह मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान डालसा सचिव मनोरंजन कुमार ने जेल में संचालित जेल विधिक सहायता क्लिनिक और शिशु गृह के बारे में जानकारी ली। जमशेदपुर में आयोजित झारखंड राज्य कबड्डी संघ की विशेष बैठक में वर्ष 2026-2030 के लिए नई कार्यकारिणी के गठन पर चर्चा की गई। महासचिव संजय कुमार झा की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि जून के द्वितीय सप्ताह में चुनाव के माध्यम से नई कमेटी का गठन किया जाएगा। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। आप सुन रहे थे मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से। सांध्यकालीन सभा में आपका हार्दिक अभिनंदन है, मैं हूँ छवि। श्रोताओं, अब आपको आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में हम जानकारी दे देते हैं। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत श्रोताओं, अब से कुछ ही देर बाद यानी संध्या के 5:05 पर आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम जय भारती, जो कि फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम है। 5:30 से संध्या के 6 तक आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती गृहस्थी, जिसमें चर्चा की जाएगी बीजोपचार से लाभ के बारे में। मनोरंजन करवाया जाएगा मुंडारी लोकगीत से जादू मुंडरी और साथियों के स्वर में। भेंट वार्ता आप सुनेंगे प्रगतिशील किसान से बातचीत, भेंट वार्ताकार हैं उमेश सोए और उनसे बातें कर रहे हैं सुरेश चंद्र सोए। इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे उरांव लोकगीत रमेश लकड़ा और साथियों के स्वर में। इसके अलावा बाजार भाव भी बतलाया जाएगा। संध्या के 6 से आप सुनेंगे मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से। संध्या के 6:02 से 6:30 तक आप सुनेंगे कार्यक्रम हुआ खड़ा, जिसमें जानकारी की बातें होंगी गर्मी के बढ़ते प्रकोप से कैसे बचें। इसके अलावा आप मिलानी बोद्रा और साथियों से सुनेंगे बाह गीत। भेंटवार्ता और नाटक के अंतर्गत आप सुनेंगे हो डिजिटल शब्दकोश के बारे में। भेंटवार्ताकार हैं कृष्ण दिंकी और भेंट करता है जगन्नाथ हिस्सा। मनोरंजन होगा आहिंदी दुरंग से लक्ष्मी नारायण पिंगवा और साथियों के स्वर में। संध्या के 6:30 पर आपको हम सुनवाएंगे विकास योजना पर आधारित कार्यक्रम सनमार्ग। 6:55 पर आपको लिए चलेंगे हमारे रांची केंद्र, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आज कल। 7:15 से रात्रि के 8 तक आपको हम सुनवाएंगे श्रोताओं की फरमाइश पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद। रात्रि के 8 से 8:45 पर आप पुनः सुनेंगे फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम रजनीकंथा। 8:45 पर आपको लिए चलेंगे हमारे दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे समाचार संध्या। रात्रि के 9 से 9:15 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। 9:15 से रात्रि के 10 तक आपको हम लिए चलेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहाँ से आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम। रात्रि के 10 से 10:30 पर होगा गजलों का कार्यक्रम महफिल हमारे चाईबासा केंद्र से। रात्रि के 10:30 से 11 तक आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरों के रंग, ये भी फिल्म संगीत का कार्यक्रम है। रात्रि के 11 से 11:05 पर आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। 11:05 से 11:10 तक आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से ही। और रात्रि के 11:11 पर हमारे सभा समापन की उद्घोषणा की जाएगी। श्रोताओं, आप अभी सुन रहे थे कार्यक्रम संबंधी जानकारी कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत। अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम जय भारती, जो कि फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम है।

कार्यक्रम जय भारती सुनने वाले सभी सैनिक भाइयों और बहनों को छवि का प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सैनिक भाइयों बहनों, आप देश की सेवा करते हैं और अपने आप को समर्पित कर देते हैं अपनी भारत माता के लिए। और हमारी अपनी माँ जो हमें जन्म देती है, ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वही हमें सही राह दिखाती है और हमें पाल पोष कर बड़ा करती है। तो चलिए सबसे पहले आपको हम सुनवाते हैं फिल्म राजा और रंक का ये गीत लता मंगेशकर के स्वर में।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जय भारती। अब आपको सुना रहे हैं रब ने बना दी जोड़ी का ये गीत, आर राठौर की आवाज में, सलीम सुलेमान का संगीत है।

फौजी भाइयों बहनों, आज आपने सुना राम बलराम फिल्म से आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। उसके बाद हमने आपको सुनवाया फिल्म राज थ्री का गीत के की आवाज में। और अभी आप सुन रहे थे, फिल्म का नाम था रब ने बना दी जोड़ी। तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम जय भारती यहीं संपन्न होता है। अब इस कार्यक्रम से छवि को इजाजत दीजिए। नमस्कार श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आपको कुछ ही पलों में हम सुनवाते हैं कार्यक्रम खेती गृहस्थी।

कार्यक्रम खेती गृहस्थी सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुरेश चंद्र सोय का जोहार। श्रोताओं, हम आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल हैं। आज खेती गृहस्थी के माध्यम से हम चर्चा में हम जानकारी लेंगे बीजोपचार के महत्व विषय पर, मनोरंजन करेंगे

ईमानदारी लोकगीत से और भेंटवार्ता के माध्यम से भी हम जानकारी लेंगे एक प्रगतिशील किसान से। श्रोताओं, मानव शरीर रूपी कोशिकाओं को जीवित रहने के लिए पोषक तत्वों की जरूरत होती है और इन पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, खनिज लवण इत्यादि हैं जो हमारे शरीर रूपी कोशिकाओं की वृद्धि एवं उनके सुरक्षा या स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। परंतु ये सभी पोषक तत्व हमें कहीं ना कहीं भोज्य पदार्थों के माध्यम से मिलती है और ये भोज्य पदार्थ हमें किसानों द्वारा उत्पादित उन फसलों से हमें मिलती है जो उन्हें खेतों में लगाते हैं। हम आदिकाल से ही, जब से मानव सभ्यता कृषि के क्षेत्र में आगे आई है, हम उन्हीं खेतों में परंपरागत तरीके से खेती करते हैं, हल के माध्यम से हो या ट्रैक्टर के माध्यम से। 5 से 6 इंच जमीन की हम जुताई करते हैं और पुनः अगले वर्ष उनकी जुताई करते हैं और फसल से संबंधित बीजों को हम लगाते हैं। परंतु उन खेतों में कई प्रकार के बैक्टीरिया हो सकते हैं जो हमारे फसलों को क्षति पहुंचा सकते हैं। इसके लिए आज जरूरी है कि हम मिट्टी भी जांच की करें, मिट्टी का जांच करें हम, और जिन फसलों को हम लगाना चाहते हैं उन बीजों का हम बीजोपचार करें। श्रोताओं, बीजोपचार का तात्पर्य यही है कि बच्चों को यदि हम स्वस्थ रखना चाहते हैं तो हम उन्हें पोलियो का 1-2 बूंद ड्रॉप दिलाते हैं ताकि भविष्य में उस प्रकार की आने वाली संभावनाएं जो रोग से संबंधित हैं वो उनसे छुटकारा मिल सके। उसी प्रकार हम अपने बीजों को भी बीजोपचार के माध्यम से, अर्थात बीजों का टीकाकरण हम कह सकते हैं, उनके उपचार करने के बाद हमें स्वस्थ बीज प्राप्त होते हैं और उनको जमीन पर लगाते हैं और फसलें लहराने लगती हैं और उन फसलों से हमें भोज्य पदार्थ के रूप में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स इत्यादि हमें प्राप्त होती है। श्रोताओं, जिन बीजों को हम लगाना चाहते हैं उसमें कहीं ना कहीं छोटे बड़े या छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीवाणु है, हानिकारक, मिट्टी में भी मौजूद रहते हैं। अगर हम बिना बीजोपचार उन बीजों को जमीन पर लगाते हैं तो जमीन के संपर्क में और पानी के संपर्क में आने के बाद वो बीज या तो सड़ने लगते हैं या सही रूप से वो अंकुरित नहीं होता है। इसके लिए जरूरी है कि उनका बीजोपचार सही समय पर करें। बीजों के साथ साथ उन पौधों को, खास करके बरसात या ग्रीष्म काल के बाद यदि धान के बिछड़ा हम लगाते हैं या सब्जियों की हम खेती करते हैं परंतु बीजोपचार करने में हम विलंब कर गए, तो ऐसी परिस्थिति में हम उन पौधों के जड़ों को भी बीजोपचार के रूप में हम उपयोग कर सकते हैं। बाजार में कई बीजोपचार से संबंधित उपलब्ध हैं दवाएं, बाबिस्टीन से हम कर सकते हैं, उनका उपयोग जरूर करनी चाहिए। धान के बिछड़ों को यदि हम लगाते हैं रोपनी के माध्यम से तो उनका भी हमें उपचारित करना चाहिए ताकि उन खेतों से हम अधिक से अधिक हमें फसलें मिले और हमें लाभ प्राप्त हो सके। श्रोताओं, जितने भी बीज हों या फसलें हों या पौधे हों, हमें जरूर से जरूर बीजो उपचार के बाद ही उन्हें खेतों में लगाना चाहिए। श्रोताओं, इस जानकारी के बाद आइए हम मनोरंजन करते हैं इस लोकगीत से।

0: श्रोताओं, अभी हम मनोरंजन कर रहे थे लोकगीत से। इस लोकगीत के बाद आइए हम भेंटवार्ता के माध्यम से जानकारी लेते हैं एक प्रगतिशील किसान से।
1: सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुरेश चंद्र सोय का जोहार। श्रोताओं, हम वर्षों से खेती बाड़ी कर रहे हैं, लेकिन खेती बाड़ी से भी कई प्रकार की मछली पालन करते हैं, मुर्गी पालन करते हैं, बत्तख पालन करते हैं, साथ ही साथ और भी क्रियाकलाप करते हैं, लेकिन इसमें विविधताएं लाने की जरूरत महसूस होती है। आज हम ऐसे किसान से बात करेंगे, ऐसे युवा से बात करेंगे जो मछली पालन और मुर्गी पालन, बत्तख पालन के साथ साथ पेड़ पौधों को भी व्यावसायिक दृष्टिकोण से कर रहा है। उनकी ज्ञान से हम खेती बाड़ी के तौर तरीकों में बदलाव यदि हम करते हैं तो अपने परिवार का और अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। जोहार।
2: जोहार जोहार।
1: आपका नाम?
2: संजोग कुमार बांड्रा।
1: अच्छा संजोग जी, आप क्या कर रहे हैं वर्तमान समय में?
2: वर्तमान में तो हम ये मछली पालन का काम है, उसके बाद फिर ये मुर्गी है, फिर बत्तख सब पाले हुए।
1: अच्छा, ये कितने दिन से आप कर रहे हैं इसको?
2: ये मछली पालन तो बहुत समय से हो रहा है, काफी समय हो गया, 20 साल लगभग हो गया है। और ये आपका फिर मुर्गी पालन तो ये जो है आपका 3-4 साल हो रहा है।
1: अच्छा, यानी इस क्षेत्र में क्या रोग लगते हैं, कैसा बेचना चाहिए, मार्केटिंग कैसी होनी चाहिए, इसको प्रबंधन कैसे करना चाहिए, क्या बदलाव आना चाहिए पालन के तौर तरीकों में भी, हमें लगता है कि आपको इसका खास अनुभव है, तो आप ये बताइए कि वर्तमान समय में आप किस प्रकार मछलियों का पालन करते हैं और मुर्गियों का पालन करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मछली पालन करते हैं 1 साल के बाद या 1.5 साल के बाद उनको निकालते हैं जब 1 किलो या 1.5 किलो हो जाता है, आप कैसे इसका प्रबंधन करते हैं?
2: देखिए, मछली पालन तो जहां तक बात है तो मछली पालन में हम लोग जो है, जैसे इस बार जो मछली छोड़ा हुआ है, हम लोग मतलब फिंगर साइज का ये मछली छोड़ते हैं, थोड़ा बड़ा साइज का कहने का मतलब है, ठीक है। तो उसको छोड़ने के बाद जो है उसको चारा वगैरह खिलाते रहिए, जैसे फिलहाल हम लोग चारा वगैरह दे रहे हैं उन लोग को, तो ये आपका 6 महीना लगभग जो है, 6 महीना लगभग उनको चारा खिला करके जो है फिर बेचने लायक हो जाता है। तो 6 महीने के बाद फिर हार्वेस्टिंग करिए।
1: लेकिन वर्तमान समय में तो जो लोग हैं 1.5 साल 1 साल बाद 1 किलो का आ जाता है उसमें बेचते हैं, तो इसमें पहले से बेचने से और बाद में बेचने से क्या उसके तौर तरीकों में डेंसिटी कम नहीं होता है क्या तालाब में मछलियों की संख्या?
2: हाँ देखिए, जैसे जो 1.5 साल बेचना उतना ज्यादा ये नहीं है, क्योंकि जैसे गर्मियों में थोड़ा पानी उनी कम हो जाता है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे मछली मैंने गर्मियों में ज्यादातर क्या होता है कि मछली चोरी होने का संभावना ज्यादा रहता है, क्योंकि पानी घट जाता है। तो अब यहाँ पे जितने भी किसान हैं या जो झारखंड में ये हम लोग का सिंहभूम में जो है, एक जगह पे तालाब नहीं होता है, ठीक है, खेत भी जो है एक जगह पे नहीं होते हैं, तो मैंने अलग अलग जगह पे होता है, जैसे इस दिशा में कुछ खेत है तो अब दूसरे दिशा में कुछ खेत है, इस तरह का है। तो उसमें क्या है कि जैसे अगर आप ज्यादा समय लेके करते हैं तो उसमें हमको तो उतना बेनिफिट नहीं लगता है, क्योंकि गर्मी सीजन में ज्यादातर चोरी उरी होने का संभावना ज्यादा लगता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जैसे अगर आप फिंगर साइज छोड़ते हैं, ठीक है, बरसात के सीजन में, जैसे अभी थोड़ा हुआ है, अभी बरसात चल रहा है, ये जो है 6 महीना तक जो है लगभग आप मान के चलिए अब दिसंबर जनवरी तक जो है, ठीक है, तो पानी उसमें तालाब उलाब में बढ़िया रहता है, तो उस समय चोरी होने का भी उतना संभावना नहीं रहता है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि जैसे दिसंबर जनवरी में जो है मछली का रेट अच्छा मिलता है।
1: अच्छा,
2: मछली का रेट बढ़िया मतलब मिलता है, क्योंकि ठंडा के सीजन में लोग ज्यादा मछली खाते हैं, जबकि वही मछली अगर आप जो है अप्रैल मई के आसपास बेचोगे तो उतना बढ़िया रेट नहीं मिलेगा, क्योंकि उस समय जो है लोगों का तालाब उलाब सूखने लगता है, तो गांव चौराहे वगैरह में भी जो है मछलियों का भरमार हो जाता है, तो इसमें रेट घट जाता है, आपको बढ़िया रेट नहीं मिलता है।
1: तो बाजार की मांग के अनुसार यदि हम देखें तो दिसंबर जनवरी आसपास में इसकी खपत ज्यादा रहती
2: है। जी जी जी बिल्कुल, दिसंबर जनवरी के आसपास में बढ़िया खपत होता है और बढ़िया सेल होता है। जैसे मंडी में भी ले जाओगे तो हाथों हाथ मतलब मछली आपका सेल आउट हो जाता है।
1: अच्छा, तो ऐसा नहीं लगता है कि जो मछलियां हम बड़ा करने खोजते हैं, बहुत सारे परिवार वालों को तो छोटी मछलियां चाहिए होती है, और हम जब एक किलो डेढ़ किलो का हो सकता है, सारे के सारे लोग उतने बड़े बड़े नहीं लेने खोजेंगे। अगर छोटा में ही बेचेंगे तो हो सकता है बहुत सारा उसका बिक्री हो जाएगा।
2: हाँ, बिक्री तो हो जाएगा, लेकिन जैसे जो एक साइज होता है वो आपका मतलब बड़ा करने का मकसद ये होता है कि आपको उसमें मंडी मंडी में बढ़िया रेट मिलता है।
1: अच्छा,
2: मंडी में मतलब जैसे आपका जो है आधा किलो से अगर ऊपर रहेगा ना तो मंडी में आपका जो है वो मैंने सेलिंग होने में आपको दिक्कत नहीं होता, आपको अच्छा रेट मिलेगा। अगर छोटा साइज रहेगा तो उसमें आपको कम रेट मिलेगा।
1: ये डाक बाजार में बेचना पड़ेगा क्या उसके लिए?
2: हाँ, उसके अगर छोटा छोटा पीस अगर कहीं पे बेचते हैं तो खुद आपको बेचना पड़ेगा।
1: अच्छा,
2: कहीं मतलब जैसे बाजार जा करके आपको खुद बेचना पड़ेगा। अगर ये मंडी के हिसाब से तैयार करते हैं तो उसमें क्या है कि बड़ा करके आपको जो है सीधे अच्छा रेट मिल जाएगा।
1: तो आप मंडी के लिए कहाँ लेके जाते हैं? मंडी वगैरह के लिए आपका बाजार कहाँ है सबसे नजदीक?
2: सबसे नजदीक तो यहाँ पे जो है आपका ये जमशेदपुर साक्षी मंडी।
1: अच्छा, साक्षी मंडी।
2: जी, साक्षी मंडी।
1: कितना हर साल करीब करीब आपका कितना बेचने का आपके पास कैपेसिटी या कितना आप बेचते हैं उनको हर साल?
2: हर साल लगभग निकलता है आप 25 क्विंटल, 25 से 30 क्विंटल लगभग।
1: अच्छा, 25 से 30 क्विंटल निकलता है। तो वहाँ क्या रेट लगता है वहाँ का बाजार में मंडी में?
2: देखिए, वो तो आपका मंडी के ऊपर निर्भर करता है। जैसे अगर आपका जैसे आज के दिन अगर मंडी जाते हैं और दूसरे पार्टी लोग ज्यादा लोग अगर मंडी में मछली नहीं लाते हैं तो अगर और लोग भी लाते हैं तो हो सकता है आपको 180 मिले, 170 मिले। ठीक है, अगर एक मछली तो आपका सीधे सीधे 200। न्यूनतम रहता है, लेकिन जैसे बढ़िया से जो है जैसे अगर ले जाने जाता है मछली तो ऐसा रेट घट
1: जाता है। अच्छा, तो इसके साथ साथ आपका मुर्गी पालन और बत्तख पालन में कौन कौन सा ब्रीड लगाए वर्तमान समय में? मुर्गी को कौन सा वैरायटी लगाए इस पौधे? तो इनके लिए दाना या चारा का उपयोग कहाँ से लाते हैं?
2: शुरू में जैसे जो है जो छोटे बच्चों उनका बढ़िया ग्रोथ हो बोल के जो है हम लोग प्री स्टार्टर वगैरह जो ये होता है ना मुर्गियों का दाना जो होता है वो खिलाया जाता है शुरू में।
1: अच्छा,
2: उसके बाद फिर हम लोग जो देसी प्योर देसी जो दाना होता है जैसे चावल हो गया ये सब, तो सब देना चालू करते हैं।
1: तो ये मुर्गी और बत्तख में तो उतनी बीमारी नहीं होती है, लेकिन मुर्गियों में बहुत ज्यादा बीमारी होती है, होने की संभावना होती है, उनके लिए आप क्या करते हो इन दवाओं का आप उपयोग करते हैं?
2: उनके लिए जो है जैसे अब दवा वगैरह मिलता है, उसका वैक्सीन आता है, उसे बीच बीच में देते रहिए।
1: इतनी ज्यादा बीमारी नहीं होती होगी?
2: हाँ बीमारी नहीं होती है, लेकिन फिर भी एहतियातन आपको जो है वो सब वैक्सीन वगैरह अगर लगा के रखते हैं तो सब बढ़िया रहता है।
1: अच्छा, और घर का स्थिति कैसी होनी चाहिए मुर्गी पालन के लिए, खास करके जिसका हम व्यावसायिक स्तर पर उनका पालन करना चाहेंगे? तो
2: घर का जब घर बनाते हैं तो हवादार होना चाहिए, ठीक है, हवा जो है मुर्गियों के लिए खास करके हवा आर पार में आना जाना चाहिए जो है।
1: अच्छा,
2: उसके बाद उसका जो दिशा होता है वो आपका पूरब से पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए जो है।
1: अच्छा,
2: ऐसे बना मतलब इस तरह से घर बनाने से क्या होता है कि सूरज की रोशनी जो है वो डायरेक्ट जो है वो घर में नहीं घुस पाता है, ठीक है, डायरेक्ट मतलब मुर्गियों पर नहीं पड़ना चाहिए।
1: अच्छा, मुर्गी पर नहीं पड़ना चाहिए?
2: नहीं पड़ना चाहिए मतलब
1: और जो बीच में सांप या न्योला जानवर है उसको जितने जो चूहा न्योला सांप वगैरह से बचाव के लिए क्या करना चाहिए उस हालत में?
2: घर के आसपास जो है मुर्गी फार्म के आसपास जो है अगर देसी पाल रहे हैं तो मुर्गी फार्म के आसपास जितना भी ये सब है ना आपका घास झाड़ी और ये सब जो है उस सबको हटा देना चाहिए, काट देना चाहिए।
1: अच्छा,
2: तो उस सबको काट देने से जो है जैसे नेवला ये सब जंतु सब ज्यादा नहीं आता है, अगर आपका झाड़ी उड़ी रहेगा तो ये सब मतलब ज्यादा आता है,
1: संभावना बढ़ जाता है उस सबका,
2: संभावना बढ़ जाता है।
1: अच्छा संजोग जी, आपने हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी और सरल शब्दों में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार
2: जी, जोहार जोहार।
0: श्रोताओं, अभी हम भेंट वार्ता के माध्यम से जानकारी ले रहे थे एक प्रगतिशील किसान से कि हम अपने परिवार की आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत कर सकते हैं। इस भेंट वार्ता के बाद आइए सुनते हैं ये संदेश।
3: परिवर्तन, यह यूनेस्को का संदेश है। कोयला, तेल और गैस जलाना, पेड़ काटना और पशुओं को पालना जैसे मानवीय काम ऐसे ग्रीन हाउस गैसेस उत्पन्न करते हैं जो पृथ्वी को गर्म कर देते हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद से पृथ्वी की सतह का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ चुका है और जमीन महासागर के मुकाबले और तेज गर्म हो रही है। बर्फ के प्राचीन अध्ययन बताते हैं कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर अब 8 लाख सालों या 800 हजार सालों में सबसे ज्यादा है। बर्फ का पिघलना, समुद्र का स्तर बढ़ना, यह बदलाव वापस नहीं किया जा सकता। फिर भी उत्सर्जन लगातार बढ़ता जा रहा है। समुद्रों, बर्फ की परतों और समुद्र तल में होने वाले कई परिवर्तन अब लौटाए जा नहीं सकते। क्या आप जानते हैं पृथ्वी का तापमान लगभग 1.1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है, जिससे जमीन, समंदर और वायुमंडल सब पर गहरा असर पड़ा है।
0: श्रोताओं, इस संदेश के बाद आइए कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं ये लोकगीत।

श्रोताओं, इस लोकगीत के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम खेती गृहस्थी अब संपन्न होता है। अब सुरेश चंद्र सोए को विदा दीजिए। जोहार।

मुख्य समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने राज्य सरकार पर नल जल योजना को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस योजना के लिए सरकार के पास खजाने में 7,000 करोड़ पड़े हुए हैं, लेकिन खर्च नहीं किए जा रहे हैं। वहीं इस मामले में मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने भाजपा के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि केंद्र सरकार राज्य को भीख नहीं दे रही है, यह हमारा अधिकार है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची के होटवार केंद्रीय जेल में बंद एक महिला कैदी के साथ जेल अधीक्षक के द्वारा यौन शोषण और गर्भवती किए जाने का गंभीर आरोप लगाया गया है। उन्होंने कहा कि जेल आईजी मामले को दबाने, फाइलें गायब करने और सबूत मिटाने के लिए महिला कैदी को गुप्त स्थानों व अस्पतालों में ले जा रहे हैं, जबकि गवाह कर्मियों को तबादला कर उन्हें चुप कराया जा रहा है। जमशेदपुर में कोल्हान प्रमंडल के झारखंड विद्युत श्रमिक संघ की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें श्रमिकों ने बकाया पीएफ, ईएसआई और अन्य सुविधाओं को लेकर गहरी नाराजगी जताई। बैठक में श्रमिकों ने संबंधित ठेकेदार पर मनमानी और कर्मचारियों की समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना

0: 2027 के चल रहे पहले चरण मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल V.A. वराड़े स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। जामताड़ा के SP शंभू कुमार सिंह ने जिले के पश्चिम बंगाल से सटे अंतर्राज्यीय पुलिस चौकी खुदमल्लिका बागडेहरी एवं कुंडथित थाना का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में विधि व्यवस्था और लंबित मामलों के निष्पादन को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। जमशेदपुर में आयोजित झारखंड राज्य कबड्डी संघ की विशेष बैठक में वर्ष 2026-2030 के लिए नई कार्यकारिणी के गठन पर चर्चा की गई। महासचिव संजय कुमार झा की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि जून के द्वितीय सप्ताह में चुनाव के माध्यम से नई कमेटी का गठन किया जाएगा। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार
1: श्रोताओं, आप सुन रहे थे मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से। यह आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आपको सुनवाते हैं कुछ ही पलों में कार्यक्रम हो अखड़ा।

0: aimutan taigin nabu milani bodura undo akinya juliko paite baria dureng sarige baria rasike dureng chera chergelena ila arpa bu japagara ho bhasa saitye chi sanagumriya abiret lagitte tisinge jogure sumeng okuna copy kite resumen dukaga tisinge e dilangre okuna digital jaman okuna adunik yug bumenia nenlikan sumaire abu ho sabd ko chi ho sabd kos ko chilikebu gutugalangi ando digital tarikete chilikebu rikeya nende apartiko chilke se sentana hinabu chirgeliya ilabu mi bepatajagar nende abiserebu ayumia japagartana kin krishna diki ando jagannath hisar lote ilamarbu ayumia ho akala imten sanam haga ko civil johar ente tising ilabu bepatak nalai mi ko pullo ente akin loge bu japagara mar johar ge
1: aling paithe johar
0: mar abna onrum ko jukal ka haga kolang jagar ko
1: aling ano tum do krishna diki aling ado startup company mina
0: e
1: to aling and website designing app development and the cyber security and the classes calling chalawata ma
0: acha mane app develop mane app to silkene
1: app da bu silke phone karo bu phone app use ta na inkan app ko ale bai ale
0: acha na jong do chilken chilken app ko ben bai tre
1: aling client ko aling bai tada ta bu jo ho community lagi do ling bai tada chilke bu
0: ho samaj lagi
1: ya ho samaj lagi chilke bu digital ho dictionary mina ane ta bu lak bodra ri app ko mina ha play store available mina
0: acha
1: ते गूगल रे वो सर्च रे वो इन नाम या वो
0: हां
1: या
0: जैसे अबन न तना छि हो भाषा रे ऐप में डिजिटल हो में के तबो डेवलप तरा
1: या
0: एन तो निना तो चिल्कन ऐप तना
1: नेंडे आपु शब्द कोश मिना
0: हां
1: नेंडे आपु इंग्लिश हिंदी हो वारन चित एन तो उड़िया मिना ना एंड अपडेट हो तना एन एग्जांपल साथ रे मिना
0: अच्छा तो जैसे आर करते बो आई मेटे छि सुमें किते को डिक्शनरी में कहते ना डिजिटल डिक्शनरी माने बाय दी
1: ये बाई सीखा का ना और इंटरनेट में ना प्ले स्टोर में ना तब गूगल रे सर्च रे ना मैं
0: बोल तो निना तो जैसे ना आप इन डिक्शनरी में मिनत ना डिक्शनरी तो ऐसे पूरे शब्द को ताई ने तो नैन रे ऐसे पूरे शब्द को मिन आ गया तो लगभग चिमिन लिखा नैन रे शब्द को मिना
1: 10,000 तो ज्यादा ना मिना
0: अच्छा 10,000 ते
1: ज्यादा
0: पूरे मिना तो अच्छा निना अब ना तो डिजिटल ऐसे पूरे हो को तार चीन मोबाइल साबिन को तार मिना एंतो दरकार चीन हो बाय ना वो माने मोबाइल रे के पढ़ाते अलग इते या फिर डिजिटल डिक्शनरी बाईते अलग इते
1: या अब चिलके ना अब मैंने तो इंटरनेट जमाना अब मैंने तंग गया
0: ठीक
1: है अब ना सबन को आते रे कितने कबू इंता तेता अब कबू इदई है हां ठीक है दो डिजिटल इनम तले उड़ो करा छे ना सबन को आते रे फोन मिना
0: हां
1: स्मार्टफोन भी यूज इतना
0: हां सबन को तीरे मिना
1: आ गया हां तो इना के लिए उड़ू करे अब एक क्यों ना हम एक ऐप बनाते हैं मिलते हैं डिजिटल ऑडिशन इन पर इन तरह के आइडिया हो जो इन थे ना
0: हाँ
1: ची अब फोन लगे वो भाई है चिना ची अगर फोन रहा भाई है तो सोबेन को भी यूज दही है
0: बैटरी पाव को दही है
1: बैटरी पाव आओ दही है ना तो सोबेन पाव वो आसानी से भी बिटा दही है वो
0: हाँ
1: अब नेशनल नेशनल लेवल वो ये दही है ना को रिच दही है वो
0: ये
1: इंटरनेशनल लेवल वो रिच दही है
0: ये बंतर तो अब कौन को नाला नखरे तेन को सनी सनी रे मिना को अब निता दिल्ली करे मुंबई करे या फिर अंडो जो विदेश करे मिना को ने को जों ते माने छिलके बटा दई एन एन बिसेर
1: एन अगर इना अगर किताब वो ईयर दोंडो फिर किताब तो कब ये दिन का
0: हां
1: छिलके वो ये एटा दिसम
0: कुले को तो बा किताब को बंद कर
1: एंड एंड पुसो पूरा खर्चा हो एंड
0: हां हां
1: ठीक है
0: तो जैसे ना जरूरी तने छि डिक्शनरी माने डिजिटल हो बई होगा तो हिनारी जैसे दरकार को चिना तरंग हो बाय ना
1: निलका चिल्के अब ना शहर रे बो सुनावतना शहर को पार्टी को तो सुनावतना शहर को पढ़ावतना अब तो बहुत हद तक हो भाषा अब रिंगो रिंगो आतना अब ठीक है चाहिए ना हो भाषा चिना को मिनिया तब इना तो चिमिन मीन हो भाषा

0: लड़ाई वो लड़ाई था ना वो
1: ये
0: ठीक है के लिए बाहर जा
1: रहे नौकरी दिक्कत कैसे नौतन को
0: तो इनको एतो को लगे नीना ऐसो यूजफुल एक ऐप था ना से अब भाषा है तो ऐसा को
1: ये
0: चिना से अब चिन पूरे भाषा वो एक तरह से अगर जैसे ऐप है मिना इन्हें डाउनलोड या को एतो ना तो एक इन्हें प्रूफ थे ना बुदा ची अब हो भाषा तो लगे सुपरे हो को मिना को वा दबु गापा को सरकार तबु सेनवा ची मिता दे ये पूछी ने इन्हें अब ऐसे पूरे यूजर्स को मिना को तो इन्हें कंसीडर दी जहाँ अच्छा आपका इतना यूजर्स है
1: निमें हो को आपको पढ़ावे तो ना को डिजिटल द्वारा
0: या इन्हें चिर गेले वा सरकार ने ग्रुप लिए अच्छा ना तो ऐसे पढ़ी यहाँ पे तो ऐसे मिना को गया तो कंसीडर दी है ना अब जो हो अटवे अनुसूचित को जो ये लगे वो ये था ना
1: तभी इतने
0: या तो है ना एक तरह से प्रूफ है हम लोग का
1: अच्छा निन्ना चिमिन लिखा शब्दों को निन्द्र मिना गलांग विषय का
0: ना बोना 10,000 से ज़्यादा मिना
1: 10,000 तेर पूरे मिना
0: या
1: तो कौन कौन मने भाषा रहे
0: इंग्लिश रहे मिना हिंदी तेरे मिना हाउ तेरे मिना वारांची तेरे मिना और साथ में एग्जाम्पल मिना निन्द्र बोना उड़िया अपडेट होता ना
1: अच्छा
0: या
1: उड़ियो मने वो नेंद्र वो गलांग मिसे थे ना चिन अच्छी अब वो हो को पूरे तर पूरे उड़ीसा रे मिना आपको ऐसो ला आते अंडो एन लिका असम करे मिना आपको पश्चिम बंगाल रे मिना आपको झारखंड रे मिना आपको मन लिका तो जरूर ये ची निना मने उड़िये भाषा तरह उड़िये का ताकि सभी वो मिडो का तो जैसे ना अगर वो जदि काजी ये भाषा रिया तो चिलके चिलकिलो उतना चीज ना मने मुचिडो उतना अंडो निलकन डिक्शनरी को बैठे दरकार हो बाय ना
0: इना गे छिल के जब ना बाजार के बुसन होता ना रिंग से बात ना बुआ हां ठीक है अलिंग ऑफ सहारे लिंग तई के नालिंग ऑफ कलिंग आदान तई के ना मिल हां ओ बस हां ठीक है एंड दो इन तली उड़ो लेते के ना छे मेरे जैसा और भी है मनते हां छे सहारे में ना कोटा पर बुसन होता ना का इन को रिंग से बात ना मनते हां तो इना इना के उड़ो करते ना गले बाइक रे छे कहना के हो बस ऐप बाहर ठीक है सब इनको डाउनलोड छे के तो छे को सब इन दिसुन पाते इनको
1: ये
0: ठीक है चिना चिना इंटरनेट जमाना पर मैंने तो किताब तो हर जगह पहुंचाना थोड़ा सा मुश्किल ना होगा
1: मुश्किल की हाँ
0: तो डिजिटल के एक माध्यम तो ना चाहिए पूरे दिसम रे इजीली रे अब वो बिटा दे
1: आसानी
0: तक वो बिटा दे
1: अंड हाँ। जैसे ना ऐसे पूरे शब्द को रे ना तो जान अरे जदि शब्द काबू ना तो मोबाइल के बहुत सारा चलिका मतलब मोबाइल के बहुत लिखा चिन्ह रे मतलब तो चिन्ह आता ना तो इन लिखा जदि मन रे का हजू उतने चीन इनारे और तो चिकन आता ना एंड इन अबेन मोबाइल रे टाइप करते के डिक्शनरी रे अबेन मि दोंटे बे नामे या
0: अब चिल के ना जाना रे वो सर्च तो गूगल रे बुचार था भी
1: हां
0: जान जगह ता जगह पे सुना रे गूगल रे बुचार
1: गूगल हां
0: ठीक है
1: तो बस गूगल तो का नाम
0: का नाम एना मते ने ऐप बाइक डाला छे सब इन पे सर्च चेक को ले सको एंड मतलब चिन्ह एंड अब इंग्लिश ते वो सर्च दईए बहुत ही वो सर्च दईए हिंदी ते वो सर्च दईए अगर ओके इंग्लिश का आधा ना हिंदी आधा ना तो हिंदी तो सर्च दे है अगर जो अगर हो सुगल आधा ना तो होते हो सर्च दे है
1: होते सर्च करके मने ना हिंदी एंड
0: इंग्लिश हिंदी हो जो है
1: वरन
0: चित्र हो जो है तो एग्जाम एग्जांपल हो जो है
1: अच्छा अच्छा तो ना जों निना चिमिन लिखा को डाउनलोड करा या फिर चिमिन के को प्रयोगिता ना तुरंत
0: ना डाउनलोड 10,000 से ज्यादा डाउनलोड हो पास का करना
1: अच्छा
0: या प्ले स्टोर ले लो एंटर 10,000 से ज्यादा डाउनलोड हो पास का करना
1: हां या दहिना तो चिमिन दिन हो बाय ना हिना वो बाई देतिया
0: इनका तो अब नैन प्रोजेक्ट तो 2017 से शुरू लेन थे ना
1: ये
0: तो धीरे धीरे धीरे मतलब पार्टी ना ये से कर रहे ना लेटेस्ट वर्जन ना ले ये तटा हां ये जो 10,000 से ज्यादा ना अवार्ड मिला लेटेस्ट वर्जन रे
1: अच्छा
0: ये
1: शब्द को 10,000 रे ला मिना
0: ये ना अपडेट या ना
1: और 10,000 रे ला हो को ना को मने को डाउनलोड
0: डाउनलोड तरह को ना यूज करना को
1: मने सुरा सर एक जी चिना छी अबू पढ़ाओ लिखाते ना आचिल के मन दिसम सेशन तने एंड लिखाते इपेन अपेन दिसम को बुसन ओतना बु होनर तना बु नखर तना बु ए तो अब भाषा माने पूरे ते पूरे माने कबो पाइटर कब अगु इतने कम के बुका जी इतने तो इना को चलते कम ओतना तुरा तो जैसे यूनेस्को का जी चिना एसो कमजोर ओतना भाषा मनते का जी माने यूनेस्को का जी ते तो एन लिखाते माने अब समाज रे हो को अब ना दिगत रियो ᱛᱮ ᱱᱤᱱᱟ ᱠᱩᱨᱮ ᱛᱮ ᱠᱩᱨᱮ ᱵᱩᱠᱟ ᱡᱤᱛᱮ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱡᱟᱜᱟᱨᱮ ᱛᱮ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱛᱤᱥᱤᱧ ᱮᱫᱤᱱ ᱨᱮ ᱫᱚ ᱟᱸᱰᱚ ᱦᱟᱜᱟ ᱠᱚ ᱟᱵᱮᱱ ᱱᱮᱱ ᱵᱤᱥᱮᱨ ᱪᱮᱱ ᱟᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱡᱟᱜᱟ ᱥᱟᱱᱟ
0: ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱱᱤᱱᱟᱹᱞᱤᱧ ᱡᱟᱜᱟ ᱨᱮ ᱪᱮ ᱟᱵᱚ ᱨᱮᱱ ᱮᱯ ᱵᱚ ᱤᱭᱩᱡ ᱮᱛᱟ ᱤᱭᱩᱡ ᱮᱪᱟ
1: ᱦᱚᱸ
0: ᱛᱟ ᱟᱵᱚ ᱥᱚᱵᱮᱱ ᱯᱚᱨᱤᱵᱟᱨ ᱭᱟ ᱫᱚᱥᱛᱚ ᱠᱚ ᱵᱤ ᱢᱚᱛᱞᱚᱵ ᱠᱟᱡᱤ ᱠᱚ ᱟᱵᱚ ᱪᱮ ᱱᱤᱞᱠᱟᱱ ᱮᱯ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱦᱚᱸ ᱚ ᱱᱟ ᱰᱟᱣᱩᱱᱞᱳᱰ ᱮᱪᱟ ᱠᱚ ᱛᱮ ᱥᱚᱵᱮᱱ ᱱᱮᱱ ᱥᱟᱨᱪ ᱫᱮᱭᱵᱚ ᱡᱚ ᱵᱤ ᱟᱵᱮᱱ ᱮᱛᱚ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ
1: ᱦᱩᱸ
0: ᱤᱱᱟᱹ ᱵᱚ ᱥᱟᱨᱪ ᱠᱮᱫᱟ ᱵᱮ ᱮᱛᱚ ᱫᱟᱹᱭ ᱡᱟ
1: ᱚᱱᱟ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱮᱛᱚ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱡᱚᱫᱤ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱵᱚ ᱠᱟᱹᱡᱤ ᱵᱚ ᱟᱯᱱᱟ ᱦᱚᱱ ᱠᱚ ᱛᱟᱜ ᱨᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱵᱮᱣᱟᱨ ᱨᱩᱯ ᱛᱮ ᱡᱚᱫᱤ ᱵᱚ ᱠᱟᱹᱡᱤ ᱠᱚ ᱡᱟᱜᱟᱨᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱤᱱ ᱫᱚ ᱦᱚᱵᱚ ᱫᱟᱹᱭᱚᱜᱼᱟ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱟᱸᱰᱚᱜ ᱜᱮ ᱡᱚᱠᱟ ᱢᱚᱡᱵᱩᱛ ᱛᱟᱭᱱᱮ ᱪᱮᱱᱟ ᱪᱤ ᱟᱵᱚ ᱦᱟᱭᱟᱢ ᱜᱮ ᱤᱱᱠᱟᱱ ᱦᱟᱭᱟᱢ ᱛᱟᱱᱟ ᱚᱠᱚᱱᱟ ᱨᱮ ᱛᱚᱞ ᱢᱤᱥᱮ ᱵᱩ ᱮ ᱜᱟᱞᱟᱝ ᱵᱩ ᱮ ᱟᱸᱰᱚᱜ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱝᱥᱠᱨᱤᱛᱤ ᱞᱚᱜ ᱦᱮᱱᱟ ᱛᱚᱞᱟᱜ ᱛᱚᱞ ᱜᱟᱞᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱭᱟ ᱯᱷᱤᱨ ᱟᱸᱰᱚᱜ ᱜᱮ ᱮᱥᱚᱯᱩᱨ ᱮ ᱡᱟᱱᱠᱟᱨᱤ ᱠᱚ ᱱᱮᱱ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱞᱚᱜ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱟᱭᱱᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫᱚᱜᱼᱟ ᱤᱱ ᱨᱮᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱮ ᱥᱟᱵᱤᱱ ᱩᱱᱩᱨᱩᱢ ᱪᱟᱵᱟᱣ ᱛᱮ ᱠᱟᱡᱤ ᱛᱚ ᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱵᱚ ᱟᱵᱮᱱᱟᱜ ᱮᱥᱚᱯ ᱨᱮ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩ ᱪᱮ ᱦᱚᱵᱚᱫᱤ ᱩᱡᱩᱜ ᱛᱮ ᱱᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟ ᱱᱮᱱ ᱮᱯ ᱠᱚ ᱵᱟᱹᱱᱤᱱ ᱯᱟᱭᱴᱨᱮ ᱟᱹᱜᱩᱭ ᱟᱸᱰᱚ ᱦᱚ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱢᱤᱫ ᱥᱟᱵᱫᱚ ᱠᱚᱥ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱮᱨᱟ ᱛᱤᱥᱤᱧ ᱫᱚ ᱮᱥᱚ ᱠᱚᱢ ᱜᱮᱵᱚ ᱞᱮᱞ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱚᱞ ᱛᱚᱞ ᱛᱟᱱ ᱠᱚᱭᱚ ᱫᱚ ᱰᱤᱡᱤᱴᱟᱞ ᱛᱟᱹᱨᱤᱠᱟ ᱛᱮᱨᱟᱵᱚ ᱛᱚᱞᱮᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱮᱱᱛᱮ ᱢᱟᱨ ᱮᱥᱚᱯ ᱨᱮ ᱵᱤᱛᱤᱢ ᱟᱵᱮᱱ ᱛᱤᱥᱤᱧ ᱮᱱᱮᱱ ᱵᱮᱯᱴᱟ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱟᱸᱰᱚ ᱵᱩᱜᱤᱱ ᱡᱟᱱᱠᱟᱨᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱟᱥᱨᱟ ᱟᱸᱰᱚ ᱵᱚᱨᱥᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱪᱤᱱᱮᱱ ᱦᱚ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱟᱵᱚ ᱟᱭᱨᱯᱟ ᱵᱮᱴᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱵᱮᱱᱟᱜ ᱫᱮᱸᱜᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱮᱸᱜᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱟᱨ ᱵᱤᱛᱤᱢ ᱟᱸᱰᱚ ᱡᱚᱦᱟᱨ
0: ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱵᱤᱛᱮᱢ
1: ᱦᱮᱸ
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: ᱵᱮᱯᱴᱟ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱵᱚ ᱟᱭᱵᱤᱛᱟᱱ ᱛᱟᱭᱠᱟᱱᱟ ᱠᱨᱤᱥᱱᱟ ᱫᱤᱜᱤ ᱚᱸᱰᱚ ᱡᱟᱜᱟᱱᱟᱛᱮ ᱥᱟᱞᱚᱜ ᱛᱮ ᱡᱟᱯᱟᱜᱟᱨ ᱛᱟᱭᱠᱟᱱᱟ ᱠᱤᱧ ᱦᱚ ᱰᱤᱡᱤᱴᱮᱞ ᱥᱟᱵᱫᱚ ᱠᱚᱥ ᱵᱤᱥᱮᱭᱟᱫᱮ ᱥᱟᱱᱟᱜᱚᱢ ᱦᱚ ᱠᱟᱡᱤ ᱦᱚ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱚᱸᱰᱚ ᱱᱮᱱ ᱥᱚᱵᱫᱚ ᱠᱚ ᱵᱩᱜᱤᱛᱮ ᱨᱟᱠᱟᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱡᱚᱜᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱚᱸᱰᱚ ᱦᱩᱡᱩᱜ ᱛᱮᱱ ᱫᱤᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱵᱩᱜᱤᱛᱮ ᱦᱩᱡᱩᱜ ᱛᱮᱱ ᱥᱤᱴᱤ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱚᱠᱚᱱᱟ ᱨᱤᱠᱟᱹ ᱨᱟᱠᱟᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱰᱤᱡᱤᱴᱮᱞ ᱛᱟᱹᱨᱤᱠᱟ ᱛᱮ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱥᱟᱵᱫᱚ ᱠᱚᱥ ᱛᱤᱨᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱭᱟ ᱮᱯ ᱢᱟᱫᱽᱫᱷᱚᱢ ᱛᱮ ᱦᱤᱱᱟᱹ ᱵᱚ ᱪᱤᱨᱜᱮᱞ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱤᱨᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱮᱥᱚᱵᱚᱜᱤᱱ ᱯᱟᱦᱟᱞ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱥᱚᱵᱚᱜᱤᱱ ᱩᱲᱩᱜ ᱛᱟᱱᱮ ᱛᱟᱠᱤ ᱠᱤᱛᱟᱹᱵ ᱠᱚᱯᱤ ᱡᱩᱫᱤ ᱠᱟᱛᱟᱭᱱᱮ ᱤᱱᱟᱹ ᱫᱚ ᱰᱤᱡᱤᱴᱮᱞ ᱛᱟᱹᱨᱤᱠᱟ ᱛᱮ ᱨᱚ ᱟᱵᱚ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱵᱚ ᱱᱟᱢ ᱫᱟᱹᱭᱤᱜᱼᱟ ᱚᱠᱚᱱ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱨᱮ ᱚᱠᱚᱱ ᱥᱚᱵᱫᱚ ᱵᱚ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨᱚᱜ ᱤᱱᱟᱹ ᱵᱚ ᱯᱟᱸᱡᱟ ᱛᱟᱹᱭᱤᱜᱼᱟ ᱮᱱᱦᱤᱞᱳᱜ ᱛᱮ ᱢᱟᱨ ᱮᱞᱟ ᱟᱭᱟᱨᱯᱟ ᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢᱤᱭᱟ ᱢᱤᱫ ᱟᱸᱫᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱩᱨᱟᱹᱝ ᱫᱩᱨᱟᱹᱝ ᱛᱟᱱᱟ ᱠᱤᱱ ᱞᱚᱠᱥᱢᱤ ᱱᱟᱨᱟᱭᱚᱱ ᱯᱤᱝᱜᱩᱣᱟᱹ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱟᱠᱤᱱᱮ ᱡᱩᱲᱤ ᱠᱚ ᱮᱞᱟᱢᱟᱨ ᱵᱚ ᱨᱟᱹᱥᱤ ᱠᱮᱞᱮ ᱮᱱᱚᱜᱼᱟ

श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम हो अखड़ा। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम सन्मार्ग।

कार्यक्रम सन्मार्ग सुनने वाले सभी श्रोताओं को छवि का प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विकास योजनाओं पर आधारित ये कार्यक्रम है और महिलाएं आजकल क्या क्या काम कर रही हैं, स्वयं सहायता समूह के बारे में आज आपसे हम बातचीत करेंगे। श्रोताओं, महिला स्वयं सहायता समूह यानी SHG मुख्य रूप से ग्रामीण और शहरी महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए संगठित किए जाते हैं। ये समूह बचत, ऋण, कौशल विकास और आजीविका से जुड़े कार्य करते हैं। तो श्रोताओं, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन कौन से कार्य ये महिला करती हैं और किस तरह से हम भी इस कार्य को कर सकते हैं अलग अलग समूह बनाकर। तो पहला जैसे है, उसका नाम है आर्थिक और वित्तीय कार्य, जिसमें नियमित बचत है। समूह की सभी महिलाएं हर महीने अपनी छोटी मोटी आय से कुछ पैसे बचत कर समूह के खाते में जमा करती हैं और इसमें जमा की गई धनराशि से जरूरतमंद महिलाओं को बहुत ही कम ब्याज पर छोटे छोटे ऋण दिए जाते हैं ताकि वे घर या निजी काम पूरे कर सकें। बैंक से ऋण प्राप्त करते हैं वो लोग समूह के बेहतर संचालन के लिए। आधार पर बैंकों से बड़े लोन भी प्राप्त किए जाते हैं जिससे समूह की महिलाएं बड़ा व्यापार शुरू कर सकें। इसके अलावा ये कुटीर उद्योग करती हैं, अपना पापड़, अचार, मसाले, सिलाई, कढ़ाई, साबुन, मोमबत्ती और हस्तशिल्प जैसे उत्पाद तैयार करती हैं। कृषि और पशुपालन से संबंधित जैसे कि जैविक खेती, बीज उत्पादन, पशुपालन और डेयरी उत्पादों का व्यवसाय करना और लखपति दीदी जैसी योजनाएं हैं। सरकार द्वारा महिलाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें लखपति दीदी बनाने का कार्य किया जा रहा है। सामाजिक उत्थान और जागरूकता के लिए भी ये कार्य किया जा रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए जैसे कि बच्चों की शिक्षा, पोषण, साफ सफाई और टीकाकरण के प्रति समाज में जागरूकता फैलाना, घरेलू हिंसा और कुरीतियों का विरोध करना, बाल विवाह, दहेज प्रथा और महिलाओं के शोषण के खिलाफ आवाज उठाना, सरकारी योजनाओं की जानकारी देना जैसे सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं जैसे पेंशन, सुकन्या समृद्धि योजना और बीमा योजनाओं का लाभ गांव की अन्य महिलाओं तक पहुंचाना, प्रशिक्षण और कौशल का विकास होता है। महिलाओं को नेतृत्व क्षमता, हिसाब किताब रखने और नया व्यवसाय करने का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। तो इस प्रकार से स्वयं सहायता समूह बहुत ही अच्छा कार्य कर रही हैं और करना भी चाहिए। और अगर आप चाहें तो आप भी अपना संगठन बनाकर सरकार द्वारा चलाए गए योजनाओं का लाभ उठा सकती हैं। तो चलिए, इस जानकारी के बाद आपको एक प्यारा सा गीत सुनवाते हैं, फिर आपसे हम और भी बातें करेंगे।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी के चाय बसा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सन्मार्ग छवि के साथ। अब आपको सुनवाते हैं एक भेंट वार्ता जिसमें जानकारी दी जाएगी कि आंगनबाड़ी सेविका कौन कौन से कार्य कर रही हैं। तो चलिए ये भेंट वार्ता हम सुनते हैं। श्रोताओं, हम आपको मिलवा रहे हैं एक आंगनबाड़ी सेविका से, जिनका परिचय चलिए हम जानते हैं। आपका नाम क्या है?
1: मैं करिश्मा सिंह हूँ, न्यूकोरन टूर की रहने वाली हूँ।
0: अच्छा, आपका जो आंगनबाड़ी सेंटर है वो कहाँ पर है?
1: मेरा आंगनबाड़ी सेंटर न्यूकोरन टूंगरी में है।
0: अच्छा, तो आप यहाँ कितने वर्षों से कार्य कर रही हैं?
1: मैं यहाँ 18 वर्षों से काम कर रही हूँ।
0: आपका सिलेक्शन कैसे हुआ था, कब हुआ था?
1: मेरा सिलेक्शन 2007 को,
0: अच्छा,
1: और आम सभा के द्वारा मेरा चयन किया गया था।
0: अच्छा, तो अभी जो आप कार्य कर रही हैं इसमें कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्या?
1: दिक्कत तो होती है, पर फिर उसका समाधान भी हो जाता है, वैसे ही फिर काम हम लोग कर ही रहे हैं।
0: तो आप अपने आंगनबाड़ी सेंटर में कौन कौन से कार्य को करती हैं?
1: हम लोग विशेषकर ये महिला बाल विकास परियोजना है, जिसमें कि महिलाओं और बच्चों को दे रहे, मतलब उनके पोषण से संबंधित पर हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे गर्भवती माताओं को हम लोग टीकाकरण उपलब्ध कराते हैं, THR उपलब्ध कराते हैं, और बच्चों का भी निःशुल्क टीकाकरण होता है इसमें। और
0: अच्छा।
1: ये हर मतलब हर एक आंगनबाड़ी में अपना अपना ये दिन ये किया गया है, विशेषकर गुरुवार और शनिवार को ही टीकाकरण का कार्यक्रम होता है।
0: अच्छा, विशेषकर गुरुवार और शनिवार को टीकाकरण कार्यक्रम होता है। तो आपके यहाँ टीकाकरण करने के लिए कौन आती हैं?
1: स्वास्थ्य विभाग से ANM आती है और सहिया रहती है हम लोग का सहयोग करने के लिए। हम लोग सब मिलकर के उस दिन सभी महिलाओं बच्चों सबको इकट्ठा करते हैं और उन्हें टीकाकरण और THR उपलब्ध कराते हैं।
0: जी, तो आपने कहा THR, THR क्या है?
1: ये होम टेक राशन है, जिसमें हम लोग झारखंड सरकार की ओर से RTA उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें कि पंजरी फूड है और दलिया उपलब्ध करा रहे हैं, मीठा और एक नमकीन रहता है।
0: अच्छा,
1: ये बहुत मतलब स्वास्थ्य पोषण को स्तर को बहुत अच्छा करता है, अगर इसको सही रूप से खाया जाए तो। हम लोग गर्भवती महिला धात्री और माताओं को समझाते हैं कि उसको उसका सेवन बच्चा को कराए, खुद भी करे जो गर्भवती है, जिससे कि उनका पोषण में सुधार हो सके और जो गर्भवती है स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सके।
0: जी, बहुत अच्छी बात है। तो आपके यहाँ सभी लोग आते हैं लेने के लिए THR?
1: हाँ, आते हैं, उन लोग को हम लोग समझाते हैं, जो नहीं भी आते हैं तो उनको समझाते हैं कि आपके आपके लिए बहुत अच्छा है और आपके आने वाले बच्चे के लिए भी बहुत अच्छा होगा, तो वो लोग फिर आते हैं।
0: अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो THR कार्यक्रम चलाया जाता है और टीकाकरण का कार्यक्रम होता है साथ ही में। इसके अलावा बच्चों को आप और क्या करती हैं वहाँ पर, छोटे छोटे बच्चों को?
1: और हम लोगों का एक और कार्यक्रम है, जैसे 3 से 6 वर्ष के बच्चों को हम लोग स्कूल पूर्व शिक्षा देते हैं। उसमें है हम लोग स्कूल जाने से पूर्व बच्चों को क्या चीज़ सीखना ज़रूरी है वो सब को सिखाते हैं, और उसमें भी हम लोग शिक्षा के साथ साथ उनको भोजन भी उपलब्ध कराते हैं। उसमें हम लोग का जैसे कि अभी हर आंगनबाड़ी में जैसे नाश्ता का है, दो बार हम लोग को नाश्ता देना है। एक हम लोग सुबह जब 10 बजे देते हैं, उसमें हम लोग को ना मतलब प्रतिदिन अंडा देने का प्रावधान है, और फिर सूजी का हलवा, और फिर गर्म भोजन हम लोग देते हैं, जैसे खिचड़ी है, फिर जैसे चेंज कर करके देते हैं, कभी दाल सब्जी बना करके चावल के साथ, या फिर खिचड़ी देते हैं।
0: बहुत अच्छी बात है। सारे बच्चे आते हैं आपके आंगनबाड़ी में?
1: हाँ, जितने नामांकित है तो उनमें कभी कभी किन्हीं का तबीयत खराब हो जाता तो नहीं आते हैं, लेकिन सभी कोई आते ही हैं।
0: जी, तो बच्चे बहुत खुश होते हैं। तो पढ़ाते हैं आप लोग, तो क्या क्या पढ़ाई के दौरान उन्हें क्या क्या सिखाते हैं?
1: जैसे हम लोग उन लोग को खेल कूद के माध्यम से ही उन लोग को सिखाते हैं, और हम लोग किताबी शिक्षा पे नहीं ध्यान देते हैं। हम लोग को उसको मतलब कैसे, जैसे उन लोग हर एक, वो छोटे रहते हैं तो उनका हर एक मांसपेशी का विकास कैसे होगा, जैसे मानसिक विकास कैसे होगा, जैसे गीत के माध्यम से हुआ, फिर हम लोग उन लोगों को ये देते हैं जैसे फजल, हम लोग जो जो हमारे आसपास उपलब्ध है उन्हीं के द्वारा उन लोग को बताते हैं कि उससे उसको वो लोग देख के पहचान कराते हैं।
0: अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने कि विभिन्न तरीकों से जो घरेलू साधन उपलब्ध हैं और पजल्स हैं उनके द्वारा उनका मानसिक विकास कराया जाता है, तो इससे बच्चे की प्रगति अच्छी होती है। तो अब हम जानना चाहेंगे कि आंगनबाड़ी जो केंद्र है उसमें और सरकारी योजनाएं चलती हैं बहुत सारी, तो कौन कौन सी अभी योजनाएं आपके द्वारा चलाया जा रहा है?
1: अभी फिलहाल में एक सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना।
0: अच्छा।
1: इस योजना में हम आठवीं क्लास से, जो अभी आठवीं क्लास में नामांकित है और नौवीं और दसवीं पास और बारहवीं पास किशोरियों को वो योजना का,
0: सावित्री बाई फुले योजना के बारे में फिर से बताइए हमें।
1: सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना जो झारखंड सरकार के द्वारा चल रहा है।
0: अच्छा।
1: उसमें हम लोग आठवीं कक्षा में जो नामांकित है, जो इस साल नामांकित हुई है, उनको नौवीं क्लास और दसवीं पास।
0: अच्छा।
1: सरकार की ओर से जैसे आठवीं और नौवीं का किस्त है आपका 2500 करके।
0: अच्छा।
1: फिर नौवीं दसवीं जब वो पास करती है तो उनको 5000 मिलता है।
0: अच्छा। उसके बाद
1: फिर इंटर में उन लोगों को इंटर पास उनको 5000 है।
0: अच्छा।
1: और फिर 18 से 19 वर्ष की किशोरियों को 20000, जिनका वोटर आईडी कार्ड बन जाता है, जो वोट देने योग्य हो जाती है उन किशोरियों को 20000 दिया जाता है।
0: तो ये कैसे दिया जाता है, इसके लिए क्या किया जाता है?
1: इसको देने के लिए जैसे अभी तो फिलहाल जो सरकारी स्कूल में पढ़ रही है उन्हीं किशोरियों को
0: इस योजना का लाभ
1: दिया जाता है।
0: अच्छा।
1: जैसे हमारी विभाग के द्वारा स्कूल में सावित्री बाई फुले का फॉर्म उपलब्ध हर एक स्कूल में भिजवा दिया जाता है, फिर स्कूल के द्वारा उन किशोरियों को दिया जाता है और वो आंगनवाड़ी सेविका से साइन करवा के स्कूल में जमा करती है, फिर वहाँ से ब्लॉक में भेजा जाता है, फिर वहाँ से फिर जिला जाता है, फिर उन लोगों के खाते में पैसा जाता है।
0: ओ, मतलब सबके अकाउंट में वो पैसे चले जाते हैं। तो और इसके अलावा और कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं?
1: फिर है गर्भवतियों के लिए है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना।
0: अच्छा।
1: इस योजना में वैसे पहली गर्भवती को इनका ये इस योजना का लाभ मिलता है, वो वैसे गर्भवती जो कि नौकरी नहीं करती।
0: मातृत्व योजना के बारे में आप बता रहे थे, उसके बारे में बताइए।
1: मातृ वंदना योजना है जो वो पहली गर्भवती को दिया जाता है, वैसे गर्भवती जो लोग नौकरी नहीं करती है, उनके हस्बैंड सरकारी नौकरी में, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उनको मिलेगा लाभ। तो उसमें क्या है, उसका आवेदन करने का है कि वो पहले जैसे उनको गर्भ का पता चलता है तो अपने नज़दीकी आंगनबाड़ी केंद्र में जाके अपना पंजीकरण कराएं, और पंजीकरण कराने के पश्चात जब वो पहला टीका के बाद जब वो दूसरी टीटी लेती है उसके बाद इस योजना का आवेदन हम ऑनलाइन करके भरा जाता है आंगनवाड़ी केंद्रों में।
0: अच्छा, तो इस तरह से फिर उनको लाभ मिलता है।
1: और इसमें और एक है, ये है मातृ वंदना योजना, वैसी गर्भवती जो दूसरी बार दूसरे गर्भ के द्वारा बेटी को जन्म देती है तो उनके लिए भी ये योजना है, लेकिन दूसरा शर्त ये है कि दूसरा जो प्रसव हो तो बेटी हो, तो उनको भी ये योजना का लाभ मिलता है।
0: जी, तो महिलाओं से संबंधित और क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं?
1: और एक हम लोग का कन्यादान, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना।
0: अच्छा।
1: इस योजना के तहत जो जो शादी योग हो जाती है लड़की, वो अगर उनका विवाह निबंधित हो गया है तो उनको इस योजना का लाभ मिलता है।
0: अच्छा, तो इसके लिए क्या किया जाता है?
1: इसके लिए जब वो शादी करती है तो वो एक साल के अंदर ही होना चाहिए, जैसे कि 2025 से 26 मार्च 2026 तक ही होना चाहिए उनका। इस योजना का लाभ वो लेगी तो उनको उसका शादी निबंधन होना चाहिए, और जैसे लड़का का वोटर आईडी और लड़की का भी पर
0: आप बता रही थी कि जो योजनाएं चलाई जा रही है महिलाओं से संबंधित, तो ये जो निबंधन कराया जाता है उसके बाद ही उन्हें ये इस योजना का लाभ मिलता है ना?
1: हाँ।
0: उसके अलावा और क्या होता है?
1: इस योजना के लिए लड़की डॉक्यूमेंट्स देती है, दोनों वरवधु के दोनों का डॉक्यूमेंट्स लगता है, वो आवेदन करती है, तो उसके बाद फिर ये ब्लॉक में जमा होता है, फिर वहाँ से सिलेक्शन होता है, उसके बाद फिर उनके अकाउंट में 30,000 किस्त जाता है।
0: अच्छा, तो ये 30,000 का जो किस्त जाता है ये मतलब निबंधन के बाद शादी हो गई उनका प्रूफ हो जाता है तो ब्लॉक में उनके अकाउंट्स में चला जाता है।
1: जी हाँ।
0: अच्छा, तो इसके अलावा और कौन सी ऐसी योजना है जो बाल विकास योजना मतलब उसमें ही चलाई जा रही है आप लोगों के इसके अंतर्गत?
1: अभी फिलहाल फिर अभी जो झारखंड सरकार के नशा मुक्ति अभियान जो चल रहा है इसमें भी हम लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। हमारे स्तर से जैसे हम लोग किशोरियों से आप रैली वगैरह निकलवाते हैं, और फिर अभी जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर भी हम लोग इस योजना में को भी हम लोग योजना मतलब कि हम लोग लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि बेटी को बचाना है और उन्हें शिक्षा उपलब्ध कराना है।
0: तो ये सरकारी योजना के तहत चल रहा है ना, आंगनबाड़ी सेविका के जरिए और अन्य लोगों के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि नशा मुक्त हो और लड़कियों का भी विकास हो, बेटियों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है ना? तो और कुछ बताना चाहेंगे आप जो कि आपके कार्यालय के द्वारा चलाया जा रहा है?
1: अभी तो फिलहाल हमारे कार्यालय से यही योजना चल रही है, और अभी जैसे सरकार की अभी मैया समान योजना जो चल रही है वो हम लोग उसमें सहयोग करते हैं कि जैसे आवेदन करना, जैसे किसी को पैसा नहीं मिल रहा है तो हम लोग पता कर देते हैं कि कैसे आवेदन करेंगी तो उसको मिलेगा और क्या क्या करना है, बस और इतने ही सारे योजना है हमारे विभाग में।
0: अच्छा, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बहुत सारी बातें हम जानी, और आप क्या संदेश देना चाहते हैं?

0: अपने श्रोताओं को?
1: हम अपने श्रोताओं को यही संदेश देना चाहते हैं कि पोषण, हमें संतुलित आहार का ही उपयोग करना चाहिए ताकि हमारे आने वाला जो भविष्य है वो अच्छा रहे, क्योंकि हम लोग खान पान पर नहीं ध्यान देते हैं, इस वजह से भी गर्भवती माताएं मतलब कुपोषित हो जाती है और कुपोषित बच्चों को जन्म देती है। इसलिए हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग स्वस्थ रहिए, क्योंकि जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी आने वाला पीढ़ी भी स्वस्थ रहेगा।
0: जी, तो करिश्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सारी जानकारी दी हमारे श्रोताओं को। आशा करती हूँ आपकी जो बातें हैं उन लोगों को समझ में आएंगी। फिर से आपका धन्यवाद।
1: धन्यवाद
2: श्रोताओं। अभी आप भेंट वार्ता सुन रहे थे कि आंगनबाड़ी सेविका के द्वारा कि किस तरह से आंगनबाड़ी का संचालन किया जाता है, कौन कौन सी योजनाएँ चलाई जा रही हैं। अब एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए, जिला में मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत फोस्टर केयर योजना चलाई जा रही है, तो इसमें क्या किया जा रहा है उसके बारे में आपको हम बता देते हैं कि जो भी चाहते हैं फोस्टर केयर की जानकारी के लिए आप दैनिक समाचार पत्रों व अन्य माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित करना, शो फिल्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से सामाजिक जागरूकता प्रदान और प्रचार प्रसार ये सब कर सकते हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी इसमें निर्देश दिए गए हैं। तो इसमें जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, इसमें जो माता पिता चाहते हैं कि बच्चों को वो गोद लें और उन्हीं की देखभाल करें, उसके लिए ये योजना चलाई जा रही है। इसके लिए आपको हम बता दें कि यह गोद लेने की प्रक्रिया नहीं है, यह एक अस्थायी व्यवस्था है जहां बच्चा प्यार, सुरक्षा और गरिमा के साथ रहता है जब तक वो फिर से अपने जैविक परिवार में ना चला जाए। अगर आप भी किसी बच्चे के जीवन में खुशियां लाना चाहते हैं तो आप भी पालक माता पिता बनकर अपना योगदान दे सकते हैं। इसके लिए भावी माता पिता की आयु का जोड़ 115 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, और यदि अकेला व्यक्ति किसी बच्चे के पालक बनना चाहते हैं तो उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष तथा दोनों का सम्मिलित आयु 115 से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन एकल पुरुष को बालिका नहीं दी जा सकती। अगर आप पश्चिमी सिंहभूम जिला के निवासी हैं और आपके पास मुखिया द्वारा प्रमाणित आय प्रमाण पत्र, पुलिस स्टेशन से प्राप्त या फिर प्रज्ञा केंद्र से प्राप्त पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट हो, पालक माता पिता शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ हो, परिवार हर बच्चे का अधिकार, तो आइए जरूरतमंद बच्चों को हाथ बढ़ाइए और उनके लिए उनके एक अच्छा भविष्य दें। इस योजना के तहत जरूरतमंद इच्छुक परिवारों को मासिक 4000 रुपये की आर्थिक सहायता भी प्रदान किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए आप बाल जिला बाल संरक्षण इकाई 9955131364 अथवा 9090700489 पर संपर्क करें, या फिर जिला बाल संरक्षण इकाई जिला उपायुक्त का कार्यालय तीसरा तल्ला चाईबासा में आकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये जानकारी जिला बाल संरक्षण इकाई पश्चिमी सिंहभूम द्वारा जन सूचनार्थ जारी किया गया है। तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम सन्मार्ग अब यहीं संपन्न होता है। अब छवि को इजाजत दीजिए, नमस्कार। श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आपको लिए चलते हैं हमारे आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल।
3: क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ
4: और कल होगा भी नहीं।
3: तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है?
5: ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं।
3: और RBI कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो, अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे,
4: और फास्ट रिटर्न से बच के
3: और फास्ट बॉलिंग से भी।
6: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: दी, ये देख कैसे?
2: हैप्पी बर्थडे भाई।
1: दीका,
3: हाँ मेरा फेवरेट कलर
2: हमेशा शॉपिंग।
4: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
5: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
6: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
4: आई नो ना।
6: आरबीआई कहता है,
7: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
8: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्री,
4: तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
2: दिमाग चार्ज कर रखना।
6: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
2: देखा
4: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल,
6: अब क्या करोगे?
4: तेरी वाइफाई है ना?
2: बुद्धू सुधर जा।
6: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
4: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
6: आरबीआई कहता है,
7: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
2: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कहा है कि CBSE 12वीं की परीक्षा में ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली से मूल्यांकन में बढ़ी है पारदर्शिता। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने आज देवघर जिले के रोहिणी नावाडी में रेलवे ओवरब्रिज का किया उद्घाटन। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची के होटवार केंद्रीय जेल में बंद एक महिला कैदी के साथ हुए यौन शोषण का उठाया मुद्दा, की कार्रवाई की मांग। मौसम में बदलाव जारी, राज्य का सबसे ठंडा जिला रहा लातेहार, वहीं पलामू राज्य का सबसे गर्म जिला रहा। और धनबाद में आयोजित 5वीं झारखंड स्टेट किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में रांची जिले के खिलाड़ियों ने किया शानदार प्रदर्शन, कई स्वर्ण पदक अपने नाम किए। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कहा है कि CBSE की 12वीं की परीक्षा में ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली से मूल्यांकन में पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ी है। 12वीं के परिणामों पर आज नई दिल्ली में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार ने बताया कि विद्यार्थियों ने मार्किंग और उत्तीर्णता प्रतिशत में मामूली गिरावट पर चिंता जताई है। सचिव ने बताया कि CBSE ने इस वर्ष ऐसी प्रणाली लागू की है जिससे मूल्यांकन में अधिक पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित होती है। सचिव ने कहा कि CBSE ने पुनर्मूल्यांकन शुल्क कम कर दिया है।
1: CBSE ने वर्ष 2014 में OSM की शुरुआत किया था और इसको हम लोगों ने इस वर्ष रीइंट्रोड्यूस किया है। OSM विश्व में ऐसे बहुत से इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके द्वारा ये किया जा रहा है और ये एक नॉर्म है जो विदेशों में भी बन गया है, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरी सिस्टम को ट्रांसपेरेंटली तरीके से कर पाने के लिए हम सक्षम हो पाते हैं।
0: सिमडेगा के महुआबुआंग थाना में पदस्थापित एक जवान की अपने ही हथियार से गोली लगने से मौत हो गई है। वहीं रांची जिले के तिरगा गांव में के रहने वाले थे। घटना उस वक्त की हुई जब जवान अपने हथियार की सफाई कर रहे थे। जिले के पुलिस अधीक्षक श्रीकांत एस खोटरे ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला दुर्घटनावश गोली चलने का प्रतीत हो रहा है।
2: महाबोन थाना से अपना प्राप्त हुई कि इसमें आरक्षी राजू तिरपी में प्रतियुक्त उनके अपने हथियार से गोली लगने के कारण मृत्यु हुई है। प्रथम दृष्टया एक्सीडेंटल पाने का मामला सामने आ रहा है।
0: रांची और आसपास के इलाकों में अपराध का अंकुश लगाने के लिए रांची पुलिस ने कल रात बड़ा अभियान चलाया। वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन के निर्देश पर जिले भर में ऑपरेशन प्रहार के तहत एक साथ छापेमारी की गई। इस कार्रवाई में 100 से अधिक अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 220 से ज्यादा लंबित वारंटों का निष्पादन भी किया गया। इस संबंध में वरीय पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस टीमों ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में दबिश देकर फरार अपराधियों, वारंटियों और संदिग्धों को गिरफ्तार किया। गढ़वा में जनगणना के प्रथम चरण का कार्य आज से शुरू हो गया है। गढ़वा के उपायुक्त अनन्य मित्तल ने बताया कि कर्मचारी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जाकर सर्वेक्षण कार्य कर रहे हैं तथा परिवारों से आवश्यक जानकारियां एकत्रित कर रहे हैं। जिला प्रशासन की ओर से इस महत्वपूर्ण कार्य को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने के लिए पूरी तैयारियाँ की गयी। राज्य में संचालित केंद्र सरकार की नल जल योजना पर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने आ गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने राज्य सरकार पर नल जल योजना को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस योजना के लिए सरकार के पास खजाने में 7,000 करोड़ पड़े हुए हैं, लेकिन खर्च नहीं किए जा रहे हैं।
3: नल जल योजना जो माननीय प्रधानमंत्री जी का महत्वाकांक्षी योजना है, सर देश के सारे राज्यों में योजना बहुत अच्छे प्रकार से प्रत्येक घरों के दरवाजे तक पहुंची है, लेकिन झारखंड में योजनाएं फिजड़ी साबित हुई है। आज भी सरकार के खजाने में 7,000 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, तो उस पैसे को खर्च करने की इनमें मादा नहीं है। तो जो पैसे खर्च किए गए हैं इस योजना में, उस पैसे को भी भ्रष्टाचार के आखंड में डुबाने का काम किया।
0: इस मामले में मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने भाजपा के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि केंद्र सरकार राज्य को भीख नहीं दे रही है, यह हमारा अधिकार है।
4: जल नल योजना किसकी है? केंद्र की है। केंद्र अपनी राशि दे रही है, राज्य सरकार अपनी राशि दे रही है, और राज्य की ये परेशानी है कि जब तक केंद्र अपना आवंटन नहीं करता, राज्य अपने हिस्से का पैसा उस प्रोजेक्ट में नहीं लगा सकता है। और कोई हम लोग किसी से भीख तो नहीं मांग रहे, ये हमारा अधिकार है, केंद्र हम लोगों पर कोई मेहरबानी नहीं कर रही, लेकिन जो एक भ्रम फैलाने का ये लोग प्रयास करते हैं।
0: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के साथ पिछले दिनों चाईबासा परिसदन में जिला प्रशासन की ओर से किए गए कथित उपेक्षापूर्ण व्यवहार पर भाजपा ने कड़ा ऐतराज जताया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने आज सोशल मीडिया पर कहा है कि किसी का पद स्थायी नहीं होता, लेकिन लोकतांत्रिक परंपरा हर हाल में कायम रहनी चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि अर्जुन मुंडा के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया गया वह केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि लोकतांत्रिक परंपराओं, प्रशासनिक मर्यादाओं और जनजातीय समाज के सम्मान का भी विषय है। श्री साहू ने आगे कहा कि इसके पहले चाईबासा उपायुक्त की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री मधुकोड़ा के साथ भी असम्मानजनक व्यवहार किया जा चुका है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना 2027 के चल रहे पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल V.A. वारड़े स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी पूछ सकते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @

0: AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @news_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची के होटवार केंद्रीय जेल में बंद एक महिला कैदी के साथ जेल अधीक्षक के द्वारा यौन शोषण और गर्भवती किए जाने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जेल आईजी मामले को दबाने, फाइलें गायब करने और सबूत मिटाने के लिए महिला कैदी को गुप्त स्थानों व अस्पतालों में ले जा रहे हैं, जबकि गवाह कर्मियों का तबादला कर उन्हें चुप कराया जा रहा है। श्री मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चेतावनी दी कि यदि दोषी अधिकारियों को बर्खास्त कर गिरफ्तार नहीं किया गया तो यह माना जाएगा कि सरकार भी इस कृत्य में शामिल है। उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग और उच्चतम न्यायालय से संज्ञान लेकर झारखंड की जेलों में महिला कैदियों के उत्पीड़न पर कार्रवाई की मांग की है। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने आज देवघर जिले के रोहिणी नावाड़ी में रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन किया। इसका निर्माण प्रधानमंत्री के विकसित भारत 2047 के मिशन अंतर्गत किया गया है। मौके पर सांसद ने कहा कि इस रेलवे ओवरब्रिज के चालू होने से देवघर से एम्स और रांची की दूरी कम होगी। वहीं लोगों ने इस कार्य के लिए रेल मंत्री वैष्णव के प्रति आभार व्यक्त किया है। झारखंड में मौसम लगातार करवट बदल रहा है। पिछले 15 दिनों से राज्य के विभिन्न जिलों में हो रही बारिश के कारण लोगों को भीषण गर्मी से काफी राहत मिली है। आज राज्य का सबसे ठंडा जिला लातेहार रहा, जहां अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं पलामू राज्य का सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 41.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राजधानी रांची समेत कई जिलों में बीते दिनों हुई बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे मौसम अपेक्षाकृत सुहावना बना हुआ है। लोहरदगा जिला के 47वें स्थापना दिवस के अवसर पर आज जिला प्रशासन की ओर से रन फॉर लोहरदगा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा, विद्यार्थी और आम नागरिकों ने भाग लिया। इस अवसर पर उपायुक्त संदीप कुमार मीना ने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि स्वास्थ्य के प्रति सजग रहकर खेल कूद को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। जमशेदपुर में आयोजित झारखंड राज्य कबड्डी संघ की विशेष बैठक में वर्ष 2026-2030 के लिए नए कार्यकारिणी के गठन पर चर्चा की गई। महासचिव संजय कुमार झा की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि जून के द्वितीय सप्ताह में चुनाव के माध्यम से नई कमेटी का गठन किया जाएगा। बैठक में सभी जिला कबड्डी संघों को 31 मई तक अपनी बैठकों का आयोजन कर वार्षिक कार्यक्रमों की रूपरेखा राज्य संघ को सौंपने का निर्देश दिया गया। वहीं वर्ष 2026-27 के खेल कैलेंडर को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई और सीनियर राज्य कबड्डी प्रतियोगिता 4 जून से धनबाद में आयोजित करने का फैसला किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने कहा है कि CBSE 12वीं की परीक्षा में ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली से मूल्यांकन में बढ़ी है पारदर्शिता। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने आज देवघर जिले के रोहिणी नावाड़ी में रेलवे ओवरब्रिज का किया उद्घाटन। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची के होटवार केंद्रीय जेल में बंद एक महिला कैदी के साथ हुए यौन शोषण का उठाया मुद्दा, की कार्रवाई की मांग। मौसम में बदलाव जारी, राज्य का सबसे ठंडा जिला रहा लातेहार, वहीं पलामू राज्य का सबसे गर्म जिला रहा। और धनबाद में आयोजित 5वीं झारखंड स्टेट किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में रांची जिले के खिलाड़ियों ने किया शानदार प्रदर्शन, कई स्वर्ण पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी रांची है, आइए सुनते हैं जिले में आजकल।
2: जिले में आजकल।

0: सिमडेगा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे सिमडेगा संवाददाता।
1: झारखंड अधिवित्य परिषद द्वारा इस वर्ष आयोजित इंटरमीडिएट की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सिमडेगा जिले के टॉप 10 विद्यार्थियों को उपायुक्त कंचन सिंह ने अपने आवासीय परिसर में सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि
2: 12th के एग्जाम में सिमडेगा के बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया, विशेषकर से वाणिज्य और कला के क्षेत्र में जो बच्चे थे उनका प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा। और वाणिज्य में तो हमारे ही जिले का एक बच्चा स्टेट टॉपर भी है। उनको सम्मानित करने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए और आगे बढ़ने की शुभकामनाएं देने के लिए आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों के जो टॉपर्स बच्चे थे उनको आज मैंने अपने आवास पर बुलाया था ताकि उनके साथ कुछ समय व्यतीत कर सकूँ, उनके भविष्य के लिए मोटिवेट कर सकूँ और उनके घर कोई समस्याएं हैं तो उनका समाधान कैसे प्रशासन कर सकता है इसके बारे में जान सकते। हर पंचायत भवन में एक ज्ञान केंद्र है जिसमें कि काफ़ी संख्या में पुस्तकें हैं, कंप्यूटर है, इंटरनेट है और उसकी सुविधा का लाभ बच्चे उठा सकते हैं, न सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बल्कि सामान्य रूप से भी अगर उनको घर में पढ़ने का माहौल नहीं है तो वहाँ पर उनको एक बेहतर माहौल मिलेगा, फिर पढ़ाई कर सकते।
1: सिमडेगा नगर परिषद के अध्यक्ष ओलिवर लकड़ा ने नगर परिषद क्षेत्र में सभी आवश्यक जन सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात कही है। नगर परिषद की एक बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि
3: नगर परिषद एरिया, उस एरिया में जितना स्कूलें हैं विद्यार्थियों के लिए भी कुछ हम लोग प्रोग्राम लाए हैं, एक्टिविटीज लाए हैं जो कि ये सिमडेगा नगर परिषद के लिए पहला मतलब ऐसा पहल है, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में बोले चाहे वह खेल के क्षेत्र में बोले, ये हमारे बोर्ड की बैठक में सर्वसम्मति से ये पारित किया गया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों से खर्चों में कटौती को लेकर की गई अपील पर सिमडेगा वासी सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। शिक्षक पुरुषोत्तम कुमार ने कहा कि वैश्विक स्थिति को देखते हुए हमें पहले से ही सावधानी बरतने की जरूरत है।
4: देखिए, इस विषय में कहावत है, आग लगने से पहले कुआं कोड़ना चाहिए। तो ये कहावत जो है, हमारे मुखिया है प्रधानमंत्री जी और वे पहले ही लोगों को हिदायत कर रहे हैं कि हमें जो है सो उपाय ये है कि वे जैसे घर के बजट को, घर का मुखिया जो है सो सोचता है कि हम किस प्रकार से घर को चलाएंगे, उसका पहले से ही व्यवस्था करने का उपाय सोचता है। इसी प्रकार हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है लोगों को कह रहे हैं कि ईरान, इजराइल, अमेरिका में जो युद्ध चल रहा है, इस युद्ध के चलते जो है हमारा खर्च में जो हो जाएगा उस खर्च को बचाने के लिए कटौती करने के लिए कह रहे हैं कि कुछ हमारे जो है सो इस प्रकार बचत करें। आज युद्ध हो रहा है, कब तक चलेगा कहना मुश्किल है, अपना बजट को बचा करके चले, आने वाला समय में हमें काम दे। इसीलिए इनका अपील बहुत ही अच्छा है लोगों के लिए, इनको हमें अमल करना चाहिए।
1: सिमडेगा जिले में जनगणना 2027 के तहत प्रथम चरण में 16 मई से 14 जून तक मकान सूचीकरण एवं आवास संबंधी जानकारी संकलित की जा रही है। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा।
0: अभी आप सुन रहे थे सिमडेगा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे थे हमारे रांची केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी पसंद।

कार्यक्रम में आपकी पसंद सुनने वाले सभी श्रोताओं को छवि का प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, पेश कर रहे हैं राजपूत फिल्म का ये नगमा। किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और इस गीत को सुनना चाहते हैं बड़ा नेमडी चाईबासा से तुलसी पथिक, मीरा देवी, बजरंगी ठाकुर, मीतू रंजन, राजीव रंजन, मौलिक रंजन, अमित कुमार, सुमित कुमार और शुभम कुमार। सरायकेला गांव कीता से राधा कृष्णा गोप, सुनीता गोप, उमा गोप, गीता गोप, रीता गोप, सरस्वती गोप, आराध्या गोप, सुमित कुमार, अमित कुमार, अंकित गोप, अभिषेक गोप, आशीष गोप, विक्की गोप, शुभम गोप, विनोद गोप, राजू गोप, राजन गोप और माहिर गोप। पुणे से पंकज बोड़ोदे, आर्या आदि, बेटी बोड़ोदे, चंद्रप्रभा बोड़ोदे। आमजोड़ा पोखरिया से मालुका से हैं शिवा गोप, प्रेम गोप, संगीता, शिल्पी, लिपि और दीपाली गोप। जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत भाटिया और पप्पी भाटिया। इन सब की फरमाइश पर चलिए सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद छवि के साथ। अगला गीत हम पेश कर रहे हैं, फिल्म का नाम है शराबी। आशा भोसले की आवाज है, अनजान के बोल और संगीत है बप्पी लहरी का। इस गीत को सुनना चाहते हैं तालुका बुरहानपुर ग्राम मोहत मध्य प्रदेश से भैया तड़वी, रीना तड़वी, सनी बाबू, रोजू भाई तड़वी, परू, मुबारक पारेकर, मनोहर ठाकुर, तैमूर पारेकर। मुकाम पोस्ट भोकरी महाराष्ट्र से अरशद तड़वी, आरिश अरसलान, यूनुस तड़वी। सदाबहार रेडियो श्रोता संघ मोहत जिला बुरहानपुर से मुशर्रफ खां तड़वी, जरीना तड़वी, मुबारक तड़वी, परवेश तड़वी, बीटिया रोजमीन तड़वी, तैमूर तड़वी और समस्त तड़वी परिवार। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मिका, बलविंदर बीरक, जेतिंग बीरक और मिका बीरक। सरायकेला पहाड़ापुर दिशावली ग्राम पहाड़पुर से शिवम शिवाजी मुंट्री, सुरुमानी मुंट्री, हीरामणि मुंट्री, हिमांती मुंट्री, डोबरू मुंट्री, साजन मुंट्री, सिद्धेश्वर मुंट्री, पहाड़ापुर शिवाजी, डोबरू मुकेश, कुशल मुंट्री, जानुम सिंह मुंट्री, सिद्धिबो सोना बाबू सोना, FM शिवा मुंट्री। शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और श्री श्रीवास्तव। अमरपुर पिंडरा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, वंशी लाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवली श्रीवास्तव। चलिए इन सब की फरमाइश पर हम आपको सुनाते हैं ये प्यारा सा नगमा।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद छवि के साथ। अगला गीत आपको हम सुनवा रहे हैं, फिल्म का नाम है पुकार। आशा भोसले और किशोर कुमार और साथियों की आवाजें हैं। इस गीत को सुनना चाहते हैं लक्षणपुर से जीवनलाल रजक, रामजी साहू, बाबा कुटी रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, भटगांव बलौदा बाजार से रामदुलार साहू, नीलिमा साहू, कासम कॉलोनी सनावत मध्य प्रदेश से यूनुस खत्री, शफी खत्री, इद्रिस खत्री, नूर मोहम्मद खत्री, कासिफ हासिम, इरफान मीना, बेटी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल ढोमने, अर्जुन गवेनकर और धीरज गवेनकर, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, लक्षणपुर से विश्वनाथ साहू, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी और दंतरेगी से भागवत वर्मा। चले इन सब की फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं कि प्यारा सनकमा।

0: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
1: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
2: बोले सब ओड़ा वापस को रुड़ करना धरा रे नका गे हम बोले रुड़ तबन में अले परिवार से मतलब पूरे ये ना
3: वरना मंगलोरा को गांव बरगड़ा आड़की थाना तो वो जंगल गया है तो आउ का कहाँ बना है वो लोग आउ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम रे सुने पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखन तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
4: नाम है रनबला देवी गाँव बारे भक्तो था तो घर आई में हमारे घर बहुत दुख के बात है तो अखन बात हो जा है
5: मुकुम बुरन सिंह तमसोय अनिता तमसोय भरूपा सेना करना ऐसे दुखुर मिनाइया यापा मैं रियल तपा मैं रियल वाह बेटा निका
6: अन्यान तुम दो बुंबई कोड़ा पटन तुम गुंडे कोड़ा अन्य हम दो कोदमरी कोड़ा और पटन पटन तुम कितने कोड़ा मिनिमल बुरी ने बागिया तो कि दोनों से आरती कोलो पुलिस कोलो में लड़ाई चलाओ तमे दुर्गम गया तब जाए तेरे काका बुंग हो उन्हें बुको को काको मेल में है
7: अलिंग मुनि सुरेन पे ते आप ही लेता ना लिंग से जा हुरा रे मिने रो जिता हुरा रे मिने रो तो बुगिन हुरा ते ससेन का है वो आगे बिटा हुरेन का अली आया न तुम ते ना आप ही लेता ना।
1: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
8: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
9: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: స్వయం ఇది కట్టుపడే భారతీయ సేనా.
1: श्रोताओं, इन महत्वपूर्ण संदेशों के बाद फिर से स्वागत है आपका कार्यक्रम आपकी पसंद में. आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद छवि के साथ. अगला गीत हम पेश कर रहे हैं, फिल्म का नाम है प्यारा दुश्मन. उषा उत्थुप और साथियों की आवाजें हैं. इस गीत को सुनना चाहते हैं अहमदपुर खैगांव खंडवा से कैलाश फुलमाली, दीपक फुलमाली, कृष्णा वर्मा और समर फुलमाली. ग्राम अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर, गुड़िया ठाकुर. भाटापारा दंतरेगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा. गांव चांदपुर पोटका से संतोष कुमार भगत, श्रीमती बासंती भगत, मृणाल कांति भगत, चांदनी भगत, मास्टर आयुष भगत, राजकुमार भगत. कॉलेज रोड घाटशिला से सोना रूपा, मोनिका, शिवम, मौसमी, संतोष, आनंद. न्यू कॉलोनी निमडी चाईबासा से ठाकुर प्रसाद रंगीला, निर्मला देवी, अर्चना राम, आनिश, आंश, अंशु और मुन्ना. चलिए इन सब की फरमाइश पर ये सुनवाते हैं प्यारा सनम.

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में आपको हम सुनवाने जा रहे हैं फिल्म राजकुमार का ये गीत मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में। शंकर जयकिशन का संगीत है और इस गीत को सुनना चाहते हैं प्रखंड खरसवा गांव नारायणपुर से कैलाश बाबा आश्रम से खेत्रो मोहन साहू नायडू महतो बाबा कैलाशी मुखिया बड़ा आमदा से पंचायत से प्रधान मारी सोए बड़ा बाबू गोपालपुर से संतोषी महतो जय महतो बड़ा बाबू सुपाई साई से इंद्रजीत ताती मधु रानी दास और दृष्टि बड़ा बाबू सुपाई साई से देवेंद्र ताती राकेश ताती कुमारी निशा ताती प्रकाश ताती ललित प्रधान सुदर्शन प्रमाणिक श्यामदेव नायक और देवेन बाबू ग्राम गिले लोहर से कोमल बेसरा बासंती अनु रमेश बनवाली सिद्ध कुमारी और पूजा और बेसरा परिवार। चले इन सब की फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं फिल्म राजकुमार का ये नगमा।

श्रोताओं, इन्हीं गीतों के साथ आज का कार्यक्रम आपकी पसंद अब यहीं संपन्न होता है। अब इस कार्यक्रम से छवि को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

कार्यक्रम रजनीगंधा सुनने वाले सभी श्रोताओं को छवि का प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, सबसे पहले हम पेश कर रहे हैं फिल्म राजा बाबू का ये नगमा अभिजीत और साथियों की आवाज़ों में। इस गीत को सुनना चाहते हैं गांव लोहड़गढ़ ठाकरावाला फिरोजपुर से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह, गुरमान सिंह, पोलरा गुन्नू सिंह। सादुल शहर राजस्थान से ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश और वेद प्रकाश चौहान। दास मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर रही और मेरा जहां, ये हैं आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से। चलिए इन सब की फरमाइश पर हम आपको सुना रहे हैं कार्यक्रम का पहला गीत। फिल्म का नाम है राजा बाबू और अभिजीत और साथियों की आवाज़ें हैं।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रजनीगंधा छवि के साथ। अगला गीत हम पेश कर रहे हैं, फिल्म का नाम है राजा हिंदुस्तानी। अलका याग्निक और कुमार शानू की आवाजें हैं, समीर के बोल हैं, संगीत है नदीम श्रवण का। इस गीत को सुनना चाहते हैं महुलडिया सोनुआ से नंदकिशोर महतो, राधामणि महतो, रविवारी वंदनी, संतोषी, दीपक संतोष, राहुल, अनु, तनु, भाई नंदू महतो, गुरुचरण नायक, अनसुईया नायक, सागरिका नायक, देवाशीष नायक, गुलशन नायक, किशोर महतो। सेंटोला चाईबासा से भोलाराम मधुर, विनोद कुमार पवन और मीना पवन। चाईबासा निमडी से हैं, छोटा निमडी से बाबूराम, शांति देवी, ऋतिक कुमार, कोमल और रोहन। रेलवे रोड गजडुंडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, एम फारूक शेख, अब्दुल संतार अंसारी। सहावर टाउन जिला कासगंज उत्तर प्रदेश से योगेंद्र नायक, गीता नायक, निहारिका नायक और सुशांत नायक। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबेहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय। शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नामृत राय। इन सब की फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं कि प्यारा सनकमा।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रजनीकंधा छवि के साथ। अगला गीत पेश कर रहे हैं, फिल्म का नाम है राजा रानी। अलका याग्निक और कुमार शानू की आवाजें हैं। इस गीत को सुनना चाहते हैं चांडिल हारूडी से तुलसीदास महतो, कल्पना महतो, मनोरमा महतो, मनमोहिनी महतो, संगीता महतो, संतोषी महतो, तीन बंधु महतो। अमराटोला चाईबासा से गोरख प्रसाद गुप्ता, फूलवंती गुप्ता, अभिषेक गुप्ता और अक्षत प्रसाद। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश। खमरिया बिलासपुर छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, मानस साहू और प्रतीक कुमार। चलिए इन सब की फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा नगमा।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रजनीगंधा छवि के साथ। अगला गीत हम पेश करें, फिल्म का नाम है मुझसे शादी करोगी। सोनी निगम और सुनिधि चौहान और साथियों की आवाजें हैं, समीर के बोल हैं। और इस गीत को सुनना चाहते हैं सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुला ठेकेदार नसीम बेगम, आयशा खान, हृदय खान, असमा सालिया, शुएब खान, पुत्रा मुश्ताफा खान, राव फाई, शाहिद भाई, गांधी बाका कोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर, आमा खोटरा रेंगा खार से राजेंद्र कृष्ण नेताम, देवी संदीपा नेताम, चंद्रदीप दक्षप्रिया नेताम, छत्तीसगढ़ भाटापारा दंतरेगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। चलें इन सबकी फरमाइश पर आपको सुनवाते हैं ये नगमा।

छवि आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रजनीगंधा। अब अगला गीत आपको हम सुनवाते हैं, फिल्म का नाम है मैं होना। के और वसुंधरा की आवाजें हैं, जावेद अख्तर के बोल हैं और संगीत है अनु मलिक का। इस गीत को सुनना चाहते हैं बड़ी बाजार चाईबासा से मौजम बिहारी, शमीमा खानम, जिम्मी, बिट्टू किरण, रोशनी मुस्कान, परी और नबीहा। जो जो कुर्मा से मनोज गागराई, बसंती गागलाई गागराई, सोनाली, आयशा, जितेंद्र, पीताम्बर महतो और रचना गागराई। वसुंधरा कॉलोनी सेंटोला चाईबासा से भोला राम मधुर, बड़ी बाजार चाईबासा से विनोद कुमार पवन और मीना पवन। मेहरनगर उमेरखंड महाराष्ट्र से अभिजीत ग्वाणकर राही, श्रीमती सरिता ग्वाणकर, प्रिंस एकांश ग्वाणकर। बदलापुर मुंबई से सिद्धांत ग्वाणकर, प्रणीता ग्वाणकर। आकार हाइट्स बहादुर नागपुर से वैशाली शिलेश ग्वाणकर, श्वेता समेत ग्वाणकर, कुमारी ध्वनी ग्वाणकर उपरी, लाडला टुट्टो। जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, अंजल भाटिया, नवनीत भाटिया और पप्पी भाटिया। नाजमंजिल महसूल सीतामढ़ी बिहार से अकरम हुसैन प्रिंस, इशरत अकरम, रुबीना वसीम, अरहान बाबू, हमजा बाबू, मुजम्मिल बाबू, हुमैरा नाज, सुमैरा नाज, अभिया नाज, शाहिन नाज, नूरी नाज, बच्चू शेख, चीना शेख। कोकिलवारा और आई जिला मुजफ्फरपुर से मोहम्मद फैसल शेख, नुजहत जहानाज, कांति निकेतन राजनगर से कुशवेश्वर प्रसाद गुप्ता और रुद्र गुप्ता। इन सब की फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा नगमा।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रजनीकंधा छवि के साथ। अगला गीत पेश कर रहे हैं सोनू निगम और साथियों की आवाजों में। फिल्म का नाम है मैंने प्यार क्यों किया से। समीर के बोल हैं, हिमेश रेशमिया का संगीत है और इस गीत को सुनना चाहते हैं सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभ चंद्र बजाज, पिट्टा बजाज और साहिल, गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौर, मंजुला राठौर और विशाल राठौर, मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना पंजाब से विनोद पुरी, वीपी रंजू, अशोक पुरी, सुशील पुरी, बीके पुरी, कैलाश पुरी, अनीता पुरी, ममता पुरी, मेघा पुरी, पूजा पुरी, गगन कपूर, गुंजन कपूर, लालसा कपूर, रमा कपूर, मलिक कुणाल मलिक, निधि मलिक, हरीशपुरी, सतीशपुरी, राकेशपुरी, विनोदपुरी, पालीपुरी, डीसीपुरी, अरुणपुरी, नेहापुरी, एकतापुरी, शम्मीपुरी, बोधीपुरी, सुनीलपुरी, वीके रंजू और आरएसपुरी। चलिए इन सब की फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।

just chill. श्रोताओं, आज की रजनीगंधा कार्यक्रम में बस इतना ही। आशा करती हूँ सभी गीत आपको पसंद आए होंगे। तो जाने से पहले हमारा पता नोट करें। हमारा पता है कार्यक्रम रजनीगंधा, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी चाईबासा, पिन कोड है 833201। पता एक बार फिर से दोहराते हैं, कार्यक्रम रजनीगंधा, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी चाईबासा, पिन कोड है 833201। तो आप अपने सलाह और खत हमें जरूर भेजें, आपके पत्रों का बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो अब इस कार्यक्रम से छवि को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आपको लिए चलते हैं हमारे दिल्ली केंद्र, जहां से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: स्वास्थ्य एवं सीमा शुल्क में संस्थागत सहयोग। शुश्रुष शर्मा, आकाशवाणी द हेग, नीदरलैंड्स।
1: कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेगी। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। हालांकि राजनीतिक खींचतान और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के विरोध के कारण गठबंधन मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर फैसला नहीं कर पा रहा था।
2: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन कल सुबह केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री के साथ 20 अन्य मंत्री भी शपथ लेंगे। मनोनीत मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर से मुलाकात की और उन्हें मंत्रियों की सूची सौंपी। समारोह के लिए तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में 12,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था सहित व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में 700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर आए श्री शाह ने गांधीनगर निगम की 600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने शहर में 128 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मधुर डेयरी के नवनिर्मित दूध प्रसंस्करण संयंत्र का भी उद्घाटन किया। इससे पहले दिन में श्री शाह ने गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि एक ऐसा संस्थान है जो रचनात्मकता को उद्यमिता से जोड़ता है।
3: NID एक प्रकार से रचनात्मकता के आधार पर इनोवेशन और उद्यमिता, ये तीनों को जोड़ने वाला एक संस्थान। जब NID की स्थापना हुई हो तब मुझे लगता है कि इसके उद्देश्यों को बहुत अच्छे तरीके से सोचा।
1: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। श्री जोशी ने कहा कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है।
4: आज हमने एक ही दिन में 256.4 गीगावाट की अत्यधिक मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि सिस्टम में लगातार सुधार हो रहा है। 256 गीगावाट में से जिसे हमने एक ही दिन में एक खास समय पर अत्यधिक मांग के तौर पर पूरा किया, उसका 33% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा से आया है।
5: 33% इज फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु और मुंबई के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक के लोगों की लंबे समय से लंबित मांगे अब पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने भारत म्यांमार सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। NCB ने दिल्ली से म्यांमार के सरगना थान सितवांग को गिरफ्तार किया है। थान सितवांग NCB और मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े कई मामलों में वांछित था। ब्यूरो ने कहा कि वो वर्ष 2024 के एक NCB मामले में मुख्य आरोपी है, जिसमें 14 किलोग्राम मेथमफेटामीन और 2 किलोग्राम से अधिक हेरोइन जब्त की गई थी। वर्ष 2025 के NCB मामले में भी ऐजोल में 49 किलोग्राम से अधिक मेथमफेटामीन जब्त की गई थी। हिमाचल प्रदेश में 51 शहरी स्थानीय निकायों के लिए मतदान आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। मतदान 25 नगर परिषदों और 22 नगर पंचायतों के साथ धर्मशाला, पालमपुर, सोलन और मंडली नगर निगमों में कराया गया था। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार मतदान में 69% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित चार लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने कहा कि रात भर हुए हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया है कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हुए। संयुक्त अरब अमीरात में आज अबू धाबी स्थित बाराका परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बाहर ड्रोन हमले के कारण आग लग गई। अबू धाबी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार संयंत्र के बाहर स्थित एक विद्युत जनरेटर में आग लगी। अधिकारियों ने बताया कि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ है और रेडियोलॉजिकल सुरक्षा स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भारत ने कहा है कि हॉर्मूज जल डमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने और जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की विशेष बैठक में कही। ईरान ने घोषणा की है कि वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मूज जल डमरू मध्य से सैन्य पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं देगा। ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरेफ ने कहा कि ईरान ने पहले इस जलमार्ग से सैन्य उपकरणों से लदे पोतों को गुजरने की अनुमति दी है, जो ईरान के विरुद्ध ही प्रयोग किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ये नीति बदल जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून के केरलम में 26 मई तक पहुंचने की संभावना है, जिससे चार दिनों का अंतर हो सकता है। मौसम विभाग ने कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया है। अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में भी इसी तरह के मौसम रहने की संभावना है। अगले तीन से चार दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। भारत की श्रेयांशी वलीशेट्टी ने चीन के बाउजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। इस सुपर 100 प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में श्रेयांशी को चीन की आन क्यू युआन से सीधे गेमों में 14-21, 6-21 से हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा दिया। बेंगलुरु के 223 रन के लक्ष्य के जवाब में पंजाब 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 199 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ ही बेंगलोर प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। दिन का दूसरा मुकाबला दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना 2027 के चल रहे पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल बीए वराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, नीदरलैंड्स की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन कल केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित 4 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: चांदी का तमगा जीता। और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के अपने दो रोज़ा दौरे में इस मुल्क के अपने हम मनसब के साथ दो तरफा बातचीत की। दोनों मुल्कों ने दिफा, अहम मादनियात और दिगर बुनियादी शोबों में तआवुन को मुस्तहकम बनाने से मुतल्लिक 17 मुआहदों पर दस्तखत किए हैं। दोनों रहनुमाओं ने मगरबी एशिया की सूरत हाल और आलमी सतह पर तवानाई की सप्लाई, नेस तजारती नेटवर्क पर इसके असरात पर गहरी तशवीश का भी इजहार किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि नीदरलैंड्स के उनके दौरे से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में एक नई रफ्तार पैदा हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों ने मुस्तकबिल में अपने ताल्लुकात को फ़रोग देने और आबी वसाइल, सेमी कंडक्टर्स, इख्तिरा, दिफा, पायदारी और नकलो हमल के शोबों में तआवुन को वसी करने के बारे में खाका तैयार किया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 5 मुल्कों के अपने दौरे के तीसरे मरहले में आज स्वीडन के शहर गोदनबर्ग पहुँच गए हैं, जहां उनका खैर मकदम गोदनबर्ग लैंडवेटर हवाई अड्डे पर स्वीडन के वज़ीर-ए-आज़म वुल्फ क्रिस्टर्सन ने किया। जैसे ही वज़ीर-ए-आज़म का तैयारा स्वीडन की फजाई हदूद में दाखिल हुआ, मेहमान खसूसी के तौर पर उनके हवाई जहाज की मुहाफजत स्वीडन के ग्रिपन लड़ाई जेट तैयारों ने शुरू कर दी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी को हवाई अड्डे पर बाकायदा गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया और उनका इस्तकबाल भारतीय बिरादरी के अरकान ने बड़ी गर्मजोशी से किया। इस दौरे की खासियत दो वज़ीर-ए-आज़म की एक मुश्तरका खिताब है जो वो सनद से मुतालिक यूरोपीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस से करेंगे। सीओज की इस गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जनाब मोदी के साथ यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वोन देर लेयन शामिल रहेंगी। गोदनबर्ग से साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद शहजाद।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के अपने हम मनसब उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ वफ्द की सतह की बातचीत कर रहे हैं। तवक्को है कि दोनों रहनुमा तिजारत, AI, स्टार्टअप समेत मुख्तलिफ शोबों में तबादले ख्याल करेंगे। कांग्रेस रहनुमा VD सतीशन की क्यादत में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में हलफ लेगी। कांग्रेस ने इस महीने की 14 तारीख को VD सतीशन को केरलम का अगला

0: वज़ीर-ए-आला नामजद किया था, जिसके साथ ही 10 दिन से जारी सियासी ड्रामा और गैर यकीनी की सूरत हाल खत्म हो गई। कांग्रेस की क़यादत वाले मुत्तहदा जमहूरी महाज यूडीएफ ने केरलम असेंबली इंतखाबात में 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत हासिल की, तहम मुख्तलिफ ग्रुपों की लॉबिंग और कारकुनों के एहतजाज के बायस मस्कूरा इत्तेहाद वज़ीर-ए-आला के नाम पर फैसला नहीं कर पा रहा था। तफसील हमारे नामानिगार से।
1: कांग्रेस के सीनियर लीडर वीडी सतीशन कल केरलम के वज़ीर-ए-आला के तौर पर हलफ लेंगे। उनके हमरा 20 दिगर वज़रा भी हलफ लेंगे। नामजद वज़ीर-ए-आला वीडी सतीशन ने आज शाम गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात की और उन्हें वज़रा की फहरिस्त पेश की। तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में 12,000 अफराद के बैठने के इंतजाम समेत वसी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: दाखिली उमूर और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने आज गुजरात के शहर गांधीनगर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन NID के इख्तरा और इब्तदाई कारोबार के मरकज का इफ्तिताह किया। जनाब शाह ने इस मौके पर इस इदारे की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने कहा कि एक ऐसा इदारा है जो तख्लीकी सलाहियत को कारोबार से जोड़ता है। उन्होंने कहा कि NID जैसे इदारे नौजवानों को इख्तरा और पेशेवराना तरक्की के मौजूं प्लेटफॉर्म फराहम करते हैं।
2: NID एक प्रकार से रचनात्मकता के आधार पर इनोवेशन और उद्यमिता, इन तीनों को जोड़ने वाला एक संस्थान। जब NID की स्थापना हुई हो तब मुझे लगता है कि इसके उद्देश्यों को बहुत अच्छे तरीके से सोचा हो।
0: मरकजी वजीर पीयूष गोयल भी इस मौके पर मौजूद थे। जनाब शाह गुजरात के 2 दिन के दौरे पर हैं। उन्होंने आज गांधीनगर में मदर डेयरी के 5 लाख लीटर की गुंजाइश वाले नव तामीर शुदा प्लांट का भी इफ्तिताह किया। अहमदाबाद में उन्होंने मिलियन माइंड्स टेक पार्क और ग्लोबल कैपेबिलिटी मरकज कैंपस का भी इफ्तिताह किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू इस महीने की 25 तारीख को साल 2026 के लिए पद्म अवार्ड्स अता करेंगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजारत दाखिला ने कहा है कि सदर जमहूरिया राष्ट्रपति भवन में मुनक़िद होने वाली पहली शहरी एजाज से मुतअल्लिक तकरीब के दौरान पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री अवार्ड्स अता करेंगी। इस साल भारत सरकार ने मजमूई तौर पर 131 पद्म अवार्ड्स का ऐलान किया है। रेलवे की वजारत ने त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के पीछे के 2 डिब्बों में आग लगने के वाक़े की आला सतह पर तहकीकात का हुक्म दिया है। आज सुबह तकरीबन 5:15 बजे कोटा डिवीज़न के नागदा जंक्शन के करीब त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के पीछे के 2 डिब्बों में आग लग गई। इन डिब्बों में एक गार्ड कोच और एक AC 3 टियर कोच शामिल था। वजारत के मुताबिक कोच में नस्ब हिफाजती निज़ाम फौरी तौर पर मुतहरिक हो गया और ट्रेन खुद ब खुद रुक गई। ट्रेन के अमले ने फौरन आग से मुतासिर दोनों डब्बों को अलग किया, जिसकी वजह से किसी भी मुसाफिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। रेलवे के मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने आज बेंगलुरु और मुंबई के दरमियान एक नई एक्सप्रेस ट्रेन को वर्चुअल वसीले से झंडी दिखाकर रवाना किया। इस ट्रेन से कर्नाटक और महाराष्ट्र के दरमियान रेल कनेक्टिविटी में इजाफा हुआ है। जनाब वैष्णव ने इस मौके पर कहा कि जनूबी और मशरकी कर्नाटक के लोगों का एक देरीना मुतालबा पूरा किया जा रहा है। उन्होंने ये ऐलान भी किया कि उम्मीद है कि बेंगलुरु और मुंबई के दरमियान वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जल्द ही शुरू हो जाएगी। शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर राम मोहन नायडू ने आज दिल्ली सरकार की जानिब से हवाई जहाज़ों के ईंधन ATF पर वैल्यू एडेड टैक्स को 25% से कम करके 7% करने के फैसले की तारीफ की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि ऐसे वक्त में जब हवाबाजी का शोबा आलमी सतह पर ऑपरेशनल और माली दबाव का सामना कर रहा है, रियासती हुकूमतों के इस किस्म के सरगर्म इकदाम एयरलाइंस को ज़रूरी सहारा फराहम करते हैं और मुसाफिरों के लिए फजाई सफ़र को सस्ता रखने में मदद फराहम करते हैं। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि महाराष्ट्र के विदर्भ ज़िले में किसानों की खुदकुशी की एक बड़ी वजह पानी की किल्लत है। उन्होंने ये भी कहा कि पानी की बचत इस बुहरान का मुअस्सर तरीन हल है। नागपुर में कौमी कॉन्फ्रेंस नागपुर जल संवाद से खिताब करते हुए जनाब गडकरी ने कहा कि पानी के तहफ्फुज़ से मुतअल्लिक़ कोशिशों की कामयाबी के लिए लोगों का इनमें हिस्सा लेना लाजमी है। उन्होंने ग्राम पंचायतों से कानून साज अरकान तक तालमेल के साथ उठाए गए इकदाम पर जोर दिया ताकि गाँवों और किसानों की खुशहाली को यकीनी बनाया जा सके। नशीली अशिया पर काबू पाने वाले ब्यूरो NCB ने मुल्कों के माबैन नशीली अशिया की नाजायज तिजारत के उन नेटवर्क्स के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हासिल की है जो भारत म्यांमार सरहद पर अपनी कार्रवाइयां अंजाम देते हैं। ब्यूरो ने म्यांमार में मुकीम सरगना थांगकिंग तुआंग को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। NCB ने एक बयान में कहा है कि यह गिरफ्तारी वसी तौर पर निगरानी, खुफिया मालूमात में इजाफे, तालमेल के साथ किए जाने वाले बैन रियासती तालमेल और लगातार पीछा करने की कार्रवाइयों की बदौलत की गई है। थांगकिंग तुआंग कई तरह की मनशियात और नशीले मादों के कानून के तहत मतलूब था। ये केस NCB और मनशियात से मुतल्लिक कानून नाफिज करने वाली कई एजेंसियों ने दर्ज की थी, जिसमें से NCB ने 2 केस दर्ज किए थे। नई और काबिल तजदीद तवानाई के मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने एक ही दिन में 256.4 GW की बिजली की मांग को पूरा करने में, जो अब तक की सबसे बड़ी मांग है, कामयाबी हासिल की है। एक प्राइवेट अंग्रेजी रोजनामे के साथ बातचीत में जनाब जोशी ने कहा कि बिजली की 33% मांग काबिल तजदीद तवानाई के वसायल से पूरी की गई है। वजीर मौसूफ ने यह भी कहा कि इस बड़ी तब्दीली से तवानाई की सलाहियत में बड़ी तेजी से इजाफे, ग्रिड को मुस्तहकम बनाने और मुल्क की तरक्की के सफर को तकवीत देने में माहौल के लिए साजगार तवानाई के बढ़ते हुए हिस्से का अंदाजा होता है। रूस में मास्को और आसपास के इलाकों पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में 4 अफराद की मौत हो गई है, जिनमें एक भारतीय मजदूर भी शामिल है। मास्को के मेयर सरगई सुबियानिन ने बताया कि रात भर हुए इन ड्रोन हमलों में कम से कम 12 अफराद जख्मी भी हुए हैं। रूस के हुक्काम के मुताबिक मास्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को तबाह भी किया गया है। यूक्रेन के सदर विलोदमीर जेलेंस्की ने इन हमलों की तस्दीक करते हुए इन्हें दुरुस्त कार्रवाई करार दिया। इस दौरान रूस में भारतीय सफारतखाने ने सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में बताया कि मास्को को मुख्तलिफ इलाकों में हुए ड्रोन हमलों में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई, जबकि 3 दीगर जख्मी हो गए। सफारतखाने ने मजीद बताया कि सफारतखाने के अहदेदारों ने हादसे की जगह का दौरा किया और अस्पताल में जेर इलाज जख्मी मजदूरों की कैफियत दरियाफ्त की। भारत के महकमे मौसमियात का कहना है कि जनूब मगरबी मानसून इस माह की 26 तारीख को केरलम में दस्तक दे सकता है। महकमे मौसमियात ने इम्कान जाहिर किया है कि मॉडल एरर की बुनियाद पर इसमें 4 रोज आगे या पीछे होने की भी गुंजाइश है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि जनूब मगरबी मानसून के जनूब मशरकी बहिरे अरब के कुछ मजीद हिस्सों, जनूब मगरबी और जनूब मशरकी खलीज बंगाल, अंडमान जजायर और बहिरे अंडमान के बाकी हिस्सों और मशरकी वस्ती खलीज बंगाल के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 रोज के दौरान हालात मुआफिक रहेंगे। महकमे मौसमियात ने कल मगरबी उत्तर प्रदेश में शदीद गर्मी की पेशगोई की है। अगले 2 दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में भी इसी तरह की सूरत हाल का इम्कान जाहिर किया गया है। बैडमिंटन में आज चीन में बाओजी चाइना मास्टर्स में खवातीन के सिंगल्स में भारत की श्रियांशी वाली शेट्टी ने चांदी का तमगा जीता है। उन्होंने बाओजी सिटी जिम्नेशियम में सुपर 100 के फाइनल में चीन की एन क्वी युआन को सीधे सेटों में 14-21, 6-21 से शिकस्त खाई, लिहाजा उन्हें चांदी के तमगे पर इक्तफा करना पड़ा। IPL क्रिकेट में आज धर्मशाला में खेले गए मैच में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा दिया। रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु के जरिए दिए गए 223 रन के निशाने को हासिल करते हुए पंजाब किंग्स मुकर्रा 20 ओवर्स में 8 विकेट पर 199 रन ही बना सकी। इससे कबल बेंगलुरु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 222 रन बनाए थे। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे दिन के एक और मैच में राजस्थान रॉयल्स ने दिल्ली कैपिटल्स के सामने जीत के लिए 194 रन का निशाना रखा है। इससे कबल दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। आखिर में खास खबरें एक मरतबा फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के अपने हम मनसब उल्फ क्रिस्टर्सन से वफ्त की सतह की बातचीत कर रहे हैं, जिसका मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाना है।

0: मास्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर समेत 4 अफराद हलाक हो गए। भारत के महकमे मौसमियात ने शुमाली भारत में कल शदीद गर्मी की पेशगोई की है। और बैडमिंटन में भारत की श्रियांशी वाली शेट्टी ने बाउजी चाइना मास्टर्स में खवातीन के सिंगल्स में चांदी का तमगा जीता। और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा दिया। इससे कबल बेंगलुरु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 222 रन बनाए थे। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी है। आज प्रस्तुत है श्री विष्णु प्रभाकर का लिखा नाटक कूपे।
2: ये है मेरा कूपे। ड्यूट इसका प्रोग्राम अचानक बदल गया। मैं उसका टिकट वापस करने जा रहा था। आपको आपत्ति न हो तो?
3: मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपके साथ तो 10 दिन तक साधना केंद्र में रही हूँ। एक अजनबी आदमी के साथ सफर करना मुझे बुरा नहीं लगता।
2: कूपे में भी?
3: क्यों, कूपे में क्या है? 2 बर्थ है, उन पर कोई भी 2 यात्री सफर कर सकते हैं। 2 स्त्री 2 पुरुष या 1 स्त्री 1 पुरुष।
2: जी हाँ, 1 स्त्री और 1 पुरुष 2 ही होंगे इस कूपे में। अच्छा सफर कटेगा।
3: हाँ, नींद अच्छी आएगी या शायद बिल्कुल नहीं आएगी।
2: आप में जीवट है, लेकिन 10 दिनों तक तो आप
3: वहाँ सबको वैसा ही व्यवहार करना चाहिए था जैसा मैंने किया। साधना करने आए थे हम लोग।
4: अच्छा, मैम साहब आ गए। आप तो कह रहे थे।
2: सुनो कंडक्टर, 2 कप कॉफी मिलेगी? लेकिन रुको शांतना जी, अब तो डाइनिंग कार में चलने का वक्त हो गया है।
3: मैं नहीं जाऊंगी, रात को मैं नहीं खाती। कंडक्टर, मेरे लिए केवल 1 कॉफी।
4: जी हाँ मैम साहब, कॉफी आ जाएगी।
2: और मैं तो डाइनिंग कार में जाऊंगा। 10 दिन तक मन और तन दोनों ही भूखे रहे। ना ना, अब और मन को नहीं मार सकता।
3: तुमने मारा ही कहा है, मारने का ढोंग किया। अच्छा जाओ, मैं ध्यान करने के बाद कुछ देर काम करूंगी।
2: ओके, लौट कर बातें होंगी।
3: ओके।
4: मैम साहब, ये रही कॉफी, कुछ और चाहिए?
3: नहीं शुक्रिया। अब जरा एकांत मिला। सोने से पहले अपनी डायरी लिख लूं। गुरुजी दूसरे महात्माओं से कितने भिन्न हैं। वो न प्रभाव डालने के हथकंडे जानते हैं, न दूसरों पर छा जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे उन्होंने एक सहज सत्य का आविष्कार कर लिया है, क्योंकि उनमें एक मोहिनी शक्ति पैदा हो गई है। वही शक्ति देश विदेश के नाना प्रकार से त्रस्त व्यक्तियों को अपने पास खींच लेती है। अज्ञात शांति की खोज में भटकते ये व्यक्ति कैसे सहज विश्वास से अपने जीवन की कहानी खोल कर रख देते हैं इनके सामने। वो जूडिथ जिसकी नीली आंखों में गहरे आकाश की झलक है, जिस सहज भाव से खिलखिलाती है, उसी सहज भाव से अपने मन की सारी परतें खोल कर रख देती है। उस दिन वो अपनी प्यारी प्यारी सी बच्ची के लिए मेरे पास से गुजरी तो मैंने मुस्कुराकर कहा, हेलो जूडी, कितनी प्यारी है तुम्हारी बच्ची। कल बहुत देर तक मुझसे बातें करती रही। ये जिसके पास जाती है उसी की हो जाती है। मेरी तरह। अब गुरुजी के पास सोने की जिद कर रही।
5: अच्छा, मानती ही नहीं, इसीलिए इसके पिता के पास ले जा रही हूँ।
3: क्या तुम्हारे पति भी यहाँ आए हुए हैं?
5: मेरी शादी नहीं हुई है।
3: क्या?
5: लेकिन इसके पिता बहुत सुंदर है, ऊपर की मंजिल में ही तो ठहरे हैं। उनसे ही इस लंबी यात्रा में मैंने ये सुंदर बच्ची प्राप्त की है।
3: आप कितने दिन से घूम रही हैं?
5: कई वर्ष हो गए। आपके बहुत मित्र हैं।
3: स्वाभाविक है, अनेक देशों के अनेक युवकों के संपर्क में आई हूँ। उनको समझा परखा है, प्यार दिया है, पाया है।
5: बुरा तो नहीं मानूंगी, तुम ग्रास डोप चरस LSD आदि का सेवन करती हो?
3: करती हूँ।

0: देता है। उस आनंद का मैं वर्णन नहीं कर सकती। वो अनुभव करने की वस्तु है, जैसे जैसे स्वर्ग का द्वार खुल जाता है, प्रतिभा मुक्त हो जाती है। तो फिर वो क्या है जो तुम्हें खाए जा रहा है? क्या है जो तुम्हारे जैसे युवक युवतियों को दर दर भटकने के लिए विवश करता है? साधुओं महात्माओं योगियों के पास तुम क्या पाना चाहते हो? बहुत दिनों तक ये सब करते करते मैंने अनुभव किया है कि नशे में जो आनंद मिलता है वो जैसे मैकेनिकल, जैसे उठार का आनंद है। एक महात्मा है जो दैहिक सेक्स के द्वारा समाधि की ओर ले जाने का दावा करते हैं, लेकिन मैं बिना किसी की सहायता से अपने ही अंतर में से स्वर्ग जाने का मार्ग खोल लेना चाहती हूँ। सुना था भारत के योगी इस मार्ग को जानते हैं, इसलिए भटकती हूँ। जितने लोगों से मैंने बात की है वो सभी इन अनुभवों से गुजर चुके थे। सेक्स नशा सब कुछ उनके लिए सहज है, फिर भी वो भटक रहे हैं। कितनी सच्ची है उनकी ये भटकन। कुछ है जो परिवार के शासन से परेशान है, कुछ को आज के शोषण की राजनीति त्रस्त करती है, वो उद्योगीकरण से प्राप्त ऐश्वर्य और विलास से ऊब चुके हैं। ये यांत्रिक और कृत्रिम जीवन उनको खोखला कर रहा है और वो उस आनंद की तलाश में है जो उन्हें शांति के स्वर्ग द्वार के भीतर पहुंच जाने की शक्ति दे। अब आती हूँ।
1: बाहर भी वर्षा होकर चुकी है, मौसम कितना सुहावना, कितना प्यारा है।
2: अरे आप एक लिखे जा रही हैं? कैंप के अपने अनुभव लिख रही हैं शायद, देख सकता हूँ?
0: ये मेरी डायरी है।
2: तब नहीं देखूंगा, डायरी चोरी करके पढ़ने की चीज है।
0: बड़ी समझदारी की बातें कर रहे हैं।
2: समझदारी की बातें तो अब आरंभ होंगी।
1: खिड़की खोल दूं, वर्षा से भीगी हवा है।
2: मैं आपके पास बैठ सकता हूँ?
0: सब काम पूछकर ही करते हैं आप।
2: थैंक यू। मेरे पास स्कॉच है, 10 दिन से इसे छुआ ही नहीं। आप पीती हैं?
0: पीती तो नहीं पर प्रतिज्ञा भी नहीं की।
2: तो मेरा साथ दीजिए, थकान भी तो उतारनी है।
0: मैं बिल्कुल नहीं थकी हूँ।
2: प्लीज साथ देने के लिए एक पैर।
0: जी नहीं, आप ऊपर जाकर पीजिए।
2: और अगर मैं यहीं बैठकर पीऊँ तो?
0: पीजिए।
2: बुरा मानिए, प्लीज। बात यह है कि मैं साथी के बिना रह ही नहीं सकता। बहुत घूमा हूँ हिप्पियों के साथ, चिप्सियों के साथ। कितनी मुक्त और सहज है ये विदेशी युवतियाँ, बड़े मजे के साथ कह सकती हैं लॉट्स ऑफ बॉयफ्रेंड्स, लॉट्स ऑफ सेक्स। मैं भी कह सकता हूँ लॉट्स ऑफ गर्लफ्रेंड, लॉट्स ऑफ।
0: मैं आपकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ।
2: नहीं है तो हो जाएंगी। मुझे किसी के साथ एकाकार होते देर नहीं होती। दुई का भाव मुझे सुहाता ही नहीं। एक ओंकार, एक सत्ता, एक चेतना।
0: काफी गहरे उतर चुके हैं आप।
2: गणित विज्ञान और आध्यात्म की तरह नशे सेक्स और योग की मंजिल एक ही है, ब्रह्मानंद सरोवर में डुबकी लगाना। प्लीज, मैंने कहा ना अकेले पीते अच्छा नहीं लगता। छोटा पैक लीजिए मेरे लिए, इस सुहावने मौसम के लिए।
0: मिस्टर सिंह, आप ऊपर नहीं जाना चाहते तो मैं जाती हूँ।
2: आप ऊपर कैसे जाएंगे?
0: जी हाँ, वो अधिकार तो जैसे आपका ही है। आप पुरुष है ना? मैं कहती हूँ ऊपर जाइए।
2: नाराज ना होइए। अच्छा मैं अब और नहीं पीऊंगा, आपके साथ बातें करूंगा। आप डाइनिंग कार में नहीं गई, वहां डिक था, वही जूडिथ के बच्चे का बाप। आपकी बहुत तारीफ कर रहा था, आना चाह रहा था, लेकिन जब उसे पता लगा कि हम कूपे में हैं तो मुस्कुरा कर लौट गया। अरे अब फिर नाराज हो रही है? प्लीज।
0: मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, जरा थोड़ा पीछे हटिए ना, मैं लेटना चाहती हूँ, फिर अपना भाषण जारी रख सकते हैं आप। आप तो जूडिथ के साथ बहुत रहे हैं।
2: बहुत से देशों में साथ साथ घूमा हूँ,
3: वी हैव मेड लव मैनी टाइम्स, लेकिन वहां गुरुजी का आदेश था 10 दिन तक कुछ नहीं होना चाहिए, पूर्ण ब्रह्मचर्य, पूर्ण मौन। सर डिक भी तो यहीं था, लेकिन उसे जरा भी ईर्ष्या नहीं हुई। जूडित को पूरी स्वतंत्रता है, वो किसी के साथ रहे,
0: इसलिए शायद वो तुम्हारे साथ आकर भी लौट गई।
3: उसके लौट जाने से मुझे दुख हुआ था, लेकिन तुम मिल गई तो मुझसे भी आकर्षक हो, सबसे आकर्षक तुम्हारे।

0: नहीं रहा, परंतु वो मन से जुड़ा हुआ है। प्रेम का अर्थ केवल तन का मिलन नहीं है।
1: जिन जूडिथ, मार्था और लिजा के लिए तन का मिलन सहज रहा है, वो भी मन के मिलने के लिए भटकती फिर रही हैं। न जाने कितनी गांठें पड़ी हैं उनके मन में। माँ बाप से विद्रोह, समाज से विद्रोह, अपने से विद्रोह, व्यवस्था को तोड़ने के लिए वो ड्रग का सेवन करती है। स्वर्ग के द्वार में प्रवेश करती।
2: वही वही वही तो आनंद का मार्ग है। तुमने कभी अनुभव किया है उसे, उस आनंद को? मेरे पास है, पियोगी।
1: सर जी, तुम सीमा को लांघते जा रहे हो, अब चलो जाओ।
2: और न जाऊं तो? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। प्लीज प्लीज शांत होना।
1: नहीं नहीं, पीछे हटो, हटो पीछे।
2: मैं नहीं हटूंगा, मैं नहीं हटूंगा। किसी स्त्री ने मुझे आज तक पीछे नहीं हटाया।
1: लेकिन मैं हटा दूंगी। मर्द है तो उसे औरत चाहिए।
2: प्लीज
1: मत तेज पूछे, औरत उसके तेज को छीनने वाली है।
2: देखो,
1: ये दलीलें अब बाकी होती।
2: प्लीज
1: तुम्हारे लिए नारी केवल एक पेश है।
2: मैं नहीं,
1: मैं कहती हूँ शिक्षा उत्तर चले जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। जाते हो या नहीं?
3: सांत्वना।
1: कौन है, क्यों आए हैं इस समय?
4: आप ठीक तो हैं?
1: बिल्कुल ठीक हूँ। आप ही बीमार नजर आते हैं जो दूसरों के कंपार्टमेंट में झांकते फिरते हैं। कुछ कहना है तो कहिए, नहीं तो जाइए यहाँ से।
4: माफी चाहता हूँ, बराबर के कंपार्टमेंट में हूँ। लगा जैसे आपके साथ कोई जबरदस्ती कर रहा है। लेकिन यहाँ तो आपके पति का अतिरिक्त और कोई दिखाई नहीं देता।
1: तो फिर जाइए अपने कंपार्टमेंट में।
4: देखिए, मुझे नींद कम आती है, आप लोग शोर मचाएंगे तो बेवश होकर मुझे।
1: क्या मतलब है आपका?
4: आप सब समझती हैं, इस डिब्बे में केवल आप दोनों ही नहीं, आप जैसे जोड़े बहुत देखे हैं। इस उम्र में इतना आवेश नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ मुझे फिर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंडक्टर, ये तुम्हारी जिम्मेदारी भी है कि हम लोग आराम से सो सके।
5: सचमुच मैम साहब, मैं तो डर गया था। कभी कभी फालतू आदमी भी चढ़ाते हैं।
1: मेहरबानी करके आप लोग चले जाइए। माफी चाहती हूँ।
4: ठीक है मैं जाता हूँ। गुड नाइट।
5: दरवाजा अंदर से बंद कर लीजिए, कोई बात हो तो मैं पास ही में हूँ।
2: मुझे बहुत दुख है दरअसल।
1: चुप रहो, ऊपर जाकर अपनी सीट पर बैठो।

0: जीत का इसमें कोई दोष नहीं है। उसका संबंध जूडेथ, मार्था और लिजा जैसी नारियों से रहा है, जिनके लिए देह ही सब कुछ है। लेकिन फिर विद्रोहियों का बाना पहने इधर उधर क्यों भटक रही है? अंतर में कहीं न कहीं खोज की वो चाह है जो इन्हें स्थूल आनंद से ऊपर उठाती है। मैंने मार्था से पूछा था, मार्था बुरा तो न मानोगी, एक बात पूछूं?
1: खुशी से पूछो।
0: तुम माँ बनने वाली हो ना?
1: हाँ।
2: नहीं है, मैं भी पुरुष की तरह प्यासी हूँ, मुझे भी तृप्ति चाहिए। पुरुष कोई भी हो, वो सर्वजीत भी हो सकता है, शायद वही है। लेकिन तुम ये सब क्यों जानना चाहते हो?
1: मैं जानना चाहती हूँ कि मुक्त साहचर्य और देह भोग के साथ सच्चे सुख की तलाश कैसे चल सकती है।
2: मुझे तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं दिखाई देता। शरीर के अस्वीकार के बाद तुम लोगों में ही है, हम लोगों में समर्पण की प्यास है। समर्पित होकर हम पूर्णता का अनुभव करते हैं। तुम्हारे लिए प्रेम एक बना बनाया सांचा है, विवाह किया और वो सांचा ओढ़ लिया।
1: नहीं, मैंने भी प्रेम विवाह किया था, उसी का परिणाम है मेरे दो बच्चे, उन्हीं के लिए मैं दूसरी बार विवाह नहीं कर रही।
2: लेकिन इससे क्या तुम्हारी देह की प्यास बुझ गई? इतने सारे वर्ष तुमने इस छद्म को पालने में लगा दिए। मैंने गुरुजी से बहुत बहस की है इस बारे में।
1: क्या उत्तर दिया उन्होंने?
2: देह की प्यास से उन्हें इनकार नहीं है, वो तो चाहते हैं कि साधना के इन 10 दिनों में परहेज किया जाए, उसके बाद जैसा अनुभव हो।
1: इसका अर्थ समझी?
2: समझी। वो कहना चाहते हैं जैसे जैसे साधना के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, देह भोग की प्यास वैसे वैसे शांत होती जाती है। सांत्वना, मैं नहीं जानती क्या होगा, मुझे चिंता नहीं कि वो प्यास शांत होती है या नहीं, लेकिन मुझे ऐसा अवश्य लगता है कि सच्चे सुख के प्राप्त हो जाने पर वो प्यास असंगत हो रहेगी।
1: फिर भी तुम कहती हो कि शरीर के अस्वीकार की बात हम ही लोगों में है।
2: अस्वीकार करने और असंगत हो रहने में अंतर है, क्या नहीं है?
1: कभी सोचा भी न था कि मुक्त देह मिलन के उपासक ये लोग इतनी गहराई में उतर सकते हैं। अस्वीकार करने और असंगत हो रहने का अंतर ही हम भूल चुके हैं, इसलिए अत्यधिक निषेध से परेशान होकर देह मिलन के लिए पागल हुए जा रहे हैं। मैंने भी जब चाहा है देह की प्यास बुझाई।
2: देह की इस प्यास को क्या तुमने अब भी बुझाना नहीं चाहा था?
1: कौन हो तुम?
2: मैं कौन हूं ये पूछने का साहस है तुमने? अपने अंतर में झांक कर देखो, वहीं से बोल रही हूं। बार बार दूसरों के अंतर में झांकती हो पर अपने को नहीं खोजती। विधवा हो, संतान के प्यार के आदर्श में बंधी तुम देह की प्यास को छिपाए फिरती हो, लेकिन क्या सर्वजीत के साथ तुम्हारा मुक्त व्यवहार तुम्हारी देह की प्यास के ऊपर ही आधारित नहीं था?
1: अगर ऐसा था तो मुझे रोकने वाला कौन था?
2: तुम्हारा अपना अहम, जबरदस्ती शहीद बनने की लालसा।
1: शत्रु के माया जाल में फंसने की चेष्टा मत करो, ये ठीक है, छोटी उम्र के अपने दोनों बच्चों को मैं किसी की दया पर छोड़ने को तैयार नहीं थी, पर देह के मिलन को मैं अस्वीकार नहीं करती। शर्त केवल एक ही है कि दूसरों की वासना का शिकार होना मैं नहीं चाहती, वो देश का अपमान है।
2: लेकिन तब तुम साधना केंद्र में क्यों गई थी? क्या वो इस बात का प्रमाण नहीं है कि तुम भी अशांत हो? तुम्हें देह को बचाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन बचाने को विवश भी हो, इसी द्वंद्व से तुम पीड़ित हो। तीव्र निषेध मन की चाह में से ही पैदा होता है। तुम्हें स्पष्ट कह देना चाहिए था कि सर्वजीत तुम्हारा पति नहीं है, ये मेरा छद्म है, इस छद्म को उतार फेंको।
1: छद्म है, छद्म। सुनो, कहां गई तुम? बोलो। कहीं कोई नहीं, ये मैं अपनी ही आवाज सुन रही हूँ। सचमुच मुझे सहज भाव से स्वीकार कर लेना चाहिए था कि सचमुच मेरा पति नहीं है, डर गई। कंडक्टर और सहयात्री मुझे व्यभिचारी नहीं समझते और शायद स्थिति से उतर जाने को विवश करते, या फिर कैसी है ये भूल भुलैया, कैसे मुक्ति मिलेगी इससे? क्या इसी मुक्ति की खोज में मैं साधना केंद्र में नहीं आई? इतनी सहज होकर भी ये लोग भटक रहे हैं, द्वंद में फंसी मैं भी भटक रही हूँ। क्या इस भटकन का अंत देह के बिना नहीं है? कहाँ है सत्य? कौन सच्चा दिन तर्कों को ठगे हुए है? कैसे मिलेगी इस द्वंद से मुक्ति?
2: छद्म, ये छद्म है, इस छद्म से मुक्ति पाओ। सहज होने में ही मुक्ति है। मुक्ति, मुक्ति।
3: बहुत देर हो गई तुम्हें लिखते हुए, अब सो जाओ। जो कुछ हुआ उसके लिए लज्जित हूँ।
1: नहीं सरजीत, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं।
3: तुम बहुत अच्छी हो।
1: सच?
3: मैंने प्रतिज्ञा की थी कि सच बोलूंगा, केवल सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ न बोलूंगा।
1: अच्छा अब सो रही हूँ। गुड नाइट।
3: गुड नाइट।
4: बहुत देर से आई हो। कॉलेज तो कभी का बंद हो चुका था।
1: हाँ, कमल अंकल के घर चली गई थी।
4: इतनी रात तक क्या वहाँ कोई उत्सव था? हमें तो नहीं ले गए।
1: कुछ ऐसी बात थी बेटे, गंभीर बातें करनी थी ना, हड़ताल होने वाली है।
4: बहुत देर हो गई थी इसलिए मुझे डर भी लगा। भैया ने वहाँ फोन भी किया था लेकिन हर बार अंगेज मिला, शायद खराब था।
1: हाँ शायद, असल में हम बहुत जरूरी बातें कर रहे थे, शायद तुम्हारे अंकल ने रिसीवर उतार कर रख दिया था।
4: हाँ यही जवाब हमें भी मिला था, हमने कंप्लेंट की थी। खाना खाओगे मामा?
1: मैं तो खाई बेटा, लगता है तुम लोगों ने अभी तक नहीं खाया। बड़े दुष्ट हो तुम, मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते। बुलाओ अपने भैया को।
4: पढ़ने का नाटक कर रहा है लेकिन सुन रहा है हमारी बातें। इधर आओ बाबा।
1: माँ को जरा भी मुक्ति नहीं दोगे? मुक्ति तो मैं ही उन्हें नहीं दे पा रही, मैंने ही तो उन्हें अपने ऊपर निर्भर कर लिया है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, वो बड़े हो गए हैं, सब कुछ समझते हैं। मुझे उनसे सब कुछ कह देना चाहिए, कहीं उनके किशोर मन में काट ना पड़ जाए। स्वयं मैं भी तो नहीं झेल पाती इस सर्वग्रासी एकांत को। क्या मैंने ही जानबूझकर इसे अपने ऊपर नहीं लाद लिया है? क्या इससे मुक्ति पालूं? क्या वो मुक्ति होगी?
5: सांत्वना? सांत्वना, तुम सो गई?
1: तुम्हारा स्पर्श पाकर मुझे नींद आ ही जाती है।
5: सांत्वना, हमें यह लुका छिपी का खेल बंद कर देना चाहिए।
1: हाँ कर देना चाहिए। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? मेरे लिए तो फिर कोई और मार्ग नहीं रह जाएगा।
5: तुम शादी कर लो।
1: मैं शादी नहीं कर सकती विनोद, जब तक मेरे बच्चे अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते। मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती।
5: धोखा तुम आप दे रही हो।
1: मैं धोखा नहीं दे रही, अपनी इच्छा से जो चाहती हूँ करती हूँ।
5: इच्छा मेरी भी तो हो सकती है, जैसे तुम चाहती हो कि तुम किसी का शिकार न बनो, वैसे ही क्या मैं नहीं चाह सकता कि मैं तुम्हारा शिकार ना बनूं?
1: शिकार? तुम क्या कह रहे हो विनोद? विनोद!
5: सांत्वना, क्या है सांत्वना, किसे पुकार रही हो?
1: कुछ नहीं, सपना देख रही थी।
5: या अपने प्रेमियों की याद कर रही थी? विनोद, कमल,
1: तुम्हें ईर्ष्या होती है?
5: स्वाभाविक है, सारी रात यहाँ ऊपर के बस पर लेटा लेटा।
1: तुम सब पुरुष एक जैसे होते हो। उनके एक मित्र थे, एक बार उनके साथ भी इसी तरह कूपे में सफर किया था। सारा समय तुम्हारी तरह न जाने क्या क्या बकते रहे, अपनी प्रेम कहानियां सुनाते रहे। बेचारे परवर्टेड।
3: अगर मैं यूरोपियन होता तो इस समय तुमसे पूछता, क्या उस रात उसके साथ तुमने प्रेम किया था?
2: आप नहीं पूछोगे?
3: बेकार है, हिंदुस्तानी प्रेम करना ही नहीं जानता।
2: ताने मत दो, मैं न तब समर्पित हुई थी और न अब हो सकूंगी।
3: जी मैं आता है कि नीचे उतरकर तुम्हारे शरीर को झंझोर डालूं और
2: फिर रुक क्यों गए?
3: जागने की राह देखता रहा, अब नहीं मानूंगा।
2: तुमने और उस पुलिस इंस्पेक्टर में अंतर ही क्या है जिसने सवेरे सवेरे दूध लेने जाती हुई एक औरत के साथ बलात्कार किया?
3: तर्कों की ये ढाल तुम्हारी मदद नहीं कर सकेगी।
2: जब दो शरीर सैकड़ों मीलों की मानसिक दूरी के साथ मिलते हैं तो उस अर्थहीन मिलन में न सौंदर्य होता है न सत्य। वो न तन को बांध पाता है न मन को। इसी को कहते हैं अपवित्र होना।
3: पवित्र अपवित्र की मुझे चिंता नहीं, चिंता तुम्हारी है। सारी रात तुम अपने से लड़ती रही हो, तुम्हारा यही छंद मैं उतार फेंकना चाहता हूँ। सांत्वना प्लीज।
2: हट जाओ, मैं कैसे हूँ कदम भी आगे न बढ़। कौन आया? अब कौन हो तुम? क्या चाहते हो?
6: मैं सरजीत से मिलना चाहता हूँ। हेलो सरजीत। तुम्हारा नाम देखा तो आश्चर्य हुआ। विलायत से कब आए, कैसे हो? और माथा? ओह ये माथा तो नहीं है।
2: मेरा नाम सांत्वना है।
6: ओह देखता हूँ तुमने शादी कर ली है सरजीत। भाई बधाई हो।
7: निगम
3: इनसे मिलो, ये है श्रीमती सांत्वना थापर। मैंने अभी तक शादी नहीं की है। तुम कहो कहाँ कहाँ रहे, बहुत दिनों के बाद मिल रहे हो।
6: हाँ, वो तो है। तो तुम हो भाग्यशाली, अभी तक तो विदेशी नारियों की चर्चा ही तुम्हारे पत्रों में रहती थी, अब भारतीय नारी भी आ गई। बधाई दूंगा, चुनाव एक्सलेंट है। वाह, माफ कीजिएगा मिस्टर थापर, हम बहुत गहरे दोस्त हैं। यहाँ बैठ सकता हूँ ना सर जी?
2: ये कूपे है मिस्टर निगम, और अभी रात बीती नहीं है।
6: ओह आई एम सॉरी, मैं भूल गया था कि कूपे में तीसरे के लिए स्थान नहीं होता।
2: मैं अगले स्टेशन पर उतर जाऊंगी, तब आप आ सकते हैं। अब आप
6: जा रहा हूँ, खेद है मैंने आपके एकांत में हलन डाला। तो सरजीत एक बात याद रखो, ये भारत है, यहाँ शोर नहीं मचाना चाहिए, वो बाहर वाले को भी खींच लेता है।
2: दरवाजा खुला रहने दो।
6: क्यों?
2: मेरी इच्छा।
6: कूपे में एक इच्छा नहीं चलती।
2: तो आपने भी समझने की शक्ति है। स्टेशन आ रहा है, मैं यही उतरूंगी।
7: अभी तो अंधेरा है, बाहर बूंदाबांदी हो रही है और ये स्टेशन भी बहुत छोटा सा है।
2: बड़ी सुंदर जगह है।
7: सुंदर तो तुम हो, जगह नहीं, ये तो क्रूर है, विछोड़ का स्थान।
2: तुम्हारा ऐसा सोचना भी क्या एक छद्म ही नहीं है? जो तुम्हारी दृष्टि में विछोड़ का स्थान है वो किसी के लिए मिलन का भी हो सकता है। तुम्हारे साथ फिल्मी डायलॉग के आदान प्रदान से तो यहाँ उतरना हजार गुना अच्छा है। अच्छा जा रही हूँ, बुरा ना मानना, प्यार का तुम्हारे लिए एक ही अर्थ है, औरत की देह का उपभोग। अच्छा नमस्कार, क्या सोच रहे हो, जवाब भी नहीं दोगे?
7: नमस्कार। तुम भाग रही हो सांत्वना, कब तक भागती रहोगी?
2: कंडक्टर मैं यही उतर रही हूँ, जरा बक्सा उतारने में मदद करो।
8: जी अभी आया, लाइए
7: मैं उतारे देता हूँ, आप उतरिए।
2: ये लीजिए।
6: गई, अब तो मैं आ सकता हूँ, खूब बातें करेंगे दोनों, सामान ले।
7: क्या मेरी दशा उस मछुए जैसी नहीं है जो एक तूफानी समुद्र में अपना जाल भी खोकर खाली हाथ लौट आया था? लेकिन के कारण तो मैं भी साधना केंद्रों की खाक छानता फिर रहा हूँ।

पे अभी आपने श्री विष्णु प्रभाकर का लिखा ये नाटक सुना। निर्देशक थे श्री दीनानाथ। भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री जैमिनी कुमार वीरेंद्र, मंजू मैनी, सरल लांगिया, शर्मिला मलखानी, हरि मेहता, अरुण माथुर, बीएल टंडन, दीपा पांडे और नरेश कुमार सूरी। ये कार्यक्रम केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।

श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे थे हमारे रांची केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम। इस समय रात्रि के 10:01 होने को है। अब आपको हम सुनवाते हैं गजलों का कार्यक्रम महफिल। कार्यक्रम महफिल सुनने वाले सभी श्रोताओं को छवि का प्यार भरा नमस्कार। आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको सुनवा रहे हैं जगदीश सिंह की आवाज में चंद मखमली गजलें। तो चलिए हम गजलों का सिलसिला शुरू करते हैं इस गजल से।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ यानी इस गजल के साथ आज का कार्यक्रम महफिल अब यहीं संपन्न होता है। आज आप सुन रहे थे जगजीत सिंह की आवाज़ में चंद गजलें। तो महफिल कार्यक्रम से छवि को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।

श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम सुरों के रंग।

कार्यक्रम सुरों के रंग सुनने वाले सभी श्रोताओं को छवि का प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, मन में अगर कोई ग्रह हो तो दिल अजीब सा महसूस होता है ना। इसलिए दिल की ग्रह को खोलकर प्रेम रूपी बात करनी चाहिए और दिल को हमेशा खुश रखना चाहिए, क्योंकि हम खुश हैं तो हमारा जीवन भी खुशी से भरा रहेगा। तो चलिए, सुरों के रंग के कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं ये प्यारे से गीत से। फिल्म का नाम है रात और दिन, लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज़ों में।

0: श्रोताओं, जीवन हमें एक ही बार मिलता है और इस जीवन में कुछ ना कुछ अगर हम कर जाए तो इससे बड़ी बात क्या होती है। हम रहें न रहें, हमारे जीवन में हमारी आवाज़ हमारी पहचान बनी रहे। चलिए आपको हम प्यारा सा नगमा सुनवा रहे हैं फिल्म ममता से लता मंगेशकर की आवाज़ में।
1: लता तो लता है, लता जी की तरह मेरी नज़र में अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ। लता जी को अल्लाह ने आवाज़ दी है, इल्म उनको उनके वालिद साहब से मिला, खुदा की तरफ से उन पे करम हुआ।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरों के रंग छवि के साथ। जीवन में मंचली होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम खुश रहते हैं और प्यार से जब कोई पुकारे ओ मंचली कहाँ चली, तो और भी अच्छा लगता है ना। तो चलिए आपको सुनवाते हैं फिल्म मंचली का ये गीत किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ में।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरों के रंग छवि के साथ। श्रोताओं, एक सुहागन के लिए उसके पति की अहमियत बहुत ज्यादा होती है, और कल सबने वट सावित्री का व्रत किया अपने पति की लंबी उम्र के लिए, क्योंकि पति अगर साथ रहे तो जीवन बहुत खुश सुखद और खुशी से भर जाता है। चलिए आपको सुनवाते हैं फिल्म मांग भरो सजना का ये गीत, लता मंगेशकर और आशा भोसले साथियों की आवाजों में। आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरों की रंग छवि के साथ। प्यार में अगर कोई रंग जाता है तो उसे वही वही नजर आता है ना। हम आपको सुनवाते हैं फिल्म मैंने प्यार किया का ये नगमा, लता मंगेशकर और एसपी बाल सुब्रमण्यम की आवाजों में। अर्शद भोपाली की बोल है, संगीत है राम लक्ष्मण का।

श्रोताओं, इसी के साथ आज का कार्यक्रम सुरों के रंग अब संपन्न होता है। अब आपको लिए चलते हैं हमारे दिल्ली केंद्र, जहां से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: आपके साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। दोनों पक्षों ने व्यापार, हरित बदलाव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु कार्रवाई के अलावा द्विपक्षीय संबंधों में सहयोग के नए तरीकों पर भी चर्चा की। इस बीच स्वीडन के प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च पुरस्कार रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। ये प्रधानमंत्री मोदी को मिला 31वां वैश्विक सम्मान है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके स्वीडिश समकक्ष यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ मिलकर एक प्रमुख अखिल यूरोपीय व्यापार मंच उद्योग जगत के लिए यूरोपीय गोलमेज सम्मेलन को भी संयुक्त रूप से संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा के सहयोग में बढ़ रहा है।
1: रक्षा के क्षेत्र में हमारा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। स्वीडन की कंपनियों द्वारा भारत में प्रोडक्शन फैसिलिटीज बनाए जाना इस बात का प्रमाण है कि हम बायर सेलर रिलेशनशिप से आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे हैं।
0: नीदरलैंड की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद श्री मोदी आज शाम अपने 5 राष्ट्रों के दौरे के तीसरे चरण के लिए गोथेनबर्ग पहुंचे। गोथेनबर्ग हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। गोथेनबर्ग के लिए रवाना होने से पहले नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जटन व्यक्तिगत रूप से एम्स्टरडैम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी को विदाई देने आए। नीदरलैंड की अपनी 2 दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने डच समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। दोनों देशों ने रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नीदरलैंड की उनकी यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान की है। इस दौरे को गुजरात की महत्वाकांक्षी कल्पसर परियोजना के लिए भारत और नीदरलैंड के बीच तकनीकी सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और उनके डच समकक्ष ने ऊर्जा, बंदरगाह, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, व्यापार और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों की प्रमुख डच कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से भी बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद शुक्रवार को 2 दिन की यात्रा पर द हेग पहुंचे थे। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेंगे। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। श्री जोशी ने बताया कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आज हुई आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। ये आग ट्रेन के एक यात्री कोच और एक लगेज ब्रेक तथा जनरेटर कोच में लगी थी। घटना लूनी रिक्शा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच हुई। भारतीय रेलवे ने कहा कि समिति को निर्धारित समय सीमा के भीतर जाँच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस पोस्ट को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया है कि भारत के पास केवल 2 दिन का तेल भंडारण बचा है। पत्र सूचना कार्यालय PIB की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि ये दावा फर्जी है। इकाई ने कहा है कि भारत के पास 60 दिन का कच्चे तेल का भंडारण मौजूद है। भारत के श्रेयांसी वलिशेट्टी ने चीन के बाओजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। इस सुपर 100 प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में श्रेयांसी को चीन की आन क्यू युआन से सीधे गेमों में 14-21, 6-21 से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

तो आप सुन रहे थे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। अब हमारी आज की सभा यहीं संपन्न होती है। कल प्रातः 5:53 पर पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।